91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला। तो श्रोताओं, बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा भजन।

इस वक्त आप सभी ने ट्यून किया है अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। तो श्रोताओं, सुनते हैं एक और प्यारा सा भजन।

ये है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं भक्ति संगीत आराधना अपनी रेडियो दो।

ये है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं भक्ति संगीत आराधना अपनी रेडियो दो शशि के साथ।

हम बोल रहे हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला से और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं भक्ति संगीत आराधना।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला। तो श्रोताओं, बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा भजन।

91.2 MHz पर। ये है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे थे भक्ति संगीत आराधना अपनी रेडियो दोस्त शशि के साथ। तो श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। आप सभी यूं ही सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

92.2 MHz पर ए है तुहा सारे दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला जी श्रोताओ कन तुहा सारे कार्यक्रम सुना देना माटी दी महक अपनी रेडियो दोस्त रुचिका कन्या।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये तुहा सारे दा अपना पसंदीदा रेडियो गुंजन धर्मशाला कने श्रोताओ तुहा सारे अपने पसंदीदा कार्यक्रम सुना दे जिसका नाम है माटी दी महक। सुन दे कार्यक्रम दा अगला गीत।

अपना सामुदायिक रेडियो गुंजन धर्मशाला श्रोतो तो सारे इस कार्यक्रम सुन दे माटी दी महक सुन दे न कार्यक्रम दा अगला गीत तो सारे इन बनी रिया कने सुन दे रिया रेडियो गुंजन धर्मशाला गुंज अपने बंदी।

कानवे दशमलव दो मेगा हर्ट्स पर ए तुहां सारिया दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला जी श्रोताओ कने तुहां सारे कार्यक्रम सुना दे थे माटी दी महका। आज दे कार्यक्रम च बस इतना ही, तुहां सारे ए बनी रिया कने सुन दे रिया रेडियो गुंजन धर्मशाला, गूंज अपने पन।

0: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनवाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, ताज़ा गर्म भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है नवा राष्ट्रीय पोषण माह।
1: हे भगवान,
2: फिर से पापा का पारा चढ़ गया
1: यार। अभी तो गर्मियां शुरू हुई हैं और 7000 का बिल आने लगा। ये एसी क्यों ऑन है? और तुम ना मोटर थोड़ी कम चलाया करो, ये पंखा भी ऑन है।
3: तो लगवा क्यों नहीं देते सोलर पैनल? बिजली का बिल भी जीरो हो जाएगा
2: और आपका गुस्सा भी।
1: भाई अब तो लगाना ही होगा ताकि तुम दोनों के ताने भी हो जाएं जीरो।
4: जीरो बिजली बिल के लिए आप भी सोलर लगाएं। हर घर सूर्य घर।

आते बड़े धूम से गणपति जी, आते बड़े धूम से गणपति जी, जाते बड़े धूम से गणपति जी, आखिर सबसे पहले आकर हमारे दिलों में बस जाते गणपति जी।

नेत्रतुंड महाकाय को अपने भक्तों से प्यार है, दिल से जिसने पूजा समझो उसका बेड़ा पार है। नए कार्य की शुरुआत अच्छी हो, हर मनोकामना सच्ची हो, गणेश जी का मन में वास रहे, गणेश चतुर्थी आप अपनों के पास रहे। आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं।

0: जब से माँ को नानी के यहाँ भेजा है कितने चिड़चिड़े हो गए हो।
1: बेटा टीवी है उसको,
0: टीवी का इलाज तो यहाँ भी हो सकता है, फिर क्यों भेज दिया?
1: अगर वो यहाँ रहती ना तो लोग कन्नी काट रहे होते हमसे।
0: मुझे लोग नहीं, मम्मी।
1: अरे क्या अर्जुन, उठेगा तो सरप्राइज देंगे।
2: अर्जुन
1: बहुत मिस कर रहा था तुमको, और मैं भी टीवी रिमोट का सर पर समझ नहीं पा रहा था।
3: अपनों का जोड़ है टीवी का तोड़, तो फिर भेदभाव क्यों? टीवी के इलाज में अपनों का साथ दें।
4: ये जो पिछली पीढ़ी गुजर गई है ना, हमारे दादा दादी नाना नानी, ये रिश्ते निभा कर गई हैं। इन्होंने उस दौर में भी रिश्तों को जोड़े रखा। जब रिश्ते टूटने की नौबत आ जाती थी, ये बर्दाश्त करना जानते थे, सुन लेना जानते थे। इनके लिए प्राथमिकता रिश्ते थे, बहस नहीं। ये चार लोगों को साथ बैठाकर बात करते थे, समाधान खोजते थे, और आखिर में नतीजा गले मिलने का निकलता था। लेकिन आज की पीढ़ी यानी हम छोटी छोटी बातों पर रिश्ते तोड़ रहे हैं। हमारे अंदर सहनशीलता कम होती जा रही है। हम चाहे कितने भी पढ़ लिख जाएं, कितने भी सफल हो जाएं, या खुद को दूसरों के सामने कितना भी अच्छा साबित कर दें, लेकिन अगर रिश्ते निभाने की ताकत और बर्दाश्त नहीं है तो सब अधूरा है। अगर यही चलता रहा तो आने वाली पीढ़ी रिश्तों के बिना जीना सीख जाएगी। माँ बाप से दूर रहना सामान्य समझेगी, अपनों से दूर रहना पसंद करेगी। रिश्तों की अहमियत धीरे धीरे खत्म हो जाएगी, और अगर समय रहते नहीं संभलें तो बहुत जल्द हम एक दूसरे को खो देंगे।
5: जा रही हो बेटा?
6: अरे दादाजी आप उठ गए? हाँ दादाजी, अब मैं ठीक हो गई, अब मैं कहाँ जा रही हूँ?
5: बहुत अच्छा, मैंने कहा था ना तुम्हें ब्लड मिल जाएगा, भगवान का शुक्र है।
6: हाँ मैंने गॉड को थैंक यू बोला।
7: और डॉक्टर को भी?
6: अरे हाँ, डॉक्टर अंकल को भी और नर्स आंटी को भी।
5: और ब्लड डोनर को?
6: डोनर को वो तो पता नहीं कौन है।
7: डोनर को थैंक यू पापा बोल देंगे।
6: वो कैसे?
8: किसी भी ब्लड डोनर का शुक्रिया अदा करने का सबसे अच्छा तरीका है खुद ब्लड डोनेट करना।
7: बस हो गया।
8: इंडिया में हर साल 1,20,00,000 यूनिट से भी ज्यादा ब्लड की जरूरत होती है। ब्लड डोनेट करें और किसी की जिंदगी बचाएं।
9: ऐसे ना आजकल हड्डी हो गई है लोगों की, वैसे कसम से।
10: क्या हुआ, क्यों परेशान हो रही हो?
9: अरे यार बेबी, मेरा ना रिचार्ज खत्म हो गया था, नेट पैक भी खत्म हो गया था, खुद भी रिचार्ज नहीं कर सकती थी, ना ही मैं आपको कॉल कर पा रही थी। तो मैंने सोचा जाके ना दुकान से ही करा लेती हूँ। मैं दुकान पे गई, उसने मुझे बोला मैम 600 रुपए लगेंगे। मैंने उसको 600 रुपए दे दिए, फिर कहता मैम आपका नंबर। हद होगी यार इन लोगों की, स्मार्ट लड़की देखी नहीं कि नंबर मांगना शुरू कर देते हैं। फिर क्या, तुम्हें तो पता ही है मैं कौन सी कम ओवर स्मार्ट हूँ, मैंने भी गलत नंबर ले लिया। बेबी मुझे एक बात नहीं समझ आ रही, अभी तक रिचार्ज नहीं हुआ मेरा।
10: ये होगा भी नहीं। मेरा मतलब मैं देखता हूँ, तुम जाओ रेस्ट करो।
9: हाँ देखो क्या हो गया।

सभी इस वक्त कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने अपने होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। तो श्रोताओं, करते हैं अपने कार्यक्रम की शुरुआत इस प्यारे से गीत के साथ। आप सभी यूं ही सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

91.2 MHz पर। यह है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। तो बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

तो श्रोताओं, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत अपनी रेडियो शशि के साथ। तो श्रोताओं, कार्यक्रम का नाम है गीत सुहाने नए पुराने। तो फिर से बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

0: ये कि शर्मा न जाए।
1: 91.2 मेगाहर्ट्ज पर यह है आप सभी का अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला, और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर। यह है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। तो बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

तो श्रोताओं, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत अपनी रेडियो शशि के साथ। तो श्रोताओं, कार्यक्रम का नाम है गीत सुहाने नए पुराने। तो फिर से बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर यह है आप सभी का अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने।

0: दिल पे चले कटारी।
1: है मीठी छुरी ये जालिम नजर तुम्हारी,
0: तू झोंके चले तो दिल पे चले कटारी।
1: है मीठी छुरी।

ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और श्रोताओं, आप सभी ने ट्यून किया है अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और इस वक्त आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। तो बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

91.2 MHz पर। यह है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। तो बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

तो श्रोताओं, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत अपनी रेडियो शशि के साथ। तो श्रोताओं, कार्यक्रम का नाम है गीत सुहाने नए पुराने। तो फिर से बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह है आप सभी का अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला, और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने।

ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और श्रोताओं, आप सभी ने फोन किया है अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और इस वक्त आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। तो बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

91.2 MHz पर। यह है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। तो बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

तो श्रोताओं, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत अपनी रेडियो दो शशि के साथ। तो श्रोताओं, कार्यक्रम का नाम है गीत सुहाने नए पुराने। तो फिर से बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर यह है आप सभी का अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला, और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने

ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और श्रोताओं, आप सभी ने ट्यून किया है अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और इस वक्त आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। तो बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

91.2 MHz पर। यह है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। तो बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

0: तुमसे मेहमान का मुझ पे एहसान क्या, लाखों ही जुल्फों वाले आते हैं घेरा डाले, मेरी क्या बात है।
1: तो श्रोताओं, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत अपनी रेडियो शशि के साथ। तो श्रोताओं, कार्यक्रम का नाम है गीत सुहाने नए पुराने। तो फिर से बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर यह है आप सभी का अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला, और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने।

ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और श्रोताओं, आप सभी ने फोन किया है अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और इस वक्त आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। तो बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

91.2 MHz पर। यह है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। तो बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर यह है आप सभी का अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने।

ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और श्रोताओं, आप सभी ने फोन किया है अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और इस वक्त आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। तो बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते

91.2 MHz पर ये है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। तो बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

श्रोताओं, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत अपनी रेडियो शशि के साथ। तो श्रोताओं, कार्यक्रम का नाम है गीत सुहाने नए पुराने। तो फिर से बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

0: तमन्ना ओ जरा सुनना, जाने तमन्ना इतना तो सोचिए, मौसम सुहाना क्या कहेगा।
1: ओ छोड़ दो आजन, जमाना क्या कहेगा।
0: हाँ हाँ हाँ इन अदाओं का जमाना भी है दीवाना, दीवाना क्या कहेगा।
1: छोड़ दो आजन, जमाना क्या कहेगा।

0: किसको ये होश है अपना बेगाना क्या कहेगा।
1: ओ, छोड़ दो आजकल जमाना क्या कहेगा।
0: हाँ हाँ हाँ इन अदाओं का जमाना भी है दीवाना, दीवाना क्या कहेगा।

0: एक दिल एक जान है हम तुम, जमाना क्या कहेगा।
1: हाँ छोड़ दो आजकल, जमाना क्या कहेगा।
0: हाँ हाँ हाँ इन अदाओं का जमाना भी है दीवाना, दीवाना क्या कहेगा।
1: जमाना क्या कहेगा,
0: दीवाना क्या कहेगा।
2: 91.2 मेगाहर्ट्ज पर ये है आप सभी का अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला, और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने।

0: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनवाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, ताज़ा गर्म भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है नवा राष्ट्रीय पोषण माह।
1: हे भगवान,
2: फिर से पापा का पारा चढ़ गया।
1: यार अभी तो गर्मियां शुरू हुई हैं और 7000 का बिल आने लगा। ये एसी क्यों ऑन है? और तुम ना मोटर थोड़ी कम चलाया करो, ये पंखा भी ऑन है।
3: तो लगवा क्यों नहीं देते सोलर पैनल? बिजली का बिल भी जीरो हो जाएगा
2: और आपका गुस्सा भी।
1: भाई अब तो लगाना ही होगा ताकि तुम दोनों के ताने भी हो जाएं जीरो।
4: जीरो बिजली बिल के लिए आप भी सोलर लगाएं। हर घर सूर्य घर।

आते बड़े धूम से गणपति जी जाते बड़े धूम से गणपति जी, आखिर सबसे पहले आकर हमारे दिलों में बस जाते गणपति।

वक्रतुंड महाकाय को अपने भक्तों से प्यार है, दिल से जिसने पूजा समझो उसका बेड़ा पार है। नए कार्य की शुरुआत अच्छी हो, हर मनोकामना सच्ची हो, गणेश जी का मन में वास रहे, गणेश चतुर्थी आप अपनों के पास रहे। आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं।

0: जब से माँ को नानी के यहाँ भेजा है कितने चिड़चिड़े हो गए हो।
1: बेटा टीवी है उसको,
0: टीवी का इलाज तो यहाँ भी हो सकता है, फिर क्यों भेज दिया?
1: अगर वो यहाँ रहती ना तो लोग कन्नी काट रहे होते हमसे।
0: मुझे लोग नहीं, मम्मी।
1: अरे क्या अर्जुन, उठेगा तो सरप्राइज देंगे।
2: अर्जुन
1: बहुत मिस कर रहा था तुमको, और मैं भी टीवी रिमोट का सर पर समझ नहीं पा रहा था।
3: अपनों का जोड़ है टीवी का तोड़, तो फिर भेदभाव क्यों? टीवी के इलाज में अपनों का साथ दें।

0: ये जो पिछली पीढ़ी गुजर गई है ना, हमारे दादा दादी, नाना नानी, ये रिश्ते निभाकर गई हैं। इन्होंने उस दौर में भी रिश्तों को जोड़े रखा। जब रिश्ते टूटने की नौबत आ जाती थी, ये बर्दाश्त करना जानते थे, सुन लेना जानते थे। इनके लिए प्राथमिकता रिश्ते थे, बहस नहीं। ये चार लोगों को साथ बैठाकर बात करते थे, समाधान खोजते थे और आखिर में नतीजा गले मिलने का निकलता था। लेकिन आज की पीढ़ी यानी हम छोटी छोटी बातों पर रिश्ते तोड़ रहे हैं। हमारे अंदर सहनशीलता कम होती जा रही है। हम चाहे कितने भी पढ़ लिख जाएं, कितने भी सफल हो जाएं, या खुद को दूसरों के सामने कितना भी अच्छा साबित कर दें, लेकिन अगर रिश्ते निभाने की ताकत और बर्दाश्त नहीं है तो सब अधूरा है। अगर यही चलता रहा तो आने वाली पीढ़ी रिश्तों के बिना जीना सीख जाएगी। माँ बाप से दूर रहना सामान्य समझेगी, अपनों से दूर रहना पसंद करेगी। रिश्तों की अहमियत धीरे धीरे खत्म हो जाएगी और अगर समय रहते नहीं संभलें तो बहुत जल्द हम एक दूसरे को खो देंगे।
1: जा रही हो बेटा?
2: अरे दादाजी अब उठ गए? हाँ दादाजी अब मैं ठीक हो गई, अब मैं कहाँ जा रही हूँ?
1: बहुत अच्छा, मैंने कहा था ना तुम्हें ब्लड मिल जाएगा, भगवान का शुक्र है।
2: हाँ मैंने गॉड को थैंक यू बोला।
3: और डॉक्टर को भी?
2: अरे हाँ, डॉक्टर अंकल को भी और नर्स आंटी को भी।
1: और ब्लड डोनर को?
2: डोनर को वो तो पता नहीं कौन है।
3: डोनर को थैंक यू पापा बोल देंगे।
2: वो कैसे?
4: किसी भी ब्लड डोनर का शुक्रिया अदा करने का सबसे अच्छा तरीका है खुद ब्लड डोनेट करना।
3: बस हो गया।
4: इंडिया में हर साल 1,20,00,000 यूनिट से भी ज्यादा ब्लड की जरूरत होती है। ब्लड डोनेट करें और किसी की जिंदगी बचाएं।
5: वैसे ना आजकल हद ही हो गई है लोगों की, वैसे कसम से।
6: क्या हुआ, क्यों परेशान हो रही हो?
5: अरे यार बेबी मेरा ना रिचार्ज खत्म हो गया था, नेट पैक भी खत्म हो गया था, खुद भी रिचार्ज नहीं कर सकती थी, ना ही मैं आपको कॉल कर पा रही थी। तो मैंने सोचा जाके ना दुकान से ही करा लेती हूँ। मैं दुकान पे गई, उसने मुझे बोला मैम 600 रुपए लगेंगे। मैंने उसको 600 रुपए दे दिए। फिर कहता मैम आपका नंबर। हद होगी यार इन लोगों की, स्मार्ट लड़की देखी नहीं कि नंबर मांगना शुरू कर देते हैं। फिर क्या, तुम्हें तो पता ही है मैं कौन सी कम ओवर स्मार्ट हूँ, मैंने भी बड़ा नंबर ले लिया। बेबी मुझे एक बात नहीं समझ आ रही, अभी तक रिचार्ज नहीं हुआ मेरा।
6: ये होगा भी नहीं। मेरा मतलब मैं देखता हूँ, तुम जाओ रेस्ट करो।
5: हाँ देखो क्या हो गया।

फ्रीक्वेंसी 91.2 पर श्रोताओं, इस समय आप जुड़ चुके हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ और कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला। आज का गुड मॉर्निंग धर्मशाला सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारी ओर से प्यार भरी नमस्ते, और इस नमस्ते के साथ गुंजन परिवार की ओर से आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। श्रोताओ, आप सभी जानते हैं आज है गणेश चतुर्थी और हम सभी बड़ी धूमधाम से इसे मना रहे हैं, और कार्यक्रम में ढेर सारी बातें भी हम आज आपके साथ करेंगे, जानकारियां भी साझा करेंगे। और कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं गणेश वंदना के साथ, तो आइए सुनते हैं इस वंदना को।

0: चलो इसी गणेश वंदना के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है। कहते हैं किसी भी शुभ काम को करना हो तो सबसे पहले हम गणेश जी को याद करते हैं। विघ्न बाधाओं को हरने वाले हैं और अपनी कृपा दृष्टि अपना आशीर्वाद अपने भक्तों पर हमेशा बनाए रखते हैं। तो श्रोतो आज के दिन की शुरुआत हो चुकी है। कहते हैं जल्दी जगना हमेशा फायदेमंद होता है, फिर चाहे वह नींद से हो, बहम से हो, अहम से हो या फिर सोए हुए ज़मीर से हो। बिल्कुल सही बात कही है, जल्दी उठने के बहुत सारे फायदे होते हैं और अगर हम नींद से जगते हैं तो हमारा स्वास्थ्य सही रहता है और आँखें सही रहती है और हमारे पूरे स्वास्थ्य पर उसका जल्दी जगने का फ़ायदा ही होता है। और अहम भी हमें किसी चीज़ का नहीं होना चाहिए। और बहम की बात करें तो श्रोताओ, बहम तो हमें सौ को सौ मील से दूर रहना चाहिए और बहम से बहुत सारी बीमारियां भी शरीर में प्रवेश कर जाती है और साथ ही साथ सोया हुआ ज़मीर हो तो उससे भी हमें जग जाना चाहिए। तो कहने का कुल मिलाकर मतलब ये हुआ कि नींद किसी भी तरह की हो उससे जगना ही हमारे लिए फ़ायदेमंद होता है। खैर हम तो नींद से जग चुके हैं और पहुंच चुके हैं रेडियो गुंजन के स्टूडियो में लेकर ढेर सारी जानकारियां और प्यारे प्यारे गीत। तो कार्यक्रम की शुरुआत तो खैर श्रोतो हो चुकी है, एक बार फिर से आप सभी को गणेश चतुर्थी की ढेर सारी शुभकामनाएँ। तो श्रोतो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं क्योंकि बहुत सारी बातें और बहुत सारी जानकारियां भी आपके साथ साझा करनी है। तो आइए कार्यक्रम में एंजॉय करते हैं। कार्यक्रम का ये पहला प्यारा सा गीत तो सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।
1: जन

श्रोता, इस समय आप बने हुए हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ और कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला। गुड मॉर्निंग धर्मशाला कार्यक्रम में श्रोताओं, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और इसी स्वागत के साथ कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बदलते मौसम की। आप सभी जानते हैं कि मौसम में काफ़ी बदलाव आ रहा है। पहले के मुकाबले बारिश भी थोड़ी कम हो रही है और अच्छा लग रहा है, क्योंकि जब कोई भी मौसम हो, जाने की कागार पे हो, तो कहीं ना कहीं बदलाव हर किसी को पसंद होता है। और आज के वेदर की बात करें तो आज का वेदर है 17 डिग्री सेल्सियस और मौसम में ह्यूमिडिटी बनी हुई है 79%, और साथ ही साथ धूप खिली अच्छी लगती है। और आजकल के दिनों में हम सभी अपने अपने घरों की सफाइयों में जुट चुके हैं। और क्या होता है श्रोताओं की, जैसे ही बारिश खत्म होती है, बारिश के बाद बहुत सारी रिपेयर हम सभी को अपने घरों पर करनी होती है। बारिश की वजह से हर जगह पानी आ जाता है, बहाव की वजह से कई बार नालियां ख़राब हो जाती हैं या फर्श उखड़ जाता है और छत खराब हो जाती है। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हमें ठीक करनी होती है, घर को सही तरीके से बनाना होता है, सीलन आ जाती है उसे भी रिपेयर करना होता है। तो हम सभी धीरे धीरे इन सभी कामकाज में जुटने वाले हैं, क्योंकि त्योहारों के सीजन जो है शुरू हो चुके हैं और जैसे ही बरसात खत्म होती है तो हम अपने कामकाज में व्यस्त हो जाते हैं। खैर, कामकाज में व्यस्त होना बेहद ज़रूरी है। इसी व्यस्तता के चलते हम थोड़ा सा आप सभी का करवा देते हैं मनोरंजन कार्यक्रम के इस अगले प्यारे से गीत के साथ। तो आप सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप रीना वर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में भाजपा चलाएगी एक महीने का राष्ट्रव्यापी सेवा संकल्प अभियान। बिलासपुर की गोविंद सागर झील में एनसीसी नेवल विंग का 12 दिवसीय सेलिंग अभियान जारी। हिमाचल सहित बाहरी राज्यों के 70 कैडेट्स ले रहे भाग। देश आज मना रहा है हिंदी दिवस, प्रदेश भर में भी कई कार्यक्रम होंगे आयोजित। देश भर में आज धार्मिक आस्था और श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है गणेश चतुर्थी पर्व। और सिरमौर जिला के नाहन स्थित डॉक्टर YS परमार मेडिकल कॉलेज में अल्ट्रासाउंड व सिटी स्कैन की सुविधा न मिलने से मरीज परेशान। अब समाचार विस्तार से। गृह मंत्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में एक महीने के राष्ट्रव्यापी सेवा संकल्प अभियान की घोषणा की है। यह अभियान जन भागीदारी के माध्यम से वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण के संकल्प को मजबूत करने के लिए 17 सितंबर से आरंभ होगा। उन्होंने कहा कि यह अभियान भाजपा, NDA के सहयोगी दलों, स्वयंसेवी संगठनों और देश भर के नागरिकों द्वारा आयोजित किया जाएगा। अभियान के तहत कार्यक्रमों में रक्तदान और जन आभार, मेरे सपनों का भारत विषय पर चित्रकला और भाषण प्रतियोगिताएं, आंगनवाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं का सम्मान तथा सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों की सफलता की कहानियों का प्रदर्शन शामिल होगा। पशुओं में पाए जाने वाले लंपी वायरस से बचाव के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत शाहपुर विधानसभा क्षेत्र में अब तक 8175 पशुओं का टीकाकरण किया जा चुका है। ये जानकारी देते हुए शाहपुर के विधायक व उप मुख्य सचेतक केवल सिंह पठानिया ने कहा कि सरकार पशुपालकों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने पशुपालकों से अपील की है कि यदि किसी पशु में बीमारी के लक्षण दिखाई दें तो उसे छिपाने की बजाय तुरंत पशुपालन विभाग को इसकी जानकारी दे, ताकि समय रहते उपचार और बचाव के प्रभावी कदम उठाए जा सकें। बिलासपुर के गोविंद सागर झील में इन दिनों NCC नेवल विंग के 12 दिवसीय सेलिंग अभियान जारी है, जिसमें हिमाचल, हरियाणा,

0: अलग स्थानों पर पहुंचकर स्थानीय लोगों को सामाजिक बुराइयों के प्रति जागरूक करने के अलावा खुद को अनुशासन में लाने के उद्देश्य से विभिन्न गतिविधियों में भाग लेते हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए समाचार कक्ष से मैं विनोद कुमार।
1: आज देश भर में हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। वर्ष 1949 में इसी दिन संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी को देश की आधिकारिक भाषा के तौर पर अपनाया था। आज हिंदी दुनिया में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषाओं में से एक है और 52 करोड़ से ज्यादा लोगों की पहली भाषा है। इस बीच हिंदी दिवस पर आज प्रदेश भर में भी कई कार्यक्रम आयोजित होंगे। भाषा व संस्कृति विभाग शिमला द्वारा गेटी थिएटर में आज जिला स्तरीय कवि सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। शिमला जिला में इस वर्ष अगस्त माह तक क्षय रोग टीबी की पहचान, जांच, उपचार और मरीजों को आवश्यक सहायता उपलब्ध करवाने के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति दर्ज की गई है। इस दौरान निर्धारित लक्ष्य से अधिक लोगों की जांच की गई है। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे शिमला जिला संवाददाता।
2: टीबी जांच दर के तहत निर्धारित लक्ष्य 24,408 के मुकाबले 28,008 लोगों की जांच की गई, जो 115% उपलब्धि है। टीबी मरीजों की समग्र जांच एवं उपचार प्रक्रिया के तहत एचआईवी स्टेटस ज्ञात करने के लक्ष्य 1,012 के मुकाबले 992 मरीजों का एचआईवी स्टेटस ज्ञात किया गया, जिसकी उपलब्धि 98% रही। टीबी मुक्त अभियान के तहत शिमला जिला में वर्ष 2025 में कुल 412 ग्राम पंचायतों में से 141 ग्राम पंचायतों को टीबी मुक्त ग्राम पंचायत घोषित किया गया। टीबी मुक्त अभियान के तहत नए पंचायत प्रतिनिधियों को प्रशिक्षण दिया जाना है। इसमें टीबी मुक्त अभियान के बारे में विस्तृत जानकारी दी जाएगी। जिला प्रशासन एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा टीबी की समय पर पहचान, जांच, उपचार की निरंतरता, टीबी मरीजों के पोषण एवं उपचार संबंधी सहायता तथा टीबी की रोकथाम पर विशेष जोर दिया जा रहा है। टीबी मुक्त अभियान की सफलता के लिए आमजन से अपील की गई है कि टीबी के लक्षण दिखाई देने पर समय रहते जांच करवाएं और चिकित्सकों द्वारा निर्धारित उपचार का पूरा कोर्स करें। आकाशवाणी समाचार के लिए शिमला से योगराज शर्मा।
1: ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज को फॉलो कर सकते हैं। शेष समाचार इस अंतराल के बाद।

0: पूरे देश में गणेश चतुर्थी का त्योहार बहुत श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। ये दिन भगवान गणेश के जन्म का प्रतीक है, जो बुद्धि, समृद्धि और सौभाग्य के देवता हैं। इसे विनायक चतुर्थी या गणेश उत्सव के नाम से भी जाना जाता है। 10 दिनों तक चलने वाले उत्सव की शुरुआत का आज पहला दिन है। इस दौरान लोग अपने घरों में भगवान गणेश की मूर्ति की स्थापना करते हैं और उनकी विशेष पूजा अर्चना करते हैं। इधर प्रदेश के ऐतिहासिक शहर नाहन में गणेश उत्सव को लेकर माहौल भक्तिमय बना हुआ है। गणेश चतुर्थी की पूर्व संध्या पर कल शहर में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शहर में 3 दिनों तक विभिन्न धार्मिक कार्यक्रम आयोजित होंगे। सिरमौर जिला के सबसे बड़े संस्थान डॉक्टर YS परमार मेडिकल कॉलेज नाहन में बंद पड़ी अल्ट्रासाउंड और सीटी स्कैन सुविधा 1.5 महीने बीत जाने के बावजूद भी शुरू नहीं हुई है, जिससे यहां रोजाना पहुंचने वाले मरीजों को परेशानी उठानी पड़ रही है। अधिक ब्यौरे के साथ हमारे जिला संवाददाता।
1: मेडिकल कॉलेज नाहन में 31 जुलाई से अल्ट्रासाउंड और सीटी स्कैन सेवाएं बंद पड़ी हुई है, जिसके चलते यहां पहुंचने वाले मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मेडिकल कॉलेज में रोजाना जिला के दूरदराज इलाकों से बड़ी संख्या में लोग इलाज करवाने के लिए पहुंचते हैं, मगर यहां अल्ट्रासाउंड और सीटी स्कैन की सेवाएं न होने से उन्हें परेशानी उठानी पड़ती है। लोगों को इन दिनों निजी अस्पतालों से ये सेवाएं लेनी पड़ रही है, जिसके चलते भारी भरकम राशि उन्हें खर्च करनी पड़ रही। वहीं मेडिकल कॉलेज प्रबंधन का कहना है कि इस बारे में सरकार व विभाग के उच्च अधिकारियों को अवगत करवाया गया है और जल्द समाधान की उम्मीद है। आकाशवाणी समाचार के लिए सिरमौर से सतीश शर्मा।
0: प्रदेश में

0: मानसून के दौरान इस बार सामान्य से 11% कम वर्षा दर्ज की गई है। हालांकि पिछले वर्ष मानसून सीजन में सामान्य से 39% अधिक बारिश रिकॉर्ड की गई थी। मौसम विभाग ने 19 सितंबर तक भारी वर्षा की संभावना से इनकार किया है। इस मानसून सीजन में वर्षा से जुड़ी घटनाओं में अब तक 300 लोगों की मृत्यु हुई है और करीब 1683 करोड़ रुपए की संपत्ति को नुकसान पहुंचा है। लोक निर्माण विभाग को सबसे अधिक 1231 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। भूस्खलन के चलते राज्य के विभिन्न स्थानों में अभी भी करीब 70 सड़कें यातायात के लिए अवरुद्ध है। अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर। आज सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता दी है। नीति आयोग बैठक की तैयारियों में जुटी सरकार शीर्षक से पंजाब केसरी ने लिखा है, प्रमुखता से उठाया जाएगा RDG बहाली का मुद्दा। दैनिक भास्कर के शब्द है, 18 और 19 सितंबर को नई दिल्ली में नीति आयोग की बैठक में हिमाचल के वित्तीय हक उठाएंगे मुख्यमंत्री। अमर उजाला ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के हवाले से लिखा है, हिमाचल में राशन गैस और दवाओं की शिकायतों पर होगी सीधी सुनवाई। दिव्य हिमाचल के अनुसार हाईकमान की मंजूरी के बाद ही होगी कांग्रेस की नियुक्तियां। प्रदेश कार्यकारिणी में अभी 50 से 60 पदाधिकारियों की और होनी है तैनाती। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष में भाजपा चलाएगी एक महीने का राष्ट्रव्यापी सेवा संकल्प अभियान। बिलासपुर की गोविंद सागर झील में NCC नेवल विंग का 12 दिवसीय सेलिंग अभियान जारी, हिमाचल सहित बाहरी राज्यों के 70 कैडेट ले रहे भाग। देश आज मना रहा है हिंदी दिवस, प्रदेश भर में भी कई कार्यक्रम होंगे आयोजित। देश भर में आज धार्मिक आस्था और श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है गणेश चतुर्थी का पर्व और सिरमौर जिला के नाहन स्थित डॉक्टर YS परमार मेडिकल कॉलेज में अल्ट्रासाउंड व सीटी स्कैन की सुविधा न मिलने से मरीज परेशान। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं 11:00 AM। नमस्कार।
1: तो इस प्यारे से गीत के बाद कार्यक्रम में फिर से आगे बढ़ते हैं। माफ़ कीजिएगा, गीत तो खैर हमने सुना दिया, लेकिन समाचारों के बाद कार्यक्रम में आपका स्वागत है। खैर, गीत भी हम आपको सुनवाएंगे क्योंकि कार्यक्रम हमारा ऐसा रहता है कि इसमें हम जानकारियां भी साझा करते हैं, समाचार भी आप तक पहुँचाते हैं और गीत संगीत भी आप तक पहुँचाए जाते हैं और मनोरंजन भी आपका करवाया जाता है। तो खैर, अब थोड़ा सा कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आज के दिन की बात करते हैं। बहुत सारी जानकारियां आज के दिन है, बहुत सारे महान व्यक्तियों के जन्म हुए हैं, बहुत सारे महान व्यक्तियों की मृत्यु भी आज के दिन हुई है और बहुत सारे जो है इतिहास आज के दिन मतलब हम लेकर आप तक आए हैं, तो उस इतिहास को साझा करते हैं। सन 2000 की बात श्रोताओं करें तो 2000 में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने अमेरिकन सीनेट के दोनों सदस्यों की संयुक्त बैठकों को संबोधित किया और ओलंपिक मशाल डिज्नी पहुंची थी। 2003 में गुयाना बिसाउ में सेना के राष्ट्रपति कुंभामाला सरकार का तख्ता पलटा था। 2003 में एस्टोनिया यूरोपियन संघ में शामिल हुआ था और साथ ही साथ 2006 में परमाणु ऊर्जा में सहयोग बढ़ाने पर इप्सा में सहमति हुई थी और तिब्बत के आध्यात्मिक निर्वासित नेता दलाई लामा को संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय सम्मान से सम्मानित करने की घोषणा की थी। विश्व से सबसे बुजुर्ग जयपुर के निवासी 137 वर्षीय हबीब मियां अस्पताल में भर्ती भी आज ही के दिन हुए थे। साथ ही साथ 2007 में जापान के तानेगोशिया स्थित प्रक्षेपण केंद्र से पहला चंद्र उपग्रह H2A प्रक्षेपित हुआ था। तो श्रोताओं, ये तो थी हमारी जानकारियाँ। अपनी जानकारियों के साथ साथ कार्यक्रम में फिर से आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत। तो बने रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ।

0: फ्रीक्वेंसी 91.2 पर श्रोता इस समय आप जुड़ चुके हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ और कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला। तो श्रोता कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज के दिन जन्मे व्यक्तियों के बारे में। 1910 की बात की जाए तो रसूना सैद दूसरे विश्व युद्ध के दौरान सक्रिय महिला जांबाजों में से एक थी। 1914 में गोपाल दास परमानंद सीपी फिल्म निदेशक का जन्म आज ही के दिन हुआ था। और साथ ही साथ 1930 में राजकुमार कोहली फिल्मों के निर्माता रह चुके हैं, उनका जन्म भी आज ही के दिन हुआ था। 1932 में दुर्गा भाभी प्रसिद्ध भारतीय संपी स्वाधीनता सेनानी और क्रांतिकारी थे, उनका जन्म भी 1932 में आज ही के दिन हुआ था। और थोड़ा सा आगे बढ़े 1921 में मोहन थपलियाल कथाकार का जन्म भी आज ही के दिन हुआ था। और आज के दिन जन्मे व्यक्तियों की बात तो हो चुकी है, अब थोड़ा सा आज के दिन जिन महान व्यक्तियों की मृत्यु हुई थी उनकी बात करें तो 1947 में कविवर चंद्र कुंवर वत्वार्ल हिंदी के कालिदास रूप में प्रसिद्ध थे, उनका निधन आज ही के दिन हुआ था। और 2008 में राल्फ रसेल मिर्जा गालिब के प्रख्यात विशेषज्ञ एवं उर्दू के विद्वान थे, उनका निधन भी आज ही के दिन हुआ था। और चंद्र सिंह बरकाली आधुनिक राजस्थान के सर्वाधिक प्रसिद्ध प्रकृति प्रेमी कवि, उनका निधन भी 1992 में आज ही के दिन हुआ था। तो श्रोताओं ये तो थी आज की जानकारियाँ। जानकारियों के साथ साथ आप सभी का करवाते हैं मनोरंजन कार्यक्रम के इस अगले प्यारे से गीत के साथ। सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।
1: धुम धुम लक लक धुम धुम लक लक धुम धुम लक लक धुम धुम।

14वें प्यारे से गीत के बाद कार्यक्रम में एक बार फिर से हम वापिस आ चुके हैं लेकर ढेर सारी जानकारियाँ। और जानकारियों में आज की खास जानकारी तो आप सभी को पता है कि आज के दिन एक बहुत बड़ा दिन है और वो है गणेश चतुर्थी का दिन। हम सभी आज सुबह से ही भक्ति भाव में लीन है और सुबह सवेरे जल्दी उठकर अपना नहा धोकर हम अपनी पूजा अर्चना में व्यस्त हो गए थे। बहुत सारे लोग जो हैं आज इस दिन को बड़ी धूमधाम से मना रहे हैं, मंदिर सजे हुए हैं और गणेश चतुर्थी पर गणेश जी के भजन भी कानों में गूंज रहे हैं और रौनक भरा माहौल हमने आते हुए भी रास्ते में देखा है। साथ ही साथ शोधव गणेश चतुर्थी भगवान गणेश के महोत्सव के रूप में मनाए जाने वाला एक विनायक चतुर्थी हिंदू त्यौहार है। ये त्यौहार भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है और ये उत्सव 10 दिनों तक चलता है जो चतुर्थी से शुरू होकर अनंत चतुर्थी पर विसर्जन के साथ समाप्त हो जाता है। भगवान गणेश की बुद्धि सुख समृद्धि और विघ्नहर्ता बाधाओं को दूर करने वाले इन्हें माना जाता है और साथ ही साथ इनकी पूजा और स्थापना की भी हम बात करेंगे कि किस तरह से हम इन्हें भोग लगाते हैं, किस तरह से इनकी स्थापना करते हैं, विधि विधान से पूजा अर्चना करते हैं। लेकिन थोड़ा सा अपनी बातों को देते हैं विराम और थोड़ा सा भक्तिमय माहौल में लीन होने की थोड़ी सी हम सबको ज़रूरत है क्योंकि त्यौहार कोई भी हो अच्छा लगता है और भक्ति हर त्यौहार में होती है। फ़र्क ये होता है कि हर भगवान का दिन थोड़ा

श्रोतों, इस प्यारे से गणेश भजन के साथ हम फिर से कार्यक्रम में वापिस आते हैं और पूजा और स्थापना की थोड़ी सी बात करें तो पूजा और मूर्ति स्थापना बड़े साफ सुथरे स्थान पर चौकी पर की जाती है। प्रतिमा की दिशा की बात करें तो गणेश जी की मूर्ति का मुख उत्तर या पूर्व दिशा की ओर रखना शुभ होता है। बप्पा को मोदक, बेसन के लड्डू, खीर और मौसमी फलों का भोग लगाया जाता है और साथ ही साथ गणेश जी की पूजा में तुलसी का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो श्रोता, छोटी छोटी बातों का ध्यान हो हमें रखकर जो है अपनी पूजा करनी चाहिए और हर दिन हम गणेश जी की पूजा करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। हर कोई भक्तिमय माहौल में थोड़ा सा अपने आप को डुबो कर रखता है। और कहने की बात ये है श्रोताओं की एक पूजा अर्चना है जहाँ हमें मन का सुकून मिलता है। टेंशन परेशानियाँ किसे नहीं है, हर कोई अपनी टेंशन परेशानियों से जूझ रहा है और एक भगवान का दर ही है कि जहाँ हमें जाकर थोड़ा सा मानसिक सुकून मिलता है। और साथ ही साथ जो है हम लोग पूजा अर्चना करते हैं। गणेश चतुर्थी पर भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित की जाती है और अगले 10 दिन तक घर घर में बप्पा का विधिवत पूजन होता है। गणेश जी को लड्डू और मोदक का भोग अर्पित किया जाता है। कुछ बड़े मंडालों और भव्य और रंगारंग कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है और इस कड़ी में गणेश चतुर्थी पर गणपति जी की प्रतिमा की स्थापना कर मुहूर्त और पूर्ण विधि के बारे में भी हम थोड़ा सा जान लेते हैं, क्योंकि त्यौहार कोई भी हो जब हम उसे बड़े विधि विधान से मनाते हैं तो हमें तो खैर पता होता ही है, साथ ही साथ इन त्यौहारों के बारे में हमारे बच्चों को भी पता लग जाता है। कहते हैं जब पेरेंट्स कुछ इस तरह के काम करते हैं या फिर बेसिक शिक्षा की बात की जाए तो बेसिक शिक्षा जो है बच्चे अपने घर से ही लेते हैं, फिर चाहे वो रीति रिवाज, संस्कृति या किसी भी त्यौहार से संबंधित जानकारी हो, बच्चों को अपने घर से ही मिलती है। बड़ों को जैसा करते देखते हैं वो भी उस रीत को उसी तरह से चलाते हैं। तो श्रोताओं, फिलहाल थोड़ी सा अपनी बातों को यहीं पर रोकते हैं और इंजॉय करते हैं कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत। तो सुनते रहिए रेडियो गुंजन।

चलो इसी गूंज के साथ कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और बात कर रहे थे हम गणेश चतुर्थी के बारे में और चौकी सजाने की बात करें श्रोताओं, तो एक साफ चौकी पर लाल या पीले रंग का कपड़ा हम सबसे पहले बिछाते हैं, उसके बाद चौकी पर अक्षत यानी चावल रखें और गणेश जी की मूर्ति स्थापित करने की तैयारियों में हम जुट जाते हैं। गणेश जी के पास एक तांबे या पीतल का कलश रखते हैं जिसमें जल, गुलाब जल और सुपारी, सिक्का, अक्षत रखते हैं और कलश के ऊपर आम के पत्ते लगाकर नारियल को रखा जाता है। इसके बाद गणेश जी की मूर्ति की को चौकी पर विराजमान किया जाता है। मूर्ति स्थापित करते समय हाथ में अक्षत और फूल लेकर भगवान गणेश का ध्यान किया जाता है, उन्हें मन में ध्याया जाता है और जो जानकार है वो गणपति जी का मंत्र भी करते हैं, जैसे ओम गणे गणपति नमः मंत्र का जाप किया जाता है। और जिन्हें नहीं पता होता है वो अपने भक्ति भाव से जो है प्रभु को याद करते हैं, भगवान को याद करते हैं, गणेश जी को याद करते हैं और वो उनकी पुकार को सुनते हैं। घर में विधि विधान से प्राण प्रतिष्ठा की परंपरा होती है और किसी जानकार पंडित से हम बहुत सारी चीज़ों का ज्ञान भी लेते हैं और उसे स्थापित भी करते हैं। गणेश जी की मूर्ति की पूजा में कई चीज़ों का विशेष महत्व रहता है, जैसे पूजा के दौरान रोली, चंदन, अक्षत, लाल फूल और शमी पत्र अर्पित किए जाते हैं। भगवान गणेश को ध्रुवा घास विशेष प्रिय होता है, इसलिए उन्हें 21 ध्रुवा अर्पित करने की परंपरा होती है। ध्रुवा अर्पित करते समय गणेश जी का ध्यान किया जाता है और अपनी मनोकामना कही जाती है। इसके बाद धूप और शुद्ध घी का दीपक जलाया जाता है और श्रद्धा के अनुसार गणेश जी की पूजा की जाती है। श्रोता, भगवान गणेश को मोदक हम अर्पित करते हैं, लड्डू भी प्रिय है उन्हें और इनका भोग लगाया जाता है। इसके साथ साथ केला, नारियल, अन्य फल अर्पित किए जाते हैं। घर पर बने सात्विक पकवानों का भोग लगाया जाता है और भोग लगाने के बाद कुछ समय के लिए उसे भगवान को अर्पित किया जाता है। इसके बाद परिवार के सदस्यों में प्रसाद भी बांटा जाता है। श्रोताओं, ये तो थी जानकारी, जानकारियाँ भी और भी हम आपके साथ साझा करेंगे। फिलहाल

जी हाँ, शो तो बिल्कुल सही बात कही है। जब तक हम गणपति गणेश जी को ध्याते नहीं हैं, तब तक हमारे काम जो है संपूर्ण नहीं हो पाते हैं। कोई भी जगह हो, पूजा अर्चना करनी हो, शादी विवाह हो, या फिर घर की प्रतिष्ठा करनी हो, कोई भी किसी भी तरह की पूजा हो, सबसे पहले गणेश जी को ध्याया जाता है, उसके बाद ही हमारे सारे काम होते हैं। श्रोताओं, गणपति गणेश चतुर्थी को हम गणपति चतुर्थी भी कहते हैं, और भगवान श्री गणेश को समर्पित मुख्य हिंदू त्यौहार है। भगवान गणेश को बुद्धि, ज्ञान, समृद्धि और शुभता का देवता माना जाता है, और इनकी पूजा अर्चना की जाती है। बिल्कुल सही बात है। और पूजा के महत्व की बात करें तो विघ्न बाधाओं को दूर करती है इनकी पूजा। बुद्धि और विवेक की प्राप्ति होती है, घर में सुख समृद्धि और शांति आती है, नए कार्यों के लिए शुभ शुरुआत भी मानी जाती है। गणेश उत्सव की बात की जाए श्रोताओं, तो महाराष्ट्र सहित देश के कई हिस्सों में गणेश उत्सव बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। मंडाल सजाए जाते हैं, भजन कीर्तन और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, तथा श्रद्धालु गणपति बप्पा के दर्शन भी करते हैं। और मिट्टी, आजकल मिट्टी से बनी और प्राकृतिक रंगों वाली गणेश प्रतिमाओं को बढ़ावा दिया जाता है, ताकि विसर्जन के बाद जल स्रोतों को नुकसान ना हो। उत्सव मनाते समय स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण का ध्यान रखना भी श्रोता बेहद ज़रूरी होता है। फिलहाल इस समय हमें रखना है आपका ध्यान, और आप तक पहुँचाना है कार्यक्रम का अगला प्यारा सा भजन। तो आइए सुनते हैं इस गीत रूपी भजन को।

जी हाँ बिल्कुल, श्रोताओं कार्यक्रम में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है और गणेश जी की जय हो। गणेश जी की कृपा हम सभी पर बने रहे। तो गणेश चतुर्थी के अवसर पर हम थोड़ी सी बात गणेश जी की कथा की करते हैं, उनके जन्म की कथा की करते हैं। श्रोताओं पुरानी कथा के अनुसार माता पार्वती ने अपने शरीर में उपटन से एक बालक की रचना की और उसे अपने द्वारपाल बनाया था। जी हाँ बिल्कुल श्रोताओं, आज भगवान शिव वहाँ आए और बालक गणेश ने उन्हें अंदर जाने से रोका। इससे भगवान शिव और गणेश जी के बीच में संघर्ष हुआ और शिव जी ने क्रोध में उनका सिर काट दिया था। माता पार्वती ने दुखी होने पर भगवान शिव ने गणेश जी को पुनर्जीवित किया और उनके शरीर पर हाथी का सिर लगाया, तभी से वे गजानन कहलाए। भगवान शिव से ने उन्हें वरदान दिया कि किसी भी शुभ कार्य में सबसे पहले गणेश जी की पूजा अर्चना की जाएगी। जी हाँ बिल्कुल श्रोताओं, इस तरह की जो कथा है आपने भी सुनी होगी और जो भक्तिभाव में लीन लोग होते हैं वो तो इन कथाओं से जुड़े ही रहते हैं और हर चीज़ के बारे में पता होना चाहिए श्रोताओं। और गणेश चतुर्थी पर हम लोग अपने घरों पर, मंदिर पर, सार्वजनिक स्थानों पर गणेश प्रतिमा स्थापित करते हैं और प्रतिदिन पूजा अर्चना भजन सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। और महाराष्ट्र में गणेश उत्सव विशेष रूप से बड़े स्तर पर मनाया जाता है, लेकिन देश के अन्य राज्यों में भी इसकी लोकप्रियता बनी हुई है और हम सभी जानते हैं। साथ ही साथ गणेश चतुर्थी केवल धार्मिक उत्सव नहीं है, बल्कि इसे हम बुद्धि विवेक विनम्रता और अनुशासन साथ ही साथ अच्छे देता है। गणेश जी का बड़ा सिर अधिक सोचने, बड़े कान ध्यान से सुनने और छोटी आंखें एकाग्रता का प्रतीक मानी जाती है। गणेश चतुर्थी श्रद्धा, उत्साह और सकारात्मक ऊर्जा का पर्व है। ये हमें अपने जीवन में सकारात्मक के साथ जुड़ने की भी प्रेरणा देता है। श्रोताओ ये तो थी हमारी जानकारी। अपनी जानकारियों के साथ कार्यक्रम में आपको फिर से लिए चलते हैं गीत संगीत की ओर। तो आइए एंजॉय करते हैं कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत। तो सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

श्रोताओ, इस प्यारे से गीत के बाद कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज के दिन की। बहुत सारी जानकारियां लिए हुए आज का दिन है। आज हम भारतवर्ष में 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मना रहे हैं। और हिंदी दिवस के इतिहास की बात करें तो 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा में देवनागरी लिपि में हिंदी को देश की आधिकारिक भाषा के रूप में स्वीकार किया गया था। आधिकारिक तौर पर पहला राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर 1953 को मनाया गया था और प्रधानमंत्री स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस दिन को मनाने की घोषणा की थी। इस दिन को क्यों मनाया जाता है, इसके उद्देश्य की बात करें तो देश में अंग्रेजी भाषा के बढ़ते चलन और हिंदी भाषा की अनदेखी को रोकने के लिए ये दिन समर्पित है। और जागरूकता की ओर थोड़ा सा रुख करें तो नई पीढ़ी में हिंदी के प्रति प्रेम और सम्मान जगाना इसका मुख्य लक्ष्य रहा है। श्रोताओं, भारत में 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है, जबकि हर साल 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस भी मनाया जाता है। 14 सितंबर को 21 सितंबर तक देश में हिंदी सप्ताह के रूप में भी इसे मान्यता दी गई है। तो श्रोताओं, ये तो थी हमारी जानकारियाँ। अपनी जानकारियों के साथ साथ कार्यक्रम में फिर से आप सभी को लिए चलते हैं और करवाते हैं आपका मनोरंजन कार्यक्रम के इस अगले

जी हाँ, श्रोतो, हिंदी का हमारे जीवन में बहुत ही महत्व है। हिंदी भाषा में सबसे अधिक बोले जाने और समझे जाने वाली भाषाओं में से एक है। ये देश के अलग अलग क्षेत्रों और लोगों के बीच में संवाद का महत्वपूर्ण माध्यम भी है और साथ ही साथ हिंदी का साहित्य भी बहुत ही ज़्यादा समृद्ध है। मुंशी प्रेमचंद, महादेवी वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर, हरिवंश राय बच्चन और मैथिली गुप्त जैसे महान साहित्यकारों ने हिंदी को समृद्ध बनाया है। हिंदी भाषा के प्रति सम्मान बढ़ाने के लिए है और साथ ही साथ हिंदी के प्रचार प्रसार को प्रोत्साहित करने के लिए भी इस दिवस को मनाया जाता है। नई पीढ़ी को हिंदी भाषा और साहित्य से जोड़ने के लिए भी आज के दिन को हम मनाते हैं। साथ ही साथ सरकारी और सामाजिक कार्य में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा भी दिया जाता है। अपनी मातृभाषा और भारतीय भाषाई विरासत के प्रति गौरव की भावना पैदा करने के लिए भी आज के दिन को हम सभी मना रहे हैं। जी हाँ श्रोताओ, हिंदी दिवस आज हम सभी मना रहे हैं। हिंदी दिवस के संपूर्ण बातें जो हैं हम जो है आज के दिन जान पाए हैं। कई बार क्या होता है कि हमें किसी जानकारी का पता नहीं होता है, लेकिन सुनते सुनाते बहुत सारी जानकारियां हम तक पहुंच जाती हैं। इस दिन का उद्देश्य हिंदी भाषा के महत्व, सम्मान और प्रसार के प्रति लोगों को जागरूक करना होता है। तो श्रोताओं, हिंदी दिवस के एक बार फिर से आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएँ। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कार्यक्रम में आप सभी का फिर से करवाते हैं मनोरंजन कार्यक्रम के इस अगले प्यारे से गीत के साथ। तो सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

श्रोताओं, इस प्यारे से गीत के बाद कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का एक बार फिर से स्वागत है। और कार्यक्रम में हम आगे बढ़ते हैं और थोड़ी सी बात हम हरितालिका तीज व्रत की करते हैं। आज के दिन हम इसे मना रहे हैं। इस व्रत को 14 सितंबर 2026 को हम मना रहे हैं। इसमें सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं और कुंवारी कन्याएं जो है मनचाह वर प्राप्ति के लिए भी पूजा अर्चना करती हैं, ताकि भगवान शिव तथा पार्वती माँ की पूजा भी की जा सके और उन्हें मनचाह वर भी मिल सके। हरितालिका व्रत का अर्थ और महत्व की बात श्रोता करें तो ये शब्द हरत, हरण और अलिखा सखी से बना है। माता पार्वती के पिता उनका विवाह विष्णु जी से करवाना चाहते थे, तब उनकी सखियां उन्हें घने जंगल में भी ले गई थी, ऐसा कहा जाता है। और साथ ही साथ सुहागिन महिलाएं अखंड सौभाग्य के लिए अविवाहित युवतियां सुयोग्य वर की प्राप्ति के लिए इस व्रत को रखती हैं। और साथ ही साथ थोड़ा सा हम बात करें कि इसकी पूजा अर्चना की थी, सुबह स्नान करके मंदिर में संकल्प लिया जाता है और शाम को मिट्टी की शिव पार्वती तथा गणेश जी की मूर्ति बनाकर विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। साथ ही साथ ये व्रत आमतौर पर बिना पानी के निर्जला रखा जाता है और महिलाएं इस दिन 16 श्रृंगार करना चाहती हैं और मेहंदी भी लगाई जाती है पूरे विधि विधान से। और 16 श्रृंगार के साथ सुहागिन महिलाएं व्रत रखती हैं और साथ ही साथ इस रात सोए बिना भजन कीर्तन तथा रात्रि जागरण करना भी शुभ माना जाता है। और व्रत कोई भी हो, पूरे विधि विधान से किया जाए तभी वो व्रत पूरी तरह से लगता है। और महिलाएं आज हमारी बहनें खूब सजी धजी हैं। जब हम रास्ते में भी सुबह आ रहे थे तब भी हमने देखा कि बहुत सारी महिलाएं जो है सज धज कर जो मंदिर में माथा टेकने के लिए जा रही थी। किसी भी चीज़ को, किसी भी काम को बड़ी ही श्रद्धा भाव से किया जाए तो वो काम सिरे भी चढ़ता है। और अगर व्रत की बात की जाए तो विधि विधान से किसी व्रत को रखा जाए तो हमारी मनोकामनाएँ भी पूरी होती है। जितना श्रद्धा हमसे होता है उतना हमारी महिला बहनें बड़ी श्रद्धा से करती हैं और कहीं ना कहीं उनके व्रत और उनकी जो मनोकामनाएं हैं वो भगवान तक भी पहुंचती है। इन्हीं बातों और जानकारियों के साथ फिर से कार्यक्रम में रुकते हैं और आप सभी का करवाते हैं मनोरंजन कार्यक्रम के इस अगले प्यारे से गीत के साथ। तो सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

जी हाँ, श्रोताओ, तीज त्यौहार कोई भी हो, नाच गाने के बिना अधूरा ही लगता है और हम खूब इंजॉय भी करते हैं। और हरियाली तीज की बात कर रहे हैं तो हरियाली तीज हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण और लोकप्रिय त्यौहार है। इसे विशेष रूप से महिलाओं द्वारा उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। ये त्यौहार भगवान शिव और माता पार्वती के पुनर्मिलन और वैवाहिक प्रेम का प्रतीक माना जाता है। सावन के महीने के चारों ओर हरियाली होने के कारण इसे हरियाली तीज कहा जाता है। श्रोताओ, हरियाली तीज श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि को मनाया जाता है और इस दिन महिलाएं भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करती हैं और अपने परिवार की सुख समृद्धि की कामना भी करती हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार माता पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की थी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें पत्नी के रूप में स्वीकार किया था। इसलिए हरियाली तीज को शिव पार्वती के प्रेम, समर्पण और दाम्पत्य जीवन से जोड़कर देखा जाता है। इसके साथ साथ थोड़ी सी बात और कर लेते हैं। इस दिन हरे रंग के कपड़े और चूड़ियां पहनी जाती है, हाथों में मेहंदी लगाई जाती है, झूले झूलते हैं और तीज के लोकप्रिय गीत भी गाए जाते हैं। भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है और कई महिलाएं अपने परंपरा और स्वास्थ्य के अनुसार व्रत रखती हैं। वैवाहिक महिलाएं पति और परिवार की सुख समृद्धि की कामना करती है। साथ ही साथ तीज त्यौहार केवल धार्मिक पर्व नहीं है बल्कि श्रोताओं, प्रकृति और पर्यावरण से जुड़ा त्यौहार भी है। सावन में पेड़ पौधे हरे भरे हो जाते हैं, वर्षा में वातावरण सुंदर बन जाता है। ये पर्व हमें प्रकृति की रक्षा, पेड़ लगाने और पर्यावरण को हरा भरा रखने का भी संदेश देता है। श्रोताओं, सावन की फुहारे, चारों ओर हरियाली, हाथों में सजी मेहंदी, झूलों के मधुर आवाज, यही तो है हरियाली तीज का खूबसूरत सा रंग। हरियाली तीज सिर्फ एक त्यौहार नहीं है बल्कि प्रेम, आस्था, सुहाग, प्रकृति और हमारी लोक संस्कृति का सुंदर संगम है। तो आइए इस पावन पर्व की परंपराओं और महत्व को हम इंजॉय करें।

हाय श्रोताओ, ऐसा तो नहीं है, कुछ नहीं है, बहुत कुछ है हमारे पास। हमारे पास प्यारे प्यारे दोस्त हैं जिनसे मिलने के लिए हम हर दिन चले आते हैं। तो श्रोताओ, अपनी बातों और जानकारियों के साथ कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर हम पहुंच चुके हैं। अब चलते चलते आपको सुनवा देते हैं कार्यक्रम का अंतिम प्यारा सा गीत, और इसी गीत के साथ आप सभी को एक बार फिर से गणेश चतुर्थी की ढेर सारी शुभकामनाएँ। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बढ़ते हैं कार्यक्रम की ओर और इन्जॉय करते हैं कार्यक्रम का ये प्यारा सा गीत।

0: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनवाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, ताजा गर्म भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है नौवां राष्ट्रीय पोषण माह।
1: हे भगवान,
2: फिर से पापा का पारा चढ़ गया
1: यार। अभी तो गर्मियां शुरू हुई हैं और 7000 का बिल आने लगा। ये एसी क्यों ऑन है? और तुम ना मोटर थोड़ी कम चलाया करो, ये पंखा भी ऑन है।
3: तो लगवा क्यों नहीं देते सोलर पैनल? बिजली का बिल भी जीरो हो जाएगा
2: और आपका गुस्सा भी।
1: भाई अब तो लगाना ही होगा ताकि तुम दोनों के ताने भी हो जाएं जीरो।
4: जीरो बिजली बिल के लिए आप भी सोलर लगाएं। हर घर सूर्य घर।

आते बड़े धूम से गणपति जी जाते बड़े धूम से गणपति जी, आखिर सबसे पहले आकर हमारे दिलों में बस जाते गणपति।

वक्र तुंड महाकाय को अपने भक्तों से प्यार है, दिल से जिसने पूजा समझो उसका बेड़ा पार है। नए कार्य की शुरुआत अच्छी हो, हर मनोकामना सच्ची हो, गणेश जी का मन में वास रहे, गणेश चतुर्थी आप अपनों के पास रहे। आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं।

0: जब से माँ को नानी के यहाँ भेजा है कितने चिड़चिड़े हो गए हो।
1: बेटा टीबी है उसको।
0: टीबी का इलाज तो यहाँ भी हो सकता है, फिर क्यों भेज दिया?
1: अगर वो यहाँ रहती ना तो लोग कन्नी काट रहे होते हमसे।
0: मुझे लोग नहीं, मम्मी।
1: अरे क्या अर्जुन, उठेगा तो सरप्राइज देंगे।
2: अर्जुन
1: बहुत मिस कर रहा था तुमको, और मैं भी टीवी रिमोट का सरप्राइज समझ नहीं पा रहा था।
3: अपनों का जोड़ है टीबी का तोड़, तो फिर भेदभाव क्यों? टीबी के इलाज में अपनों का साथ दें।
2: ये जो पिछली पीढ़ी गुजर गई है ना, हमारे दादा दादी नाना नानी, ये रिश्ते निभा कर गई हैं। इन्होंने उस दौर में भी रिश्तों को जोड़े रखा। जब रिश्ते टूटने की नौबत आ जाती थी, ये बर्दाश्त करना जानते थे, सुन लेना जानते थे। इनके लिए प्राथमिकता रिश्ते थे, बहस नहीं। ये चार लोगों को साथ बैठाकर बात करते थे, समाधान खोजते थे, और आखिर में नतीजा गले मिलने का निकलता था। लेकिन आज की पीढ़ी यानी हम छोटी छोटी बातों पर रिश्ते तोड़ रहे हैं। हमारे अंदर सहनशीलता कम होती जा रही है। हम चाहे कितने भी पढ़ लिख जाएं, कितने भी सफल हो जाएं, या खुद को दूसरों के सामने कितना भी अच्छा साबित कर दें, लेकिन अगर रिश्ते निभाने की ताकत और बर्दाश्त नहीं है तो सब अधूरा है। अगर यही चलता रहा तो आने वाली पीढ़ी रिश्तों के बिना जीना सीख जाएगी। माँ बाप से दूर रहना सामान्य समझेगी, अपनों से दूर रहना पसंद करेगी। रिश्तों की अहमियत धीरे धीरे खत्म हो जाएगी, और अगर समय रहते नहीं संभले तो बहुत जल्द हम एक दूसरे को खो देंगे।
4: जा रही हो बेटा?
5: अरे दादाजी अब उठ गए? हाँ दादाजी अब मैं ठीक हो गई, अब मैं कहाँ जा रही हूँ?
4: बहुत अच्छा, मैंने कहा था ना तुम्हें ब्लड मिल जाएगा, भगवान का शुक्र है।
5: हाँ मैंने गॉड को थैंक यू बोला।
6: और डॉक्टर को भी?
5: अरे हाँ, डॉक्टर अंकल को भी और नर्स आंटी को भी।
4: और ब्लड डोनर को?
5: डोनर को वो तो पता नहीं कौन है।
6: डोनर को थैंक यू पापा बोल देंगे।
5: वो कैसे?
7: किसी भी ब्लड डोनर का शुक्रिया अदा करने का सबसे अच्छा तरीका है खुद ब्लड डोनेट करना।
6: बस हो गया।
7: इंडिया में हर साल 1,20,00,000 यूनिट से भी ज्यादा ब्लड की जरूरत होती है। ब्लड डोनेट करें और किसी की जिंदगी बचाएं।
8: वैसे ना आजकल हद्दी हो गई है लोगों की, वैसे कसम से।
9: क्या हुआ, क्यों परेशान हो रही हो?
8: अरे यार बेबी मेरा ना रिचार्ज खत्म हो गया था, नेट पैक भी खत्म हो गया था, खुद भी रिचार्ज नहीं कर सकती थी, ना ही मैं आपको कॉल कर पा रही थी। तो मैंने सोचा जाके ना दुकान से ही करा लेती हूँ। मैं दुकान पे गई, उसने मुझे बोला मैम 600 रूपए लगेंगे। मैंने उसको 600 रूपए दे दिए, फिर कहता मैम आपका नंबर। हद होगी यार इन लोगों की, स्मार्ट लड़की देखी नहीं कि नंबर मांगना शुरू कर देते हैं। फिर क्या, तुम्हें तो पता ही है मैं कौन सी कम ओवर स्मार्ट हूँ, मैंने भी गलत नंबर ले लिया। बेबी मुझे एक बात नहीं समझ आ रही, अभी तक रिचार्ज नहीं हुआ मेरा।
9: ये होगा भी नहीं। मेरा मतलब मैं देखता हूँ, तुम जाओ रेस्ट करो।
8: हाँ देखो क्या हो गया।

92.2 मेगाहर्ट्ज पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और हाजिर हो गई हूँ कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने लेकर। तो श्रोताओं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम का सबसे पहला प्यारा सा गीत। आप यूं ही बने रहिए 91.2 मेगाहर्ट्ज रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम सुन रहे हैं आप गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

गीत सुहाने नए पुराने इस समय श्रोता सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत।

आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ 91.2 मेगाहर्ट्ज पर कार्यक्रम सुन रहे हैं। गीत सुहाने नए पुराने, लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

आप बने हुए हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

0: बदलते।
1: गीत सुहाने नए पुराने आप सुन रहे हैं 91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी। आइए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम सुन रहे हैं आप गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

गीत सुहाने नए पुराने इस समय श्रोता सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी, और लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत।

0: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनवाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, ताज़ा गर्म भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है नौवा राष्ट्रीय पोषण माह।
1: हे भगवान,
2: फिर से पापा का पारा चढ़ गया
1: यार। अभी तो गर्मियां शुरू हुई हैं और 7000 का बिल आने लगा। ये एसी क्यों ऑन है? और तुम ना मोटर थोड़ी कम चलाया करो, ये पंखा भी ऑन है।
3: तो लगवा क्यों नहीं देते सोलर पैनल? बिजली का बिल भी जीरो हो जाएगा
2: और आपका गुस्सा भी।
1: भाई अब तो लगाना ही होगा ताकि तुम दोनों के ताने भी हो जाएं जीरो।
4: जीरो बिजली बिल के लिए आप भी सोलर लगाएं। हर घर सूर्य घर।

आते बड़े धूम से गणपति जी जाते बड़े धूम से गणपति जी, आखिर सबसे पहले आकर हमारे दिलों में बस जाते गणपति जी।

महाकाय को अपने भक्तों से प्यार है, दिल से जिसने पूजा समझो उसका बेड़ा पार है। नए कार्य की शुरुआत अच्छी हो, हर मनोकामना सच्ची हो, गणेश जी का मन में वास रहे, गणेश चतुर्थी आप अपनों के पास रहे। आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं।

0: जब से माँ को नानी के यहाँ भेजा है कितनी चिड़चिड़े हो गए हो।
1: बेटा टीबी है उसको।
0: टीबी का इलाज तो यहाँ भी हो सकता है, फिर क्यों भेज दिया?
1: अगर वो यहाँ रहती ना तो लोग कन्नी काट रहे होते हमसे।
0: मुझे लोग नहीं, मम्मी।
1: अरे क्या अर्जुन, उठेगा तो सरप्राइज देंगे।
2: अर्जुन
1: बहुत मिस कर रहा था तुमको, और मैं भी टीवी रिमोट का सरपर समझ नहीं पा रहा था।
3: अपनों का जोड़ है टीबी का तोड़, तो फिर भेदभाव क्यों? टीबी के इलाज में अपनों का साथ दें।
4: ये जो पिछली पीढ़ी गुजर गई है ना, हमारे दादा दादी नाना नानी, ये रिश्ते निभा कर गई हैं। इन्होंने उस दौर में भी रिश्तों को जोड़े रखा। जब रिश्ते टूटने की नौबत आ जाती थी, ये बर्दाश्त करना जानते थे, सुन लेना जानते थे। इनके लिए प्राथमिकता रिश्ते थे, बहस नहीं। ये चार लोगों को साथ बैठाकर बात करते थे, समाधान खोजते थे, और आखिर में नतीजा गले मिलने का निकलता था। लेकिन आज की पीढ़ी यानी हम छोटी छोटी बातों पर रिश्ते तोड़ रहे हैं। हमारे अंदर सहनशीलता कम होती जा रही है। हम चाहे कितने भी पढ़ लिख जाएं, कितने भी सफल हो जाएं, या खुद को दूसरों के सामने कितना भी अच्छा साबित कर दें, लेकिन अगर रिश्ते निभाने की ताकत और बर्दाश्त नहीं है तो सब अधूरा है। अगर यही चलता रहा तो आने वाली पीढ़ी रिश्तों के बिना जीना सीख जाएगी। माँ बाप से दूर रहना सामान्य समझेगी, अपनों से दूर रहना पसंद करेगी। रिश्तों की अहमियत धीरे धीरे खत्म हो जाएगी, और अगर समय रहते नहीं संभले तो बहुत जल्द हम एक दूसरे को खो देंगे।
5: जा रही हो बेटा?
6: अरे दादाजी अब उठ गए? हाँ दादाजी अब मैं ठीक हो गई, अब मैं घर जा रही हूँ।
5: बहुत अच्छा, मैंने कहा था ना तुम्हें ब्लड मिल जाएगा, भगवान का शुक्र है।
6: हाँ मैंने गॉड को थैंक यू बोला।
7: और डॉक्टर को भी?
6: अरे हाँ डॉक्टर अंकल को भी और नर्स आंटी को भी।
5: और ब्लड डोनर को?
6: डोनर को वो तो पता नहीं कौन है।
7: डोनर को थैंक यू पापा बोल देंगे।
6: वो कैसे?
8: किसी भी ब्लड डोनर का शुक्रिया अदा करने का सबसे अच्छा तरीका है खुद ब्लड डोनेट करना।
7: बस हो गया।
8: इंडिया में हर साल 1,20,00,000 यूनिट से भी ज्यादा ब्लड की जरूरत होती है। ब्लड डोनेट करें और किसी की जिंदगी बचाएं।
9: ऐसे ना आजकल हद्दी हो गई है लोगों की, वैसे कसम से।
10: क्या हुआ, क्यों परेशान हो रही हो?
9: अरे यार बेबी मेरा ना रिचार्ज खत्म हो गया था, नेट पैक भी खत्म हो गया था, खुद भी रिचार्ज नहीं कर सकती थी, ना ही मैं आपको कॉल कर पा रही थी। तो मैंने सोचा जाके ना दुकान से ही करा लेती हूँ। मैं दुकान पे गई, उसने मुझे बोला मैम 600 रुपए लगेंगे। मैंने उसको 600 रुपए दे दिए, फिर कहता मैम आपका नंबर। हद होगी यार इन लोगों की, स्मार्ट लड़की देखी नहीं कि नंबर मांगना शुरू कर देते हैं। फिर क्या, तुम्हें तो पता ही है मैं कौन सी कम ओवर स्मार्ट हूँ, मैंने भी बड़ा नंबर ले लिया। बेबी मुझे एक बात नहीं समझ आ रही, अभी तक रिचार्ज नहीं हुआ मेरा।
10: ये होगा भी नहीं। मेरा मतलब मैं देखता हूँ, तुम जाओ रेस्ट करो।
9: हाँ देखो क्या हो गया।

0: नमस्कार दोस्तों, 91.2 मेगाहर्ट्ज पर ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और अब समय है दोस्तों कार्यक्रम हमारी सेहत का। तो दोस्तों ये कार्यक्रम हमारी सहयोगी संस्था ऑर्गन इंडिया द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है, जीवन एक अनमोल उपहार। ये कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला से 91.2 मेगाहर्ट्ज पर।
1: दोस्तों आप सुन रहे हैं सहयोगी संस्थान ऑर्गन इंडिया का कार्यक्रम जीवन एक अनमोल उपहार।

0: जीवन एक अनमोल उपहार है। अपने जाने के बाद किसी और के जीवन में उम्मीद भरें। अंगदान का संकल्प लें। अंगदान, जीवन दान।
1: मेरा नाम है पायल और हम सब ये आशा करते हैं कि आपका दिन बहुत अच्छे से गुजर रहा है। ऑर्गन इंडिया एक गैर सरकारी सामाजिक संस्थान पराशर फाउंडेशन की पहल है और हम हर कार्यक्रम में आपके लिए अंगदान, नेत्रदान और देहदान से जुड़ी हुई सूचना और अनोखी कहानियाँ लेकर आएंगे। आज एक ऐसी ही दिलचस्प कार्यक्रम के साथ हम फिर लौटे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सफर। आज के कार्यक्रम में ऑर्गन इंडिया से डॉक्टर सौरभ शर्मा हमारे साथ हैं और आज हम एक बार फिर से एक और प्रेरणा से भरी हुई कहानी लेकर आए हैं और वो हमें बहुत ही खास मेहमान से रूबरू करवाने वाले हैं। तो चलिए डॉक्टर शर्मा से बात करते हैं।
2: नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर सौरभ है और मैं ऑर्गन इंडिया की तरफ से आपका स्वागत करता हूँ हमारे इस खास कार्यक्रम जिसका नाम है जीवन एक अनमोल उपहार। दोस्तों, हमेशा की तरह हम इस बार भी एक अंगदान से जुड़ी कहानी आपको सुनाने वाले हैं। पर्पस सिर्फ यही है कि आपको अवेयर किया जा सके, आपको इससे जुड़ी हुई जानकारी दी जा सके और ऐसे लोग जो लोग सेम सिचुएशन फेस कर रहे हैं उनको मदद की जा सके, उनका डर मिटाया जा सके। तो दोस्तों, देर ना करते हुए सीधा मुद्दे पर आते हैं और अपने मेहमान से आज मुलाकात करते हैं। हमारी आज की जो मेहमान है वो जोधपुर की रहने वाली हैं। इनका नाम है मुद्रिका गहलोत और इनका परिचय मैं इस बात से देना चाहूंगा कि इन्होंने 2018 में अपने फादर की जान बचाने के लिए अपनी एक किडनी डोनेट करी थी। तो मुद्रिका जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
3: थैंक यू सौरभ जी।
2: मुद्रिका जी, देर ना करते हुए मैंने आपको इंट्रोडक्शन तो आपको दे दिया है, अगर आप इसके अलावा कुछ बताना चाहती हैं तो आप बिल्कुल बता सकती हैं, अदरवाइज सीधे आपके पापा के बारे में बात करते हैं कि 2018 में ऐसा क्या हुआ कि किडनी ट्रांसप्लांट तक की बात, मतलब किडनी ट्रांसप्लांट तक बात पहुंच गई, मतलब कब ये बीमारी शुरू हुई, क्या सिचुएशन हुई, यहाँ तक कैसे बात पहुंची?
3: जी, 2017 में एक रेगुलर चेकअप के थ्रू हम लोगों को ये पता चला था कि उनका बीपी बहुत हाई है एंड इट वाज मोर देन लाइक 200 प्लस था। इट वाज अ रेगुलर चेकअप, हमारे डॉक्टर हैं, फैमिली डॉक्टर हैं, उनसे बात चल रही थी। तो जब चेकअप कराया था इवन ही वाज शॉक्ड, उनको भी ऐसा लगा था कि अचानक से इतना कैसे हो सकता है। तो उन लोगों ने उन्होंने एक बेसिक टेस्ट वगैरह लिख दिए थे। तो द नेक्स्ट डे जब हम लोगों ने टेस्ट वगैरह कराया तो हमें पता चला कि वो ऑलरेडी बहुत टाइम से हाई था, क्योंकि मेरे पापा खुद मेडिकल में हैं तो, और वो टचवुड वो काफी फिट हैं अभी तक भी, ही इज वेरी फिट क्योंकि स्पोर्ट्स में थे हम सब लोग। तो कभी उन्हें पता ही नहीं चला, उनकी बॉडी पे कोई असर हुआ नहीं। तो जब ये चेकअप हुआ और उनके बाद टेस्ट करवाए तो वी गॉट टू नो कि उनके दोनों किडनियां 90% तक फेल है।
2: मेरा थोड़ा सा यहाँ पर डाउट है, आपने बोला रेगुलर चेकअप के दौरान ये चीज सामने आई, तो जनरली ऐसा कहा जाता है कि रेगुलर चेकअप जब आप करवाते हैं तो आपको अर्ली डिटेक्शन होता है ना? तो
3: जी,
2: आपने बोला रेगुलर चेकअप मतलब उनके उन्हें कोई बीमारी नहीं थी, वो कुछ बीमार नहीं थे, उन्हें कोई सिम्टम्स नहीं थे, जिस चर्चा के दौरान उन्होंने कुछ बताया डॉक्टर्स ने, तो ये कैसी सिचुएशन हुई, मतलब थोड़ा सा मैं इसे डिटेल में समझना चाहता हूँ। बिकॉज हम लोग हमेशा सलाह देते हैं दूसरे मरीजों को कि आप रेगुलर चेकअप करवाते रहिए ताकि किसी भी बीमारी का अर्ली डिटेक्शन हो सके, गड़बड़ हो रही है या, तो यहाँ पे तो उल्टी बात हो रही है कि रेगुलर चेकअप के दौरान सडनली किडनी फेलियर हो रहा है एंड देन ट्रांसप्लांट तक बात पहुंच रही है।
3: डैड का मोस्टली ये था क्योंकि मैंने कहा वो मेडिकल में थे तो उन्होंने कभी ये सोचा नहीं कि हाँ मतलब उनको खुद को भी सारे टेस्ट करवाने चाहिए, क्योंकि जब तक मेनली हम लोगों में क्या होता है कि अब हमें ये समझ में आया है इन लास्ट 5 इयर्स कि क्यों रेगुलर चेकअप इम्पोर्टेंट है, आप 6 महीने में 1 साल में क्यों एक बार अपना फुल बॉडी चेकअप कराओ। यही रीजन है कि हम लोग बहुत इजीली ले लेते हैं, जब तक कोई प्रॉब्लम आती नहीं है तब तक हम चेकअप कराने जाते नहीं है, राइट? ये एक ह्यूमन बिहेवियर होता है। तो इस प्रॉब्लम की वजह से जैसे मेरा मम्मा का हम लोग तो करवाते रहते हैं बिकॉज वी वर ऑलवेज कंसर्न, डैड ने कभी उस चीज को इतना लिया नहीं, ही थॉट कि मैं ठीक हूँ, कभी कुछ हुआ नहीं है, कभी भी उनको हेडेक, ये छोटी छोटी चीजें, ही वाज ऑलवेज फिट, तो ही नेवर वेंट इनटू इट। जब एक बार ऐसा हुआ कि हमने कंटिन्यूसली 2 दिन तक डैड को देखा कि उनका थोड़ा हेडेक वगैरह हो रहा है तो मम्मा वॉज कंसर्न, तो कहीं ना कहीं मम्मी का फोर्स था, डॉक्टर आए हुए थे घर पे क्योंकि दादी का भी चेकअप था, मम्मी भी करवा रही थी, तो उन्होंने रैंडमली बस डॉक्टर से सिर्फ इतना कहा कि सर प्लीज आप इनका भी ले लीजिए। तो इवन द डॉक्टर वॉज लाइक नहीं नहीं इनको तो क्या होगा, बिकॉज उन्होंने भी हमें स्टार्टिंग से देखा है, पापा को देखा है, तो ही वॉज ऑल्सो लाइक कि नहीं इनको कुछ नहीं होगा, आप चलो आप बोल रहे हो तो मैं कर लेता हूँ. तो दिस वॉज अ सिचुएशन विद डैड स्पेसिफिकली कि ऐसा क्यों रैंडमली इट हैपेंड.
2: ओके, तो चलिए फैमिली की बात करते हैं. तो जब भी मतलब ऐसी सिचुएशन सामने आती है तब जनरली डिनाइल होता है एक तरह से कि नहीं ऐसा हो नहीं सकता, कहीं कुछ मिस्टेक हुई है. तो आपकी फैमिली, आपका, आपके फादर का क्या रिएक्शन था जब सडनली ये सब चीजें इस लेवल पर पता चली?
3: मेरे फादर का डिनाइल था, आई अग्री फॉर दैट, बिकॉज इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर हिम टू एक्सेप्ट द फैक्ट कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि यू नो फादर्स आर स्ट्रॉन्ग, दे आर सपोज टू बी स्ट्रॉन्ग, ऐसा उन्हें बनाया जाता है, समझाया जाता है. तो उनका ऑफकोर्स थोड़ा सा था, बट द मोमेंट हमें पता चला कि ऐसा कुछ है, मैं, मेरी छोटी बहन और मेरी मदर, वी वर वेरी कंसर्न. हमें पता है क्या सिचुएशन होती है, बिकॉज नाना को हमने देखा है, जो भी हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं, सो वी न्यू दैट बीपी इज अ थिंग जो आपके हार्ट और किडनी को बहुत जल्दी इफेक्ट कर सकता है, आपको पता भी नहीं चलता और वो यू नो अंदर ही अंदर समथिंग हैपन. तो हम इस चीज को लेके थे श्योर कि कहीं कुछ हो सकता है, एंड वी टुक अप्रोप्रिएट सिचुएशन, हम डिनाइल में नहीं थे.
2: सो वंस इट इज डिटरमाइंड ये हो गया है, देन क्या हुआ, देन आपने क्या एक्शन लिया इस पर?
3: क्योंकि उनका बीपी बहुत ज्यादा था और दोनों किडनी ऑलमोस्ट 90% फेल्ड थी, जो डॉक्टर ने फर्स्ट हमें रिकमेंड किया था वाज टू बी ऑन डायलिसिस. दिस इज द फर्स्ट स्टेप राइट, कि आप डायलिसिस पे आ जाओ. और फर्स्ट डे जब एडमिट हुए थे तभी उनका दो बार डायलिसिस हुआ था, उनका क्रिएटिन एक्टिव बहुत ज्यादा हाई था, मतलब रिपोर्ट के बाद ऑफकोर्स जब हम लोगों ने रिपोर्ट करवाई कि पता चला क्रिएटिन एक्टिव बहुत हाई था, तब ये सिचुएशन थी. बट जैसे मैं बहुत मतलब गूगल वगैरह इंटरनेट यूज करना बहुत इजी एक्सेस हो गया है, तो हमें मुझे बहुत था कि टू नो अबाउट ऑल दीज थिंग्स. तो जब हम लोगों ने इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ा था तो वी न्यू दैट डायलिसिस ज्यादा टाइम तक नहीं चल पाता. आई मीन बोथ द केसेस, मैंने वो भी देखे हैं जो चार चार पाँच पाँच साल आठ आठ साल रहे हैं, दैट इज ऑल्सो गुड. बट वी हैड एन अंडरस्टैंडिंग के कहीं ना कहीं दिस विल यू नो कम टू एन एंड, मे बी कहीं कोई और प्रॉब्लम हो जाए. तो हम उस चीज के लिए थोड़ा रेडी नहीं थे, तो वी थॉट ऑफ काफी लोगों से बात करी, काफी डॉक्टर से बात करी, ऑफ कोर्स सजेशन हुए थे, पहली बार ऐसी सिचुएशन है फैमिली के अंदर, तो देयर वर लॉट ऑफ डिस्कशन. वी केम टू दिस,
2: मेरा सेम नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला था कि आपके फादर ऑलरेडी मेडिकल फील्ड से हैं और दिन रात डॉक्टरों के टच में रहते हैं, एंड आप भी इतना गूगल जानते हो, आप एजुकेटेड हो, अवेयर हो चीजों को लेकर, तो 17 लोगों से मिले होंगे, 17 बातें सुनी होंगी, 17 सजेशन सुने होंगे, तो फाइनली कंक्लूजन कैसे पहुंचा कि हाँ. तक किस हॉस्पिटल में आपने दिखाया, कहाँ ट्रांसफर करने का फैसला किया?
3: जैसे जोधपुर के ही हॉस्पिटल में थे हम लोग मेडिपल्स में, क्योंकि वो रेलवे से अफिलिएटेड है, तो हम लोग मेडिपल्स में डायलिसिस करवा रहे थे. जैसे आपने कहा 17 लोगों से मिलते हैं, पापा डॉक्टर हैं, ऑफ कोर्स जब डायलिसिस करवाते हैं तो आप अकेले बेड पे नहीं होते, आपके आसपास कम से कम 7-8 लोग होते हैं, 10 लोग होते हैं, तो आप सबसे बात करना चाहते हैं, कोई वहाँ पे 2 साल से है, कोई 1 साल से है, कोई अभी आया है, तो सबके अपने एक्सपीरियंसेस होते हैं. और इसी तरीके से जैसे मैंने, हम लोग बैठते थे पापा के साथ, मम्मी बैठती थी, कभी मैं, कभी मेरी बहन, तो वी हैड स्लॉट. तो हमें समझ में आया कि ये चीज़ थोड़ी मोनोटोनस हो गई है, और क्योंकि पापा कहीं ना कहीं डिनाइल में, और हर अल्टरनेट डे आपको जाना पड़ता है या हर 2 दिन में एक बार जाना पड़ता है, तो क्या होता है जब कोई इंसान जाने वाला होता है तो वो पहले से सोचने लग जाता है, कल मेरा अपॉइंटमेंट है, कल मुझे यहाँ जाना है, कल मैं इतने बजे यहाँ से निकलूंगा, मम्मी ये सोचती है कि खाना बनाना है, मैं ये सोचती हूँ कि जॉब से फ्री होकर इतने बजे वहां पहुंचूंगी. सो यू नो द एंटायर फैमिली, वी आर लिंक्ड. हमें पता है कि हमें नेक्स्ट डे क्या करना है, तो अगर हफ्ते में 2 से 3 दिन हम ये सोच रहे हैं कि हमें अगले दिन क्या करना है, और जिस दिन वो डायलिसिस पे हैं वो 4 घंटे निकालना उनके लिए कितना यू नो प्रेशर हो जाता है, इट्स वेरी पेनफुल, डीमोटिवेटिंग. तो ऑल दीज सिचुएशन फाइनली हमारा ये था कि नहीं, हम इस तरीके से तो नहीं देख सकते, वी डोंट वॉन्ट दिस लाइफ, हमें एक बेटर लाइफ चाहिए. एंड हमने बहुत जल्दी डिसीजन ले लिया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, विद इन लाइक 4 मंथ्स व्हेन ही वाज ऑन डायलिसिस, हमने 4 महीने के अंदर ऑर्गन डोनेशन का पूरा डिसीजन ले लिया था।
2: एंड डायलिसिस के अलावा मतलब ट्रांसप्लांट में दो ऑप्शंस होते हैं बेसिकली, लिविंग ऑर्गन डोनेशन एंड डिसीज ऑर्गन डोनेशन। तो इसके बारे में भी हम बात करेंगे। यहाँ पर हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम इस पर चर्चा करेंगे कि कैसे आपने ऑप्शंस का चुनाव किया। तो जल्दी हम इस अंतराल के बाद वापस आएंगे और अपनी चर्चा को जारी रखेंगे।
1: ब्रेक से पहले आइए सुनते हैं भजन सम्राट अनूप जलोटा जी का अंग दान से जुड़ा अपना व्यक्तिगत अनुभव।
4: कहते हैं जान है तो जहान है, बात सच है, लेकिन जब जान नहीं रही तो क्या हम किसी और को जिंदगी दे सकते हैं? जी हाँ, हम जाने के बाद अपनी आंखें किसी को दे सकते हैं, तो हमारी आंखों से वो दुनिया को देख सकता है। हम अपने दूसरे ऑर्गन दे सकते हैं, दिल दे सकते हैं, और किसी और को जिंदगी मिल जाएगी। मेरी वाइफ मेधा, उसका हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ और 13 साल उसने जिंदगी और गुजारी। ये तभी हो पाया कि जिसने हार्ट डोनेट किया था उसको ये अवेयरनेस थी कि मेरे जाने के बाद मैं किसी और को एक्स्ट्रा जिंदगी दे सकता हूँ। अगर ये चीज़ हम आप सब समझ जाएं, तो ना जाने कितने लोगों का संसार खूबसूरत हो सकता है हमारे जाने के बाद। हिंदुस्तान में हर साल करीब 5 लाख लोग इसलिए मर जाते हैं कि उनको वो ऑर्गन नहीं मिलते जिससे कि उनकी जिंदगी बच सकती है। आप ऑर्गन डोनेट करके हीरो बन सकते हैं। हीरो बनने के बहुत से तरीके हैं, ये भी एक तरीका है हीरो बनने का। इस जिंदगी भर कोई आपकी बातें करेगा, एक व्यक्ति 8 लोगों की जिंदगी बचा सकता है। 8 लोगों को आप ऑर्गन डोनेट करते हैं केवल एक बॉडी से, और यदि आप ऐसा करते हैं तो वो सब लोगों के तो आप हीरो हो गए। तो कितना अच्छा होगा कि इस बात को समझें और लोगों को समझाएं। हमारा मकसद यही है कि ये खबर सब तक पहुंचाएं, सब इस बात को जानें कि एक आदमी 8 लोगों की जान बचा सकता है, उन 8 लोगों के आप हीरो बन जाएंगे। तो आज ही प्लेश करिए और हमारा साथ दीजिए।

0: दोस्तों आप सुन रहे हैं ऑर्गन इंडिया का कार्यक्रम जीवन एक अनमोल उपहार।
1: नमस्कार दोस्तों, हम बात कर रहे थे मुद्रिका से ब्रेक में जाने से पहले और ब्रेक के बाद अब हम अपनी इस चर्चा को जारी रखेंगे। ब्रेक में जाने से पहले हमने जाना कि किस तरह से प्रॉब्लम स्टार्ट हुई और किस तरह से कंक्लूजन निकला कि किडनी ट्रांसप्लांट ही सबसे उचित उपाय है इसका, इस सिचुएशन का। तो मुद्रिका जी, हम बात कर रहे थे कि कैसे चुनाव किया ऑप्शन का।
2: बिल्कुल,
1: तो आमतौर पर दो ऑप्शन होते हैं, लिविंग ऑर्गन डोनेशन एंड डिसीज ऑर्गन डोनेशन। तो आपने डिसीज के लिए ट्राई नहीं किया, सीधा लिविंग पर?
2: नहीं नहीं, हमने डिसीज के लिए किया था, जो जैसे डिसीज का होता है, ब्रेन डेड बॉडीज होती है, कैडेवर कहते हैं उसको। बिल्कुल, हम लोगों ने उसके लिए ट्राई किया था। जयपुर के हॉस्पिटल में हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाने का मतलब प्रोसेस पता किया था, हमने रजिस्टर किया था। बट यू नो, उसके बारे में भी हमने पता किया कि हाउ थिंग्स हैपन। लेकिन इतना इजीली आपको ब्रेन डेड बॉडी आना आपके लिए और वो आपके मैच करना किडनी, फिर वो आपको बुलाएंगे, फिर वो टेस्ट करेंगे, यू नो इट्स अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस। लकीली कुछ लोगों को एक महीने में मिल जाता है और कुछ लोगों को एक या दो साल में भी नहीं मिल पाता है।
1: बिल्कुल,
2: सो दिस इज, ये हमारा एक और रीजन था जहाँ हमने बोला था कि हम ये मोनोटोनस नाइट नहीं देना चाहते। प्लस कैडेवर में अगर एक साल लग गया तो हम नहीं, यू नो वी वोंट बी एबल टू हैंडल, बिकॉज एवरी वन इज वर्किंग, सबका अपना टाइम होता है और हम इस तरीके से नहीं उसको स्पेंड करना चाहते थे इन द हॉस्पिटल। तो वी वेंट फॉर लिविंग। एंड सी, अगर आप मेरा पूछें तो मेरा तो स्टार्टिंग से यही था दैट ही इज माई फादर एंड आई हैव टू डू इट। मैंने कभी किसी और से रिलेटेड बात सोची ही नहीं, मतलब कोई और रिलेटिव के बारे में मैंने और मेरी बहन ने कभी सोचा ही नहीं। जब आया था डोनेशन का, मैं और मेरी बहन तब भी रेडी थे कि हम ही करेंगे, बट ऑफकोर्स पेरेंट्स का थोड़ा सा
1: बस हाँ यही पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि जब भी कोई अनमैरिड गर्ल डोनेट करने की बात करती है तो सबसे पहले जो डिनायल आता है वो खुद डोनर या फैमिली मेंबर या डॉक्टर की तरफ से नहीं आता, वो सिर्फ वो रिसिपिएंट की तरफ से आता है कि नहीं बेटी से तो बिल्कुल नहीं लेंगे।
2: बिल्कुल,
1: तो आपकी ये कैसे था और कैसे इस चीज पर को ओवरकम किया आपने, कैसे कन्विंस किया?
2: मेरी मदर थोड़ा सा, ऑफकोर्स जैसे आपने कहा अनमैरिड लड़की, आई वॉज अनमैरिड एंड 25 आई थिंक मेरी एज थी 2018 में। एंड मम्मा बहुत ज्यादा डरी हुई थी बिकॉज हम राजस्थान से हैं, वहाँ का कल्चर, वहाँ पे शादियाँ किस मतलब जल्दी हो जाना और लड़की की शादी होना, सब चीजें मैटर करती है। तो मम्मा वॉज कंसर्न, उन्होंने इस बारे में डिस्कशन करी थी। मम्मी खुद नहीं दे सकती क्योंकि वो खुद भी बीपी और डायबिटीज है उनको। और जैसे अगर हम बात करें मेरे

0: जाएगा। और डिनाइल पेरेंट्स का था, प्लस डिनाइल मेरे सारे डॉक्टर्स का भी था अगर देखा जाए तो। देवर ऑल्सो कंसर्न क्योंकि मैं राजस्थान से आई, ऑपरेशन अपोलो में करवाया अहमदाबाद
1: जी।
0: और ऑफकोर्स वो डरे हुए थे, 25 ईयर ओल्ड अनमैरिड, देवर ऑल्सो नॉट कन्विंस। उन्होंने बहुत कोशिश करी मुझे समझाने की कि मुझे क्यों नहीं करना चाहिए, एंड मैंने उन्हें समझाने की कि मैं ही करूंगी। सो दिस ऑल्सो टुक अ लॉट ऑफ टाइम।
1: ओके, तो ये तो हो गया दूसरे लोगों के डिनाइल का। कई बार जो डोनर होता है, ठीक है आप बोल तो रहे हैं कि आप करिए, लेकिन अंदर बहुत सारे सवाल होते हैं, बहुत सारी शंकाएं होती हैं कि कैसे होगा, क्या होगा, सक्सेसफुल होगा या नहीं। तो आपके मन के अंदर अगर जानने की कोशिश करें तो उस टाइम आपकी मानसिक स्थिति कैसी थी इन चीजों को लेकर, क्या शंकाएं आपके मन में थी? बिकॉज जब आप ये चीजें शेयर करते हैं ना तो हमारे जो दूसरे श्रोतागण रहते हैं जो सेम सिचुएशन फेस कर रहे हैं उनको बहुत हेल्प मिलती है इन सब चीजों से। कई बार सेम शंकाएं, सेम डाउट्स उनके मन में भी होते हैं और उनको आंसर नहीं मिल रहे होते और हर चीज कोई कह भी नहीं पाता।
0: आई एग्री सरल जी, ट्रस्ट मी। मैं एक तरीके से अपने आप को वो कहते हैं ना चोजन वन, क्योंकि इट्स नॉट आई अंडरस्टैंड कि वो मेरे पापा हैं, कहीं ना कहीं वो एक इमोशनल फीलिंग होती है। बट अगर आप मेरे को पर्सनल लाइफ में भी देखो, मैं बहुत प्रैक्टिकल हूँ, आई नो वॉट टू डू। अगर मेरे पास फैक्ट्स हैं, मेरे पास चीजें हैं तो आई डू द थिंग्स। मैं नॉर्मली भी ऐसी ही हूँ। और जब इस सिचुएशन में एक मौका आया था तो ऐसा कहते हैं ना कि हम अपने पेरेंट्स को वी वॉन्ट टू गिव एवरी थिंग, वी कैनॉट रीपे देयर डीड जो वो हमारे लिए करते हैं। तो आप इसको देख लो, शायद सेल्फिश थी। मुझे लगा एक मौका मिल रहा है पेरेंट्स को कुछ वापस देने का, दिस वॉज माई चांस, और मैंने छोड़ा नहीं। मैं बिल्कुल भी डरी भी नहीं थी। मेरा डर अगर आप वर्ड यूज करना चाहें तो डर सिर्फ मैंने डॉक्टर से शायद एक सवाल पूछा था कि सर, बिकॉज आई वॉज यंग तो थोड़ा एक साथ में ही है अगर देखे तो। मेरा क्वेश्चन सिर्फ ये था कि सर ऑपरेशन होने से पहले मेरे को तो बेहोश करेंगे ना, विच वॉज स्टूपिड। मतलब मुझे पता है कि बहुत स्टूपिड सवाल था बट एक कहीं ना कहीं मजाक था। मैंने कहा सर मुझे पता नहीं चलना चाहिए, बाकी आप कुछ भी करो। तो यू नो आई वॉज पॉजिटिव क्योंकि एट दी एंड वो मेरे ही पापा हैं, डीएनए हमारा मैच कर रहा है, चीजें हमारी मैच करती है, तो मैं कहीं ना कहीं पॉजिटिव थी और मैं बहुत चीजें पढ़ चुकी हूँ तो कहीं डाउट नहीं था।
1: एंड कहीं कोई रेस्ट्रिक्शन रिश्तेदारों की तरफ से कि ये क्या करने जा रहे हो और ऐसा कुछ नहीं था? मतलब नॉट जस्ट बीइंग अ गर्ल और बीइंग अ अनमैरिड गर्ल, इस जस्ट जनरल लोगों को भी बोला जाता है कि आप अपनी किडनी डोनेट कर रहे हो, आपकी खुद की तबीयत खराब हो जाएगी, ये वो बहुत सारी चीजें। कभी ऐसी कोई चीज रिश्तेदारों की तरफ से सुनाई पड़ी हो? इन लोगों को जानकारी नहीं रहती, वो अक्सर बोलते हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल नहीं सर, कहते ना कि कभी किसी को ज्यादा चीजें शेयर नहीं करनी चाहिए, नजर लग जाती है
1: जी।
0: सो व्हाट हैपेंड वाज, जब हम लोग फर्स्ट टाइम गए थे ऑपरेशन वगैरह के लिए, तब हमारा एक बार ऑपरेशन कैंसिल हुआ था क्योंकि शायद पापा का वापस क्रिएटिनिन बढ़ गया था और उनके पैर में स्वेलिंग आ गई थी। तो हमें ऐसा लगा कि शायद हम लोगों ने किसी को ऐसा बताया है जो ऐसा नहीं चाहते या वो नजर लगने वाला। तो द नेक्स्ट टाइम जब हमारा ऑपरेशन एक्चुअली नेक्स्ट डेट हमें मिली थी, हम लोग एक बार अहमदाबाद छोड़ के जोधपुर आ गए थे, हफ्ते भर के लिए घर रहे थे, नेक्स्ट टाइम हमने किसी को बताया ही नहीं। वी वेंट, हम ही चार पांच जने थे, मेरी फैमिली के अलावा भी हमारे साथ दो जने और थे, हम ही वहां पहुंचे। वी हैड एवरीथिंग सॉर्टेड, हमारा कब होने वाला है ऑपरेशन सब कुछ सॉर्टेड था। तो अगर आप रिस्ट्रिक्शंस की बात करें रिलेटिव से, मैं ऐसी हूँ कि मुझे मेरे लिए अगर मेरे पेरेंट्स और मेरी बहन इफ दे आर कन्विंस, या फिर हम चारों ही एक्चुअली ऐसे हैं, अगर हम चारों किसी चीज को लेके कन्विंस हैं तो हमको फर्क नहीं पड़ता और क्या बोलते हैं
1: जी।
0: बिकॉज वो हमारे लिए ऐसा तो नहीं है ना, हर सिचुएशन में आपको लगता है कि रिलेटिव आते हैं साथ में, वो खड़े होते हैं, नहीं, एट दी एंड हम चार ही एक दूसरे को सपोर्ट कर सकते हैं इन द गुड टाइम्स एंड इन द बैड टाइम्स। तो हमारे लिए हमेशा से वही था कि जो है हम ही है, वील डू इट। अगर कोई ऑफकोर्स साथ में आएगा मोस्ट वेलकम, बट हम एंटरटेन नहीं करेंगे नेगेटिव थॉट्स हमारी लाइफ में। पहले से ही ये क्लियर मैंने और मेरी बहन ने मम्मी को कर दिया था, बिकॉज मदर थोड़ा ज्यादा डरती है, तो हम दोनों ने मम्मी को ये जरूर क्लियर कर दिया था दैट आप थोड़ा रिलैक्स रहो, थिंग्स विल बी डन, अगर सुनोगे तो लोग सुनाएंगे।
1: बिल्कुल। तो कुछ अगर प्रैक्टिकल बातों के बारे में बात करें तो जैसे कि आपने बोला कि आपने अहमदाबाद में जाकर ट्रांसप्लांट करवाया था,

0: जोधपुर से अहमदाबाद मूव करना, तो किन किन चीजों की आपको अरेंजमेंट करने पड़े, कैसा क्या सिस्टम था, मतलब क्योंकि हॉस्पिटल का पार्ट तो हॉस्पिटल प्ले कर लेता है, हॉस्पिटल के अरेंजमेंट हॉस्पिटल में कर लेते हैं, उनके पूरे प्लानिंग रहती है इन चीजों की, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें होती है जो मैनेज करनी पड़ती है, तो वो सब क्या क्या थी, क्योंकि ये सब जानकारी जो आप बताएंगे वो पेशेंट्स को हेल्प करेंगी।
1: राइट राइट। सर जैसे हम लोग रेलवे से हैं तो हमारा कहीं ना कहीं रेलवे से जो अफिलिएशन है, तो पहले हम लोगों ने प्रोसेस ये देखा था कि रेलवे का अफिलिएशन किस किस हॉस्पिटल्स में होता है। उसमें से हम लोगों के पास अहमदाबाद का अपोलो और आई गेस अहमदाबाद का एक और हॉस्पिटल था, नॉट एबल टू रिकॉल द नेम, ये दो नाम थे। एक हमारे पास नडियाद था, ये जो बड़े बड़े नाम, नडियाद आप जानते हैं एशिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल। एग्जैक्टली। तो ये नाम हमारे लिस्ट में काफी जनों ने बताए थे और ये रेलवे से अफिलिएटेड भी थे, तो हमें इस चीज का फायदा था। जब हम नडियाद गए थे तो हमारा जो रहने वगैरह का था, जिन्होंने पहले करवा रखा था, उनसे हमने पूछा था, तो उन्होंने हमें बताया था कि नडियाद के पास में फ्लैट मिलते हैं, क्योंकि हॉस्पिटल, जैसे आपने कहा, हॉस्पिटल तो अपना पार्ट करेगा, हमें क्या करना था, हमें वहां का रहना, खाना पीना वो सब एट दी एंड देखना था। तो नडियाद में और अहमदाबाद में वी वर एक्चुअली प्लानिंग कि हम लोग फ्लैट वगैरह लेके रह सकते हैं और अपना सामान ले जाएंगे, खाना वहां से। हम लोग कम्यूट देख रहे थे कि एक हॉस्पिटल से हमें कितने एरिया में हम फ्लैट ढूंढ सकते हैं या रह सकते हैं, और कि हमें आने जाने में कोई तकलीफ ना हो। हम जोधपुर से अपनी कार लेके गए थे ताकि ड्राइविंग में कोई प्रॉब्लम नहीं हो, हमें लोकल कम्युनिकेशन यूज ना करना पड़े, कभी कोई काम पड़े तो एनी टाइम हम कार लेके जा सकें। तो हमारी प्लानिंग इस हिसाब से हुई थी कि हमने पुराने लोगों से थोड़ी बात करने की कोशिश करी, थ्रू डॉक्टर्स, थ्रू अदर पेशेंट, के वो कैसे रहे थे, उन्होंने कौन सा फ्लैट लिया था। नडियाद के पास में जैसे एक बिल्डिंग है, जैसे जो वहाँ के घर हैं आसपास वाले वो भी देते हैं, उनको भी पता है ना हॉस्पिटल में जो ऑपरेशन के लिए आते हैं, तो वो भी अपना घर एक दो रूम दे देते हैं रेंट पे। तो ये पूरा हमारा एक प्रोसेस था, बट लकीली हमें एक रिलेटिव का, जब उन्हें पता चला तो उनका डायरेक्टली हमारे पास फोन आया था और उन्होंने बोला अहमदाबाद में मेरा एक फ्लैट है, वो खाली पड़ा है, आपको रहना है, आप जो भी काम करवाना है वी अंडरस्टैंड, तो आप ये फ्लैट रख लो। तो वी गॉट दैट फ्लैट। जैसा मैंने कहा कि हम कार तो लेके ही गए थे और कम्युनिकेशन हमारा हो गया था कार से, और अपोलो से उनका घर वॉज 7 मिनट।
0: ठीक है,
1: तो हमारा ये फायदा हुआ था और फाइनल डिसीजन अपोलो इसलिए हुआ था।
0: तो कितने कितने महीने पहले से शिफ्ट हो गए आप वहाँ, और ऑपरेशन के कितने दिन तक, कितने टाइम तक वहाँ रहना पड़ा, ये सब चीजें थोड़ी सी डिटेल में बताइए।
1: बिल्कुल। जैसे मेरा ऑपरेशन हुआ था जुलाई, 7 जुलाई को हुआ था ऑपरेशन, और जहाँ तक मुझे याद है मिड ऑफ अप्रैल। रीजन बीइंग जो डॉक्टर थे उन्होंने ये बोला था कि टेस्ट होंगे मेरे फादर के, मतलब एक सीरीज ऑफ टेस्ट होता है आपके, है ना, बॉडी का एक एक पार्ट लिटरली वो लोग चेक करते हैं कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, चाहे वो एक डेंटिस्ट का अपॉइंटमेंट हो, क्यों, बिकॉज आई एम अ गर्ल, तो मेरे जो वो लेडीज प्रॉब्लम से लेकर और भी जो टेस्ट होते हैं, आपके साइकाइट्रिक टेस्ट भी किए जाते हैं कि आप मेंटली कितने फिट हो टू डोनेट एंड रेसिपियंट के भी, तो देवर अ सीरीज ऑफ टेस्ट विच वर गोइंग टू हैपन। अब उन टेस्ट में हमें आप देख लीजिए लगे थे कम से कम एक या सवा महीना, हम लोग आई गेस अप्रैल मिड में चले गए थे और एक सवा महीना हम लोगों को लगा था इस पूरे टेस्ट में, मेरे और मेरे फादर के दोनों के। तो एवरी डे हम लोग सुबह पहुंचते थे 9-10 बजे तक, डॉक्टर्स हमें टेस्ट लिखते थे, हम उन लोकेशन पर जाके टेस्ट करवाते थे, फिर शाम तक फ्री होते थे, फिर वापस घर आते थे और नेक्स्ट डे द सेम रूटीन। तो ये कम से कम हमारा 1-1.5 महीने तक चला था। फिर उसके बाद एक पार्ट आता है जहाँ पे आप जो डॉक्टर्स ऑपरेशन करने आते हैं, तो जो मेरे लिए आ रहे थे डोनर, बिकॉज वही है यंग लड़की थी, तो जो मेरे लिए आ रहे थे वो नडियाद से आ रहे थे, डॉक्टर महेश देसाई, वो मेरे लिए ऑपरेशन में, मेरा लेप्रोस्कोपी होने वाला था, मेरे डॉक्टर मनोज गुंबर ने कहा था कि मैं इनका कट वगैरह नहीं लगाऊंगा, मैं लेप्रोस्कोपी ही सजेस्ट करूंगा फॉर अ गर्ल, तो उसके लिए महेश देसाई सर आने वाले थे। तो उनकी पूरी टीम से भी हम लोग मिले थे, उनके जितने टीम में डॉक्टर्स होते हैं तो व्हाट हैपेंस इज हमको एक एक जने से कंसल्ट करना होता है. इवन वो भी हमारी रिपोर्ट देखते हैं, वो हमारे सीटी स्कैन देखते हैं, बॉडी का फुल सीटी स्कैन की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है. बिकॉज एट द एंड वो सर्जरी करेंगे, दे विल गेट टू नो कि उन्हें कहाँ कहाँ कट लगाना है, क्या निकालना है, क्या इश्यूज आ रहे हैं. तो मैं उनकी टीम के भी तीनों चारों डॉक्टर्स से मिली थी. मैंने महेश सर को भी खूब रिक्वेस्ट करके मनाया है, देखा जाए तो, मेरे ऑपरेशन के लिए, बिकॉज वो भी थोड़ा सा रेसिस्टेंट है. तो इट टुक अबाउट 2 months इफ आई एम नॉट रॉन्ग फॉर द एंटायर प्रोसेस.
0: तो ठीक है मुदिका जी, यहाँ पर हम फिर से एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे.

0: दोस्तों आप सुन रहे हैं ऑर्गन इंडिया का कार्यक्रम जीवन एक अनमोल उपहार।
1: नमस्कार दोस्तों, हम बात कर रहे थे मुज्जिका जी से और ब्रेक के बाद हम वापस आ गए हैं अपने इस कार्यक्रम में। तो चलिए हम इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मुज्जिका जी, हमने बहुत सारी बातें जानी। एक और सवाल है मेरा आपसे कि जैसे पेपर वर्क, तो लिविंग ऑर्गन डोनेशन में पेपर वर्क बहुत सारा होता है, एंड चूंकि आपका तो स्टेट से बाहर जाकर आपने ट्रांसप्लांट करवाया, आपको तो शायद एक्स्ट्रा पेपर वर्क करना पड़ेगा। तो थोड़ा सा इनके बारे में बताइए, क्या क्या पेपर वर्क, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन आपको अरेंज करना पड़ा, कहाँ पे क्या दिक्कत आई, करीब कितना टाइम लगा इन सब चीजों में।
2: जैसे मैंने आपको बताया कि मैं 2 महीने अहमदाबाद रही थी टेस्ट के लिए, उससे पहले ही हमने डॉक्टर्स से पूरे क्या कहते हैं जो वहाँ के एमआर होते हैं उनसे हम लोगों ने पूरा लिस्ट ले ली थी कि हमें क्या क्या चीजें चाहिए होंगी, बिकॉज हम लोग राजस्थान के रेजिडेंट हैं और हमें अहमदाबाद आके वो करवाना है। तो आपके आइडेंटिटी प्रूफ होते हैं कि भाई मैं उनकी डॉटर हूँ, एक तो वो वाला प्रूफ भी हो जाता है जहाँ पे फादर डॉटर रिलेशन प्रूफ करना होता है, आपके आधार कार्ड वगैरह तो बहुत नॉर्मल चीजें होती हैं, वो हर जगह होता है। फिर आपका डोमिसाइल होता है that you are resident of that place. फिर आपके पुलिस वेरिफिकेशन भी होते हैं टू प्रूव दैट आप वहीं रहते हैं एंड मतलब आप उसी जगह के रेसिडेंट हैं। तो ये पुलिस के भी सिग्नेचर्स होते हैं और इनमें मुझे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम वहां पे आती है डोमिसाइल वगैरह में, जब आपको कोर्ट जाके एक्चुअली वो पेपर पूरा प्रिंट करवाना पड़ता है दैट हम लोग यहाँ पे रहते हैं, और वो क्योंकि इट्स वेरी डिफिकल्ट लॉयर्स के सिग्नेचर्स होना, उनके स्टैम्प लगना और उन्हें पूरी सिचुएशन बताना, क्योंकि हमें डॉक्यूमेंट सबमिट करने थे दैट हम लोग अप्लाई कर रहे हैं अहमदाबाद में, और हमें डॉक्यूमेंट्स में ये भी सबमिट करना था कि हम लोग अहमदाबाद क्यों जाना चाहते हैं। हमारी भी एक एप्लीकेशन थी कि हम राजस्थान में क्यों नहीं करवा रहे, हम अहमदाबाद क्यों जा रहे हैं। हमें रेलवे से एक अप्रूवल चाहिए था इन अ मैनर के रेलवे क्यों राजस्थान में ऐसा मतलब अब हॉस्पिटल नहीं है और हम रेलवे के थ्रू ही अहमदाबाद जा रहे हैं, तो वो रेलवे का अप्रूवल भी था, जो रेलवे के हेड थे उनसे हमारा एप्लीकेशन के ऊपर सिग्नेचर था। तो ये डॉक्यूमेंट,
1: कई बार मैंने लोगों से बात करी तो उन्होंने बताया कि जब हम अधिकारियों से बात करने जाते हैं तो उनको इन सब चीजों के बारे में पता ही नहीं होता।
2: जी,
1: तो
2: जी
1: आपको जीरो से उनको पहले शुरू से समझाना पड़ता है कि नहीं आपके ही सिग्नेचर की जरूरत है एंड आपको ही करने पड़ेंगे, एंड देन क्या होता है, क्यों होता है।
2: राइट मैं रेलवे में तो ये नहीं कहूंगी कि अधिकारियों को नहीं पता होता, क्योंकि क्या होता है रेलवे का वो जो पूरा डॉक्यूमेंट वगैरह होते हैं उसके अंदर जब वो हमें रिफंड देते हैं या वो वहां से हमारा जो चेक अप्रूव वगैरह करवाते हैं उनमें उनके स्टेट मतलब लिखे हुए होते हैं कि कौन कौन सी बीमारियों को दे सपोर्ट। राइट तो एग्जैक्टली मुझे रेलवे के अधिकारियों को शायद इतना नहीं समझाना पड़ रहा था, बट उनको ये चीज समझानी पड़ रही थी कि एट दी एंड मतलब मेरे डैड को ये समझाना पड़ रहा था कि मेरी डॉटर करेगी, तो यू हैव टू बी लाइक उनको ये कन्विंस करना भी इम्पोर्टेंट था कि क्यों आपकी डॉटर कर रही है कहीं और। जैसे आपने कहा कैडेवर, तो रेलवे कैडेवर भी करता है, आप स्पॉन्सर बोल लो या रेलवे से रेफरल करवा लो, तो वो कैडेवर वो भी करते हैं, तो वो चीजें समझाना मुश्किल हो रहा था। तो मेरे लिए पेपर वर्क में किडनी ट्रांसप्लांट से ज्यादा समझाना ये मुश्किल हो रहा था कि व्हाई इज योर डॉटर गिविंग इट, आप क्यों नहीं वेट करना चाहते, तो वो क्वेश्चंस मेरे ऊपर ज्यादा थे।
1: तो सब चीजें हो गई, सब ट्रांसप्लांट हो गया, अब आपके फादर और आपकी हेल्थ कैसी है? कभी आपको ऐसा लगा कि किडनी डोनेशन की वजह से आपको कभी कोई हेल्थ प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी हो?
2: नहीं सर, मैं हेल्थ प्रॉब्लम की अगर आप बात करें तो नहीं, किडनी डोनेशन की वजह से कोई हेल्थ प्रॉब्लम नहीं है, अभी भी नहीं है टचवुड, ना मेरे फादर को है ना मुझे है। हम लोग वी स्टार्टेड विद जिम, लेकिन जिमिंग का थोड़ा वेट वगैरह यू कैन नॉट, तो हम लोगों ने बेसिक जिमिंग भी स्टार्ट करी। हम आज तक मेरे डैड वॉक करते हैं और मैं मेरा थोड़ा सा वेट को लेके था, आई थिंक आई गेन्ड अ लिटिल वेट पोस्ट द ट्रांसप्लांट, और इसका रीजन भी यही है कि मेरी मॉम बहुत प्रोटेक्टिव हो गई थी, तो उन्होंने 6 महीने तक मुझे कहीं जाने नहीं दिया, घर पे बैठा आराम करना वगैरह, आप मतलब ऐसा हो ही जाता है कि उस ऑपरेशन हुआ है रेस्ट करना चाहिए, तो वो रेस्ट के चक्कर में आई गेस आई गेन सम वेट। बट अभी एट प्रेजेंट मैंने अपनी जॉब भी वैसे 6 महीने में ज्वाइन कर ली थी, मेरे फादर ने भी आई गेस 8 महीने में जॉब ज्वाइन कर ली थी, तो अभी वी आर इन अ वेरी गुड स्टेट। एक नॉर्मल सी चीज है कि हेल्दी लाइफ के लिए जो डाइट बताई गई है आप थोड़ा बहुत अगर उस पर ध्यान दो, बाहर का खाना थोड़ा कम, जैसे अगर हम लोग बाहर घूमने भी जाते हैं, हम लोग डॉक्टर की परमिशन से जब पहली बार ऑपरेशन के बाद बाहर घूमने गए थे तो हम लोग मोस्टली मेरे डैड का सारा सामान खाने का हम लोग साथ लेके गए थे कि उनके लिए क्या क्या चीजें होगी। इवन वी टुक एन इंडक्शन के खाना हम घर पे बनाएंगे, सामान ले लेंगे और घर पे खाना बना सकते हैं, जहाँ आप रूम में रुक रहे हो, जहाँ आप फार्म हाउस में रुक रहे हो। तो हम आज तक वो चीजें फॉलो करते हैं कि कहीं भी जाना हो वी प्रेफर कि मेरे फादर के जो चीजें हैं खाने वगैरह की वो हम साथ लेके चलें और खुद बनाएं रेदर देन वो बाहर खाएं।
1: ओके, तो कंक्लूड करते हैं, अगर आपको ऐसा मौका मिले कि आप कोई मैसेज देना चाहते हो समाज को अंगदान के ऊपर, तो आप क्या कहना चाहेंगे उन्हें?
2: मेरा बेसिक चीज यही होती है कि जब अपने लोगों को अपनी जरूरत होती है, द फैमिली जो हमारे लिए स्टार्टिंग से खड़ी होती है हमारे साथ सपोर्ट करने के लिए, तो वी शुड ऑलवेज बी देयर। मतलब मैं ये सिर्फ बात अपने पेरेंट्स के लिए नहीं कह रही हूँ कि भाई एक बच्चे को अपने माँ बाप के लिए करना चाहिए, आई वुड से फैमिली में कोई भी हो सकता है, भाई बहन, मम्मी पापा, बेटी बेटा। माई कंसर्न इज क्यों हमें किसी और की जरूरत पड़े, क्यों हम एक कैडेवर का वेट करें, क्यों हम एक दूसरे इंसान का वेट करें अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए। तो स्टार्टिंग से मेरा डोनर होके सबसे बड़ी चीज यही रही है, अगर मैंने किसी से बात भी करी है तो मैंने उन्हें ये कन्विंस किया है कि सी ये आपकी फैमिली का मैटर है, राइट, सो यू हैव टू बी सपोर्टिव इनफ कि आप थोड़ी सी हिम्मत कर लो, बिकॉज ट्रस्ट मी डोनर को कुछ नहीं होता है, लाइक इफ यू आर हेल्दी। मतलब ऑब्वियसली अगर आप कुछ गलत कर रहे हैं काम वो अलग बात है, आप पर्सनली अपने आप को कुछ गलत चीजों की वजह से हेल्थ को खराब कर रहे हैं तो उसमें मैं नहीं बोल रही, बट एक नॉर्मल ऑपरेशन और एक नॉर्मल प्रोसीजर के थ्रू डोनर इतना इफेक्ट नहीं होता है, इनफैक्ट यू एक्चुअली प्रोवाइड लाइफ टू योर फैमिली मेंबर। तो आई गेस दिस इज इट दैट यू हैव टू सपोर्ट, यू हैव टू बी विद योर फैमिली ताकि वो क्योंकि मुझे ऐसा लगता है फैमिली वालों का ही किडनी या कोई भी चीज है ना मैच भी ज्यादा करती, तो दे विल हैव अ बेटर लाइफ, वो 5 साल की एक्स्ट्रा लाइफ भी ना बहुत मायने रखती है।
1: बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो एक डोनर और रेसिपिएंट को मिला हूँ जिनका जिन्होंने अपने भाई को 45 इयर्स पहले किडनी दी थी, वो राजस्थान से मिले थे,
2: बिल्कुल जयपुर हनुमानगढ़ वाला है जी, मैं कनेक्टेड हूँ काफी ऑर्गन डोनेशन उनसे, तो जाते रहते हैं हम भी अटेंड करने के लिए।
1: बिल्कुल मधुरिका जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने हमें इतना समय दिया और इतनी अच्छी जानकारी हमारे श्रोताओं को दी। थैंक यू मधुरिका, थैंक यू सो मच।
2: थैंक यू जी, थैंक यू सो मच।
1: श्रोता फ्रेंड्स, मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जब भी आपको मौका मिले, चाहे वो अपनी फैमिली के बाहर हो, अगर फैमिली में, मैं तो आशा करूंगा कि फैमिली में किसी को जरूरत ही ना पड़े एंड आप अपनी लाइफ आराम से जियो, लेकिन जाने के बाद भी अंगदान करके जाए और बहुत सारे लोगों की जिंदगियां आप बचा सकते हैं इसके थ्रू। एंड ट्रस्ट मी, जब आप एक जिंदगी बचाते हो तो बहुत सुकून मिलता है इस चीज में। यहीं पर हम बिता लेते हैं, अगले शो में हम जल्दी हाजिर होंगे एक नए शख्सियत के साथ और उनकी कहानी जानेंगे। धन्यवाद।
3: आओ मिलके एक दिया जलाएं, अंतरतम के विश्वास संग बाती नेह की सजाएं, आओ मिलके एक दिया जलाएं, एकता का परचम चम ओर फहराएं, आओ मिलके एक दिया जलाएं, अंतरतम के विश्वास संग बाती नेह की सजाएं, आओ मिलके एक दिया जलाएं। दिया है हौसलों की उड़ान का, दिया है उत्सर्ग के सम्मान का, दिया है राम का रहमान का, दिया है समग्र हिंदुस्तान का, जीवन संगीत बजाएं, आओ मिलके एक दिया जलाएं, अंतरतम के विश्वास संग बाती नेह की सजाएं, आओ मिलके एक दिया जलाएं।

0: आज का ये विशेष कार्यक्रम हम यहीं समाप्त करते हैं और आपसे इसी संदेश के साथ विदा लेते हैं कि अगर हम अंग दान या नेत्र दान करें या अपने जाने के बाद किसी के जीवन में खुशियां भर सकते हैं तो हमें ये जरूर करना चाहिए। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800120 3648 पर फोन कर सकते हैं या info@organindia.org पर ईमेल भी कर सकते हैं। यदि आप अंग दान का संकल्प लेना चाहें तो आप हमारी वेबसाइट www.organindia.org पर जाकर ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। हमारी तरफ से आपको एक ऑर्गन डोनर कार्ड और एक सर्टिफिकेट ईमेल किया जाएगा। इसके बारे में आप अपने परिवार को जरूर बताएं और अपने आसपास सभी को प्रेरणा दें। अगले कार्यक्रम में फिर मिलेंगे। धन्यवाद। नमस्कार।
1: आओ मिलके एक दिया जलाएं, अंतरतम के विश्वास संग बाती नेह की सजाएं। आओ मिलके एक दिया जलाएं, एकता का परचम चम ओर फहराएं। आओ मिलके एक दिया जलाएं, अंतरतम के विश्वास संग बाती नेह की सजाएं। आओ मिलके एक दिया जलाएं, दिया है हौसलों की उड़ान का, दिया है उत्सर्ग के सम्मान का, दिया है राम का रहमान का, दिया है समग्र हिंदुस्तान का, जीवन संगीत बजाएं। आओ मिलके एक दिया जलाएं, अंतरतम के विश्वास संग बाती नेह की सजाएं। आओ मिलके एक दिया जलाएं।
0: आज का ये विशेष कार्यक्रम हम यहीं समाप्त करते हैं और आपसे इसी संदेश के साथ विदा लेते हैं कि अगर हम अंग दान या नेत्र दान करें या अपने जाने के बाद किसी के जीवन में खुशियां भर सकते हैं तो हमें ये जरूर करना चाहिए। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800120 3648 पर फोन कर सकते हैं या info@organindia.org पर ईमेल भी कर सकते हैं। यदि आप अंग दान का संकल्प लेना चाहें तो आप हमारी वेबसाइट www.organindia.org पर जाकर ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। हमारी तरफ से आपको एक ऑर्गन डोनर कार्ड और एक सर्टिफिकेट ईमेल किया जाएगा। इसके बारे में आप अपने परिवार को जरूर बताएं और अपने आसपास सभी को प्रेरणा दें। अगले कार्यक्रम में फिर मिलेंगे।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को सफल बनाने के लिए सभी सदस्य देशों का आभार व्यक्त किया है। शिखर सम्मेलन के विशेष क्षणों को दर्शाने वाला एक वीडियो प्रधानमंत्री के सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट किया गया है। वीडियो में प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स के माध्यम से भारत ने विश्व स्तर पर मित्रता, साझेदारी और सहयोग को आगे बढ़ाया है। श्री मोदी ने कहा कि शिखर सम्मेलन में अपनाया गया नई दिल्ली घोषणा पत्र साझा दृष्टिकोण और भविष्य के सहयोग के लिए स्पष्ट दिशा देगा।
1: पिछले दो दिनों की हमारी चर्चाओं ने हमारा विश्वास और मजबूत किया है कि ब्रिक्स केवल देशों का समूह नहीं सॉल्यूशंस का एक इकोसिस्टम है। हम आशा करते हैं कि इस समिट से उसमें एडॉप्ट किया गया न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन हमारे शेयर्ड विजन और फ्यूचर कोऑपरेशन को स्पष्ट दिशा देगा।
0: ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में 11 सदस्य देशों और 10 भागीदार देशों के नेताओं के साथ अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने भी भाग लिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की सफलता के लिए प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि सम्मेलन की सफलता ने वैश्विक मंच पर भारत की मजबूत छाप छोड़ी है। श्री सिंह ने कहा कि ऐतिहासिक नई दिल्ली घोषणा पत्र भारत के बढ़ते वैश्विक प्रभाव का प्रमाण है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस अधनॉम घेब्रेसस ने कहा है कि इस वर्ष ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का विषय सीधे तौर पर वैश्विक स्वास्थ्य से जुड़ा था। उन्होंने देशों से प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा निगरानी, चेतावनी प्रणाली और स्थानीय उत्पादन को मजबूत करने का आग्रह किया। विदेश मंत्रालय ने 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के सफल आयोजन में सहयोग के लिए केंद्र सरकार के सभी विभागों और एजेंसियों का आभार व्यक्त किया है। मंत्रालय ने उन सभी राज्य सरकारों का भी धन्यवाद किया जिन्होंने ब्रिक्स की विभिन्न बैठकों की मेजबानी की। उन्होंने कहा कि शिखर सम्मेलन का आयोजन जटिल कार्य था जिसके लिए सरकार और देश के सभी स्तरों पर समन्वित प्रयास जरूरी थे। ये सम्मेलन कल नई दिल्ली में सफलतापूर्वक सम्पन्न हुआ। सरकार ने कहा है कि वर्ष 2020 के बाद से 9 राज्य में 147 कोयला खंडों की नीलामी की गई है। कोयला मंत्रालय ने बताया है कि इससे लगभग 47,500 करोड़ रुपए का राजस्व और 4,90,000 नौकरियां सृजित होने का अनुमान है। उन्होंने ये भी बताया कि पिछले वित्त वर्ष में आवंटित वाणिज्यिक खदानों से लगभग 3,090 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ था। देश भर में आज हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। 1949 में इसी दिन संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी को देश की आधिकारिक भाषा के तौर पर अपनाया था। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि भारत में कई भाषाओं का होना देश की सबसे बड़ी ताकत है। हिंदी दिवस पर एक वीडियो संदेश साझा करते हुए उन्होंने कहा कि हिंदी भाषा किसी दूसरी भाषा की प्रतिद्वंदी नहीं बल्कि राष्ट्रीय एकता को जोड़ने वाली महत्वपूर्ण कड़ी है।
2: भाषा किसी भी समाज की स्मृति होती है, उसका आत्मबोध होती है। हिंदी ने इस विविधता के बीच संवाद, संपर्क और समन्वय की भाषा के रूप में देश के विभिन्न वर्गों और समुदायों को जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हिंदी का विकास भी तभी सार्थक है जब सभी भारतीय भाषाओं के सम्मान, संरक्षण और संवर्धन के साथ आगे बढ़े।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी हिंदी दिवस के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि हिंदी केवल एक भाषा नहीं बल्कि भारत की संस्कृति, सभ्यता और जीवन मूल्यों की सशक्त अभिव्यक्ति है। देश भर में आज गणेश चतुर्थी का त्यौहार श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। ये दिन भगवान गणेश के जन्म का प्रतीक है जो बुद्धि, समृद्धि और सौभाग्य के देवता हैं। बांग्लादेश के विदेश राज्य मंत्री हुमायूं कबीर ने कहा है कि उनका देश भारत के साथ संबंधों को द्विपक्षीय बातचीत के जरिए आगे बढ़ाना चाहता है। भारत बांग्लादेश सीमा से जुड़े हाल के मामलों पर श्री कबीर ने कहा कि बांग्लादेश अंतर्राष्ट्रीय कानून, सीमा संबंधी नियमों और द्विपक्षीय समझौतों के तहत कूटनीतिक बातचीत से मुद्दों का समाधान करेगा। भारत ने T20 महिला एशिया कप का खिताब जीत लिया है। फाइनल में कल भारतीय टीम ने श्रीलंका को 72 रन से हराकर 8वीं बार एशिया कप अपने नाम किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनवाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, ताज़ा गर्म भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है नवा राष्ट्रीय पोषण माह।
1: हे भगवान,
2: फिर से पापा का पारा चढ़ गया
1: यार। अभी तो गर्मियां शुरू हुई हैं और 7000 का बिल आने लगा।
2: चढ़ गया
1: यार, अभी तो गर्मियां शुरू हुई हैं और 7000 का बिल आने लगा। ये एसी क्यों ऑन है? और तुम ना मोटर थोड़ी कम चलाया करो, ये पंखा भी ऑन है।
3: तो लगवा क्यों नहीं देते सोलर पैनल? बिजली का बिल भी जीरो हो जाएगा
2: और आपका गुस्सा भी।
1: भाई अब तो लगाना ही होगा ताकि तुम दोनों के ताने भी हो जाएं जीरो।
4: जीरो बिजली बिल के लिए आप भी सोलर लगाएं। हर घर सूर्य घर।

आते बड़े धूम से गणपति जी जाते बड़े धूम से गणपति जी, आखिर सबसे पहले आकर हमारे दिलों में बस जाते गणपति।

चित्रतुंड महाकाय को अपने भक्तों से प्यार है, दिल से जिसने पूजा समझो उसका बेड़ा पार है। नए कार्य की शुरुआत अच्छी हो, हर मनोकामना सच्ची हो, गणेश जी का मन में वास रहे, गणेश चतुर्थी आप अपनों के पास रहे। आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं।

0: जब से माँ को नानी के यहाँ भेजा है कितने चिड़चिड़े हो गए हो।
1: बेटा टीवी है उसको,
0: टीवी का इलाज तो यहाँ भी हो सकता है, फिर क्यों भेज
1: दिया? अगर वो यहाँ रहती ना तो लोग कन्नी काट रहे होते हमसे।
0: मुझे लोग नहीं, मम्मी।
1: अरे क्या अर्जुन,

0: उठेगा तो सरप्राइज देंगे।
1: अर्जुन
0: बहुत मिस कर रहा था तुमको, और मैं भी टीवी रिमोट का सरपर समझ नहीं पा रहा था।
2: अपनों का जोड़ है टीबी का तोड़, तो फिर भेदभाव क्यों? टीबी के इलाज में अपनों का साथ दें।
3: ये जो पिछली पीढ़ी गुजर गई है ना, हमारे दादा दादी नाना नानी ये रिश्ते निभा कर गई हैं। इन्होंने उस दौर में भी रिश्तों को जोड़े रखा। जब रिश्ते टूटने की नौबत आ जाती थी, ये बर्दाश्त करना जानते थे, सुन लेना जानते थे। इनके लिए प्राथमिकता रिश्ते थे, बहस नहीं। ये चार लोगों को साथ बैठाकर बात करते थे, समाधान खोजते थे, और आखिर में नतीजा गले मिलने का निकलता था। लेकिन आज की पीढ़ी यानी हम छोटी छोटी बातों पर रिश्ते तोड़ रहे हैं। हमारे अंदर सहनशीलता कम होती जा रही है। हम चाहे कितने भी पढ़ लिख जाएं, कितने भी सफल हो जाएं, या खुद को दूसरों के सामने कितना भी अच्छा साबित कर दें, लेकिन अगर रिश्ते निभाने की ताकत और बर्दाश्त नहीं है तो सब अधूरा है। अगर यही चलता रहा तो आने वाली पीढ़ी रिश्तों के बिना जीना सीख जाएगी। माँ बाप से दूर रहना सामान्य समझेगी, अपनों से दूर रहना पसंद करेगी। रिश्तों की अहमियत धीरे धीरे खत्म हो जाएगी, और अगर समय रहते नहीं संभलें तो बहुत जल्द हम एक दूसरे को खो देंगे।
4: जा रही हो बेटा?
5: अरे दादाजी अब उठ गए? हाँ दादाजी अब मैं ठीक हो गई, अब मैं कहाँ जा रही हूँ?
4: बहुत अच्छा, मैंने कहा था ना तुम्हें ब्लड मिल जाएगा, भगवान का शुक्र है।
5: हाँ मैंने गॉड को थैंक यू बोला।
6: और डॉक्टर को भी?
5: अरे हाँ डॉक्टर अंकल को भी, अन्ना आंटी को भी,
4: और ब्लड डोनर को।
5: डोनर को वो तो पता नहीं कौन है।
6: डोनर को थैंक यू पापा बोल देंगे।
5: वो कैसे?
7: किसी भी ब्लड डोनर का शुक्रिया अदा करने का सबसे अच्छा तरीका है खुद ब्लड डोनेट करना।
6: बस हो गया।
7: इंडिया में हर साल 1,20,00,000 यूनिट से भी ज्यादा ब्लड की जरूरत होती है। ब्लड डोनेट करें और किसी की जिंदगी बचाएं।
8: वैसे ना आजकल हद्दी हो गई है लोगों की, वैसे कसम से।
9: क्या हुआ, क्यों परेशान हो रही हो?
8: अरे यार बेबी मेरा ना रिचार्ज खत्म हो गया था, नेट पैक भी खत्म हो गया था, खुद भी रिचार्ज नहीं कर सकती थी, ना ही मैं आपको कॉल कर पा रही थी। तो मैंने सोचा जाके ना दुकान से ही करा लेती हूँ। मैं दुकान पे गई, उसने मुझे बोला मैम 600 रुपए लगेंगे। मैंने उसको 600 रुपए दे दिए, फिर कहता मैम आपका नंबर। हद होगी यार इन लोगों की, स्मार्ट लड़की देखी नहीं कि नंबर मांगना शुरू कर देते हैं। फिर क्या, तुम्हें तो पता ही है मैं कौन सी कम ओवर स्मार्ट हूँ, मैंने भी बड़ा नंबर ले लिया। बेबी मुझे एक बात नहीं समझ आ रही, अभी तक रिचार्ज नहीं हुआ मेरा।
9: ये होगा भी नहीं। मेरा मतलब मैं देखता हूँ, तुम जाओ रेस्ट करो।
8: हाँ देखो क्या हो गया।

अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका हाजिर हो गई हूँ आप सभी के लिए कार्यक्रम लेकर पंजाबी गीतों का ये प्यारा सा सफर। बिल्कुल दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस प्यारे से सफर में। तो आइए बढ़ते हैं इस सफर में आगे और आप सभी को लेकर चलते हैं एक खूबसूरत से पंजाबी म्यूजिकल ट्रैक के सफर में।

दोस्तों आप सभी कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं पंजाबी गीतों का। आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और कार्यक्रम में सुनाते हैं आप सभी को ये प्यारा सा पंजाबी गीत।

291.2 MHz पर ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन कार्यशाला और आप सभी पंजाबी गीतों का कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिता के साथ। तो आइए श्रोताओं, बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और एंजॉय करते हैं ये प्यारा सा म्यूजिकल ट्रैक।

दोस्तों, इस खूबसूरत से गीत के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम पंजाबी गीतों में। तो आइए फिर से लेकर चलते हैं आपको एक और प्यारे से गीत की तरफ। एंजॉय कीजिए ये खूबसूरत सा पंजाबी गीत।

दोस्तों आप सभी अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ जुड़े हुए हैं 91.9 MHz पर। और आज का ये कार्यक्रम यानी कि पंजाबी गीतों का ये कार्यक्रम आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ।

दोस्तों बहुत ही खूबसूरत सा गीत आप सभी ने एंजॉय किया बिल्कुल, और आप सभी एंजॉय कर रहे हैं पंजाबी गीतों का कार्यक्रम अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला से। तो आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और फिर से लेकर चलते हैं आपको एक और पंजाबी गीत की तरफ। इसी तरह से एंजॉय करते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला, गूंज अपने पन की।

तो 91.9 MHz पर ये है आप सभी का अपना रेडियो रिंजन धर्मशाला और आप सभी इस समय जुड़े हुए हैं पंजाबी गीतों के कार्यक्रम में। बिल्कुल कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ। तो आइए दोस्तों बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं अगला ये प्यारा सा खूबसूरत सा पंजाबी गीत।

0: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, ताज़ा गर्म भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। हमारी आंगनबाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है नवा राष्ट्रीय पोषण माह।
1: हे भगवान,
2: फिर से पापा का पारा चढ़ गया
1: यार। अभी तो गर्मियां शुरू हुई हैं और 7000 का बिल आने लगा। ये एसी क्यों ऑन है? और तुम ना मोटर थोड़ी कम चलाया करो, ये पंखा भी ऑन है।
3: तो लगवा क्यों नहीं देते सोलर पैनल? बिजली का बिल भी जीरो हो जाएगा
2: और आपका गुस्सा भी।
1: भाई अब तो लगाना ही होगा ताकि तुम दोनों के ताने भी हो जाएं जीरो।
4: जीरो बिजली बिल के लिए आप भी सोलर लगाएं। हर घर सूर्य घर।

आते बड़े धूम से गणपति जी जाते बड़े धूम से गणपति जी, आखिर सबसे पहले आकर हमारे दिलों में बस जाते गणपति जी।

महाकाय को अपने भक्तों से प्यार है, दिल से जिसने पूजा समझो उसका बेड़ा पार है। नए कार्य की शुरुआत अच्छी हो, हर मनोकामना सच्ची हो, गणेश जी का मन में वास रहे, गणेश चतुर्थी आप अपनों के पास रहे। आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं।

0: जब से माँ को नानी के यहाँ भेजा है कितने चिड़चिड़े हो गए हो।
1: बेटा टीवी है उसको,
0: टीवी का इलाज तो यहाँ भी हो सकता है, फिर क्यों भेज दिया?
1: अगर वो यहाँ रहती ना तो लोग कन्नी काट रहे होते हमसे।
0: मुझे लोग नहीं, मम्मी।
1: अरे क्या अर्जुन, उठेगा तो सरप्राइज देंगे।
2: अर्जुन
1: बहुत मिस कर रहा था तुमको, और मैं भी टीवी रिमोट का सर पर समझ नहीं पा रहा था।
3: अपनों का जोड़ है टीवी का तोड़, तो फिर भेदभाव क्यों? टीवी के इलाज में अपनों का साथ दें।
4: ये जो पिछली पीढ़ी गुजर गई है ना, हमारे दादा दादी नाना नानी, ये रिश्ते निभा कर गई हैं। इन्होंने उस दौर में भी रिश्तों को जोड़े रखा। जब रिश्ते टूटने की नौबत आ जाती थी, ये बर्दाश्त करना जानते थे, सुन लेना जानते थे। इनके लिए प्राथमिकता रिश्ते थे, बहस नहीं। ये चार

0: लोगों को साथ बैठाकर बात करते थे, समाधान खोजते थे और आखिर में नतीजा गले मिलने का निकलता था। लेकिन आज की पीढ़ी यानी हम छोटी छोटी बातों पर रिश्ते तोड़ रहे हैं। हमारे अंदर सहनशीलता कम होती जा रही है। हम चाहे कितने भी पढ़ लिख जाएं, कितने भी सफल हो जाएं, या खुद को दूसरों के सामने कितना भी अच्छा साबित कर दें, लेकिन अगर रिश्ते निभाने की ताकत और बर्दाश्त नहीं है तो सब अधूरा है। अगर यही चलता रहा तो आने वाली पीढ़ी रिश्तों के बिना जीना सीख जाएगी। माँ बाप से दूर रहना सामान्य समझेगी, अपनों से दूर रहना पसंद करेगी। रिश्तों की अहमियत धीरे धीरे खत्म हो जाएगी और अगर समय रहते नहीं संभलें तो बहुत जल्द हम एक दूसरे को खो देंगे।
1: जा रही हो बेटा?
2: अरे दादाजी अब उठ गए? हाँ दादाजी अब मैं ठीक हो गई, अब मैं कहाँ जा रही हूँ?
1: बहुत अच्छा, मैंने कहा था ना तुम्हें ब्लड मिल जाएगा, भगवान का शुक्र है।
2: हाँ मैंने गॉड को थैंक यू बोला।
3: और डॉक्टर को भी?
2: अरे हाँ डॉक्टर अंकल को भी और नर्स आंटी को भी।
1: और ब्लड डोनर को?
2: डोनर को वो तो पता नहीं कौन है।
3: डोनर को थैंक यू पापा बोल देंगे।
2: वो कैसे?
4: किसी भी ब्लड डोनर का शुक्रिया अदा करने का सबसे अच्छा तरीका है खुद ब्लड डोनेट करना।
3: बस हो गया।
4: इंडिया में हर साल 1,20,00,000 यूनिट से भी ज्यादा ब्लड की जरूरत होती है। ब्लड डोनेट करें और किसी की जिंदगी बचाएं।
5: वैसे ना आजकल हड्डी हो गई है लोगों की, वैसे कसम से।
6: क्या हुआ, क्यों परेशान हो रही हो?
5: अरे यार बेबी मेरा ना रिचार्ज खत्म हो गया था, नेट पैक भी खत्म हो गया था, खुद भी रिचार्ज नहीं कर सकती थी, ना ही मैं आपको कॉल कर पा रही थी। तो मैंने सोचा जाके ना दुकान से ही करा लेती हूँ। मैं दुकान पे गई, उसने मुझे बोला मैम 600 रुपए लगेंगे। मैंने उसको 600 रुपए दे दिए, फिर कहता मैम आपका नंबर। हद होगी यार इन लोगों की, स्मार्ट लड़की दिखी नहीं कि नंबर मांगना शुरू कर देते हैं। फिर क्या, तुम्हें तो पता ही है मैं कौन सी कम ओवर स्मार्ट हूँ, मैंने भी गलत नंबर ले लिया। बेबी मुझे एक बात नहीं समझ आ रही, अभी तक रिचार्ज नहीं हुआ मेरा।
6: ये होगा भी नहीं। मेरा मतलब मैं देखता हूँ, तुम जाओ रेस्ट करो।
5: हाँ देखो क्या हो गया।

92.2 MHz पर ए है तो हाँ सारे दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला कने में शशि हाजिर हुई हो कार्यक्रम लेकरी माटी दी महक तशो तो माटी दी महक कार्यक्रम दे सफर च तो हाँ सारे दा ही प्यार भरा स्वागत है दी महक कार्यक्रम दे सफर च तो हाँ सारे दा ही प्यार भरा स्वागत है नमस्ते है। इसी नमस्ते कन्नै तुस सारे भी कार्यक्रम दे सफर कन्नै जुड़ी होने न कन्नै एह् सफर तुसां तक रहिंदा है 2 ते 3 बजे तक। कन्नै अजकना जेह्ड़ा दिन है से तुसां वास्ते भी बेहतर खास है कन्नै खास तरीके ने जेह्ड़े से तुसां अजकने दिन जो बना दे होने न। इसी कन्नै तुसां सारे भी इस कार्यक्रम दे सफर च अहां कन्नै जुड़ी सकदे कन्नै अहां कन्नै गल्लबात जेह्ड़े से जरूर करी सकदे। गलबात करने वास्ते जेड़ा हाँ दा नंबर है से तुहां तक पहुँचाई दे न नंबर है 701-811-7091 नंबर तुहां तक पहुँचाई ते कन्नै इसी कन्नै पहले कार्यक्रम दा आगाज जेड़ा है से करी लैंदे न फिरी बाकी दियां जेड़ा गल्लां न से तुहां तक लेई करी आउंदे न।

पवना जी तक ही फरमाइश पहुँचाई कने सेरेने आले न कांगड़े ते। इस ते बाद हाँ फिरी ते अपनी गलबात पर वापिस आई आते न कने समय दी जेड़ा गलबात करिए ता 2:19 कार्यक्रम च हुई न ता समय दे अनुसार अहाँ भी अपने कार्यक्रम दे सफर जो अगे बढ़ाते न कने तो हाँ सारी अजकना जेड़ा दिन ने से इंजॉय करा दे होने न। 14 सितंबर 2026 की गल अहाँ करिए सोमवार का ही दिन है। डेली की जेड़ा रूटीन है सहन की शुरू हो जाती है कने जिंदगी हर दिन अहाँ जो कुछ नया जेड़ा है से सिखाई करी जाती है कने जरूर जिंदगी ते जेड़ा है से कुछ ना कुछ सीखते हैं कने अज अहाँ जेड़ा खास पर्व बना देन से बना देन गणेश चतुर्थी। तो जरूर आज जेड़ा से तो हाँ गणेश भगवान जी की जेड़ा स्थापना है से करी थी होनी है कने पूरी श्रद्धा भाव ने ली इन्होंने न भगवान शिव जेड़ा न से माता पार्वती दे जेड़ा लाडले पुत्र जेड़ा हाँ दे भगवान गणेश जी हैं से हैं। तो इसी कने ये जेड़ा अहाँ जो बुद्धि समृद्धि सौभाग्य जेड़ा से अहाँ जो प्रदान करते न कने हाँ पूरी श्रद्धा भाव ने इन्हां दी जेड़ा भक्ति है से जरूर करते न कने भक्ति च जेड़े से लीन हो जाते न कने 10 दिन जेड़े से ये उत्सव जेड़े से अहाँ बनाते न कने कुथी ना कुथी रौनक आला जेड़ा माहौल है से हर कुथी दिखने जो मिलता है। तहाँ भी थोड़ा दे आगे बढ़ते न कने अपने कार्यक्रम का जेड़ा माहौल है से फ्री ते रौनक दिया बनाते न क्योंकि रौनक हर जगह होना जरूरी है। तो इसी कने कार्यक्रम के माहौल जो भी रौनक भरा बनाते न कने तुह तक पहुँचाते न ये फरमाइश।

0: खास पर्व है, खास पर्व की जो शुरुआत है से जरूर हुई हुए कने तो हाँ सारे भी जोर जोरा कने जड़े से इस पर्व की जड़ा तैयारियां जड़ा से करा दे होने कने कुथी ना कुथी रौनक आला जड़ा माहौल है से हर जगह दिखने जो मिला दे। दशो तो तुम सारे भी इस कार्यक्रम दे सफर चाह कने जुड़ सकते कने हाँ कने गलबात करी सकते। गलबात करने वास्ते जेड़ा नंबर है स्टूडियो दा से तुह तक पहुँचा दे ना, अगर तुह नंबर जेड़ा है से नोट नहीं कित्या, नंबर है 7 0 1 8 1 1 7 0 9 1। इस नंबर पर तुह कॉल करा या टेक्स्ट मैसेज करा या व्हाट्सएप मैसेज करा कने इस कार्यक्रम दे सफर ज अपनी पसंद का जेड़ा गीत है से जरूर सुनी सकते। इसी कन्या हाँ भी अपने कार्यक्रम दे सफर जो धीरे धीरे अगे भी बढ़ाना है पर अगले जेड़ा श्रोता न तिना कन्या कर देना गल बात। हेलो
1: नारा जी नमस्ते।
0: जी नमस्ते जी, स्वागत है जी
1: हाँ
0: तुहंदा रेडियो गुंजन धर्मशाला च। ठीक ठाक है ना
1: जी नारा जी, नारा जी तुम्हारा ही स्वागत है साढ़ा।
0: जी, तुहां कुथों
1: हाँ
0: ते
1: जी, और ठीक
0: बोला
1: ठाक
0: दे?
1: है तुम?
0: हाँ जी ठीक ठाक है जी, तुहां कुथों ते बोला दे कने तुहंदा नाम क्या है जी?
1: नारा जी नहीं वो तो बोला था परसराम।
0: जी योल ते बोला दे।
1: हाँ जी नारा जी, कोई गणेश आज सुनाएंगे, कोई बैठे प्रोग्राम चली गई ना देना आजकल।
0: जी
1: तो मैडम जी कैसे बेचारे गणेशन होना नहीं होता, कीर्तन नहीं होता है?
0: जी
1: हाँ
0: जी
1: जी,
0: जी जी
1: रिक्वेस्ट करनी है ना मैम, इसी डुबाते मत बेचारे हो। हाँ
0: जी तो भी थोड़ी देर रिक्वेस्ट करके तो शायद तो दी भी सुनी लैन जी
1: जी, आज मैं रिक्वेस्ट की थी ये तेरा सारे हो कि
0: जी
1: इसी बेचारे आज नोड़ तरना नहीं होता है, चलना
0: जी
1: डूबी आंदा बेचारा में।
0: जी
1: हाँ जी
0: जी
1: कहेंगे 8-10 दिन तो बड़ा इसे प्यार कर दे बेचारे ने। हाँ
0: जी 10 दिन तो पूरा लगाव रख दे ना जी।
1: जी हाँ जी चलो।
0: जी जी चलो अपनी अपनी सोच है ना
1: हाँ जी
0: जी।
1: इसे तो क्या करना बेचारे, कहेंगे लखा तुम्हें पता है खड़ नौल नहीं होंगे, तेरे दर्द नहीं होता
0: जी जी
1: ये आहा यो लाड़े ना। हाँ
0: जी
1: जी ठीक है ना,
0: जी जी
1: आज कोई चलो गणेश का गाना सुनाइए कोई भजन।
0: जी जरूर जी, कदिया लगा था तो जो कार्यक्रम
1: हाँ जी अच्छे लग रहा जी। हाँ
0: जी
1: जी
0: रोज ही सुनते
1: मैडम जी, मैं 4 बजे अपने पार सूट चली पौंदा था तो सुनना शुरू हो जाती।
0: जी। अच्छा 4 बजे ही सुनना शुरू हो जाते
1: हाँ जी हाँ जी,
0: जी
1: जहाँ
0: जी
1: तू दिल करता मैं राती सुन लेते गाने, प्रोग्राम चले रहा 24 घंटे ही थोड़ा।
0: जी
1: हाँ जी सुनते
0: जी
1: रहते। हाँ
0: जी धन्यवाद जी सुनने वास्ते करे
1: हाँ
0: जुड़ने
1: जी
0: वास्ते भी तो हंदा।
1: हाँ जी, थोड़ा भी जी नमस्ते
0: जी
1: जी। ठीक
0: जी धन्यवाद जी जुड़ने वास्ते।
1: है जी।
0: ये तो हाँ सारे दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला, तो हाँ सारे भी कार्यक्रम दे सफर चाह करने जुड़ सकते कन्या हाँ करने गलबात जड़े से जरूर करी सकते। इसी कन्ने आज हाँ एक और खास जेड़ा दिन बना देना से बना देना हिंदी दिवस तो जरूर ये ऊपर भी यहाँ गलबात करनी है कने जेड़ा तो हिंदियाँ फरमाइशा न सभी जरूर तुह तक पहुँचानी है न, तो फिर यहाँ आगे बढ़ते न कने अगली जेड़ा फरमाइश है से तुह तक पहुँचा देना, तो सारे भी इस प्यारी दिया फरमाइशा जो इंजॉय करा। ये फरमाइश यहाँ तक पहुँची हुए टेक्स्ट मैसेज दे थ्रू तीना दा ना वे मुस्कान जी, तो जरूर हाँ मुस्कान जी तक ये गीत फरमाइश पहुँचा देना कने जितने भी बाकी श्रोता न तीना तक भी यहाँ ये फरमाइश जड़े से पहुँचा देना कने तो हाँ सारे इन्हें सुनते रहे अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला।

ये तो हाँ सारे दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला इसी गूंज के ने हाँ फिर ते वापिस तो हाँ तक पूछी उन अपनी गलबात ले करी तो हाँ सारे भी मेरी गलबात जरूर सुना दे उन्हें न कने जेड़ा प्यारे प्यारे गीत अन तिना जो भी जरूर इंजॉय जेड़े से करा दे उन्हें न गलबात अगर करिए 14 सितंबर दी तो आज यहाँ जेड़े से हिंदी दिवस भी बनाते हैं न हर साल 14 सितंबर जो हिंदी दिवस जड़े से अहाँ बनाते हैं न कने हिंदी जड़े से अहाँ जो कुथी न कुथी अपनी संस्कृति अहाँ दी जड़ा पहचान है पहचान करने जोड़ी करी रखती है या हिंदी दे प्रति सम्मान जड़े से प्रकट करने कने हर साल जड़े से 14 सितंबर जो हिंदी दिवस जड़े से बनाते हैं न तशो तो तुह सारे भी इस कार्यक्रम दे सफर च जुड़ी सकते कने 14 सितंबर दा दिन जड़े से खास तौर पर अहाँ जड़े से हिंदी दिवस जड़े से साहित्यकार जड़ा त्यौहार हैं से ज़रूर बनाते न कने हिंदी जड़ा दिवस है अहाँ वास्ते खास तौर पर बड़ा ही महत्व जड़े से रखता है। हर त्यौहार दा कोई ना कोई जड़ा मतलब है से ज़रूर होंदा है हर कोई भी यहाँ त्यौहार बना देन जैसे गणेश चतुर्थी है आज यहाँ गणेश चतुर्थी का जड़ा उत्सव है सभी बना देन कने 10 दिन तक ये जड़ा त्यौहार है से चलना है पर कहो 10 दिन ही कहो हर दिन यहाँ जड़े से अगर कोई भी त्यौहार है या कोई भी फंक्शन है सबसे पहले जड़े से गणेश भगवान जी की जड़ा पूजा है से यहाँ कर देन तो हर दिन अहाँ वास्ते खास होंदा एक ही दिन जड़े से अहाँ वास्ते खास नहीं होंदा तो इसी कन्ने अहाँ फिरी ते थोड़ा दे आगे बढ़ते हैं ना कने तो हाँ जो अगली फरमाइश की ओर लेकर चलते हैं ना तो हाँ सारे भी इंतज़ार जड़े से करा दे होने ना कि कालू दिया अगली फरमाइश अहाँ तो हाँ तक पहुँचा दे हैं ना तो इंतज़ार जड़े से ज़्यादा नहीं करवाने हैं कने ये अगली जड़ा फरमाइश है से तो हाँ तक पहुँचानी है कने तो हाँ सारियां भी इंजॉय करनी है तो ज़रूर इस प्यारे दे भजन जो तुह तक पहुँचा देन फरमाइश जो तुह सारे भी इंजॉय करा कने नहीं सुनते रहे अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला।

प्रश्नों तो सारे सुनिया ए प्यारा देया भजन प्यारी दे फरमाइश ए भजन आहा पहुँचाया है योल तक कने तिना दा नाव है परसराम जी तिना तक अहाँ ये फरमाइश पहुँचाई कने अहाँ तुहाँ तक अपनी जेड़ा गल बात है सभी जरूर पहुँचा देन कने तुहाँ सारे भी इस कार्यक्रम दे सफर जहाँ कने जुड़ी सकते कने गल बात जेड़े से जरूर करी सकते अपनी गल जेड़े से जरूर अहाँ कने साझा करी सकते कने अपनी पसंद दे जेड़ा गीत हैं से इस कार्यक्रम च सुनी सकते। दर्शकों खास दिन है हर दिन खास होंदा जिंदगी दा जेड़ा नियम है जिंदगी दे जेड़ा रूल हैं से अहां वास्ते बड़े मायने रखते हैं। जिंदगी दा जेड़ा पन्ना है हर दिन अहां अपना जेड़ा पन्ना है से पलट देन तो कुछ न कुछ अहां जरूर अपनी जिंदगी दे जेड़ा पन्ने ते सीखते हैं या कोई ना कोई अहां जो सीख जेड़ा से जरूर मिलती है कने अहां किस तरीके ने सीख जेड़ा से लेंदे हैं या उस सीख दा जेड़ा महत्व है से समझते हैं से अहां पर निर्भर जेड़ा से करता है। दर्शकों गणेश चतुर्थी दियां तुहां जो फ्री ते ढेर सारी शुभकामनाएं होन कने पावन पर्व तुहां जेड़ा से एंजॉय करा देन किस तरीके ने करा देन जरूर तुहां बड़े ही धूमधाम ने जेड़ा से इस पावन पर्व जो एंजॉय करा दे होने न 10 दिन तुहां जरूर इस पावन पर्व जो जेड़ा से एंजॉय कर देन पर कुथी ना कुथी अगर अहां थोड़ा देया सोच विचार करके दिखिए कि अहां जेड़ा गणेश भगवान जी हैं तिना दा स्थापना कर देन फिर उसके बाद 10 दिन तिना जो रखी के तिना दा कुथी ना कुथी विसर्जन जेड़ा ऐसे कर देन तो कहो पवना जी भी अहाँ कने जुड़े थे तो तिना भी अपने घरे जेड़ा ऐसे गणेश भगवान जी दी जेड़ा स्थापना ऐसे की है पर इस बार तिना उस तरीके ने की हो कि सुनने च भी अच्छा लग गया कने अच्छा फील होया कि नहीं तो जरूर तुहां सारे भी जेड़ा से गणेश भगवान दी जेड़ा मूर्ति है उसकी स्थापना करी सकते फ्री 10 दिन तुहां जेड़ा से धूम धड़के ने जेड़ा से पूजा जेड़ा पूजा पाठ है या कीर्तन अन से करा कने फ्री ते उसा ही जेड़ा मूर्ति है उस जो अपने जेड़ा मंदिर है या जिथों ते भी तुहां से मूर्ति जेड़ा से उठाई हुए तिथु ही तिहा जो फ्री ते रखी दिया ना तो जो बुरा लगना ना जेड़ा गणेश भगवान जी हैं तिना जो बुरा लगना क्योंकि जिंदगी है जिंदगी दा जेड़ा सफ़र है अगर अहाँ खुद ते बदलाव लेंदे न ता ही अहाँ उस चीज़ जो अपनांदे न तो इसी कन्ने तो हाँ सारे भी इस कार्यक्रम दे सफ़र जहाँ कन्ने जुड़िया कने अहाँ भी इस सफ़र जो थोड़ा दिया अगे बढ़ाते न कने अगली जेड़ा फरमाइश अगला जेड़ा गीत है से तुहां तक पहुँचाते न मुझे लगा था गीत दियो जाना भी जरूरी है कुथी ना कुथी गीत जेड़ा है ना चेहरे पर समाइल ले आते हैं तो समाइल जेड़ा समाइल है से तुहां दे चेहरे पर जरूर अहां ले करी होनी है कने अगली जेड़ा फरमाइश है से तुहां तक पहुँचा देन कने तुहां सारे भी इस कार्यक्रम दे सफर जहां कने जुड़ी सकते कने अहां कने गल बात जेड़ा से करी सकते गलबात करने वास्ते नंबर भी तुहां तक एक बार फिर ते पहुँचाई देन क्योंकि नंबर तुहां तक पूछ जाऊँगा ताई तो तुहां इस नंबर पर कॉल करी सकते या टेक्स्ट मैसेज करी सकते या व्हाट्सएप मैसेज जेड़ा से करी सकते नंबर है 7011817091 नंबर तुहां तक पहुँचाई तय करना अपने कार्यक्रम दे सफर जो अगे बढ़ा देना।

0: श्रोता न तीना कने कर देना गल बात। हेलो
1: हेलो
0: हेलो नमस्ते जी।
1: नमस्ते
0: जी, स्वागत है जी तुहांदा रेडियो गुंजन धर्मशाला च। ठीक ठाक है न?
1: हां जी ठीक ठाक है जी।
0: जी तुहा कुथु ते बोला दे कने तुहांदा ना के है जी?
1: मेरा नाम अजू, मैं बगली ते बोला दा
0: जी। अजू जी बगली ते बोला दे।
1: हां जी
0: जी। ता अजू जी क्या काम कार छेड़िया तुहा, क्या करा दे आज?
1: मैं कारपेंटर दा काम करदा
0: जी।
1: जी
0: और घर सारे ठीक ठाक है न?
1: हां जी हां जी
0: जी। नोईता जी?
1: नोईता जी तो मैं गाना सुनना हां
0: जी। कुंडिया गाना सुनने जी तो हां?
1: नरोल माईए
0: जी। नरोल माईए मैं रुल गया, तेरा दरबार भूल गया।
1: हां जी हां जी
0: जी जरूर है भजन तो हां तक पहुंचा दें जी। जुड़ने वास्ते बड़ा बड़ा धन्यवाद जी तो हां दा।
1: थैंक यू मैडम जी
0: जी।

0: ये तो हाँ सारे का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला इसी कने हाँ अपने कार्यक्रम दे सफर जो अगे बढ़ाते न कने अजू जी तक हाँ एक गीत ए फरमाइश पहुँचा दे न कने से रहने वाले न बगली ते तो तुह सारे भी इंजॉय करा।
1: सिर्फ एक संतान की कमी है, अगर माँ आपके आशीर्वाद से मेरे घर संतान पैदा होती है, माँ मैं आपके दरबार में खुशी खुशी आऊंगी।

श्रोताओं तो सारे सुनिया ये भजन, बड़ा ही प्यारा भजन है। कने तो सारे जो पसंद भी आया उन्हें, तो इसी कने तो सारे इस वक्त कार्यक्रम सुना देना अपनी रेडियो तो शशि कने अपना कार्यक्रम माटी दी महक। कने इस कार्यक्रम का जेड़ा सफर है से तुह तक रहा है 2 से 3 बजे तक। तो सफर जेड़ा समय है से सिर्फ 2 मिनटा हाल बचिया न, तो 2 मिनटा तो जो पता ही है कि समय के अनुसार चलना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। समय जेड़ा से आंदे जीवन च बड़ी अहम भूमिका अदा करता है। तो हाँ भी समय के अनुसार चलते न कने तो सारे ते लेंदे अनुमति कने तो सारी हमेशा खुश रहा हंसते रहा कने अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला जेड़ा से सुनते रहा।

0: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनवाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, ताज़ा गर्म भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है नौवां राष्ट्रीय पोषण माह।
1: हे भगवान,
2: फिर से पापा का पारा चढ़ गया।
1: यार अभी तो गर्मियां शुरू हुई हैं और 7000 का बिल आने लगा। ये एसी क्यों ऑन है? और तुम ना मोटर थोड़ी कम चलाया करो, ये पंखा भी ऑन है
3: तो लगवा क्यों नहीं देते सोलर पैनल? बिजली का बिल भी जीरो हो जाएगा
2: और आपका गुस्सा भी।
1: भाई अब तो लगाना ही होगा ताकि तुम दोनों के ताने भी हो जाएं जीरो।
4: जीरो बिजली बिल के लिए आप भी सोलर लगाएं। हर घर सूर्य घर।

आते बड़े धूम से गणपति जी जाते बड़े धूम से गणपति जी, आखिर सबसे पहले आकर हमारे दिलों में बस जाते गणपति।

महाकाय को अपने भक्तों से प्यार है, दिल से जिसने पूजा समझो उसका बेड़ा पार है। नए कार्य की शुरुआत अच्छी हो, हर मनोकामना सच्ची हो, गणेश जी का मन में वास रहे, गणेश चतुर्थी आप अपनों के पास रहे। आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं।

0: जब से माँ को नानी के यहाँ भेजा है कितने चिड़चिड़े हो गए हो।
1: बेटा टीवी है उसको,
0: टीवी का इलाज तो यहाँ भी हो सकता है, फिर क्यों भेज दिया?
1: अगर यहाँ रहती ना तो लोग कन्नी काट रहे होते हमसे।
0: मुझे लोग नहीं, मम्मी।
1: अरे क्या अर्जुन, उठेगा तो सरप्राइज देंगे।
2: अर्जुन
1: बहुत मिस कर रहा था तुमको, और मैं भी टीवी रिमोट का सरपैर समझ नहीं पा रहा था।
3: अपनों का जोड़ है टीबी का तोड़, तो फिर भेदभाव क्यों? टीबी के इलाज में अपनों का साथ दें।
4: ये जो पिछली पीढ़ी गुजर गई है ना, हमारे दादा दादी नाना नानी, ये रिश्ते निभा कर गई हैं। इन्होंने उस दौर में भी रिश्तों को जोड़े रखा। जब रिश्ते टूटने की नौबत आ जाती थी, ये बर्दाश्त करना जानते थे, सुन लेना जानते थे। इनके लिए प्राथमिकता रिश्ते थे, बहस नहीं। ये चार लोगों को साथ बैठाकर बात करते थे, समाधान खोजते थे, और आखिर में नतीजा गले मिलने का निकलता था। लेकिन आज की पीढ़ी यानी हम छोटी छोटी बातों पर रिश्ते तोड़ रहे हैं। हमारे अंदर सहनशीलता कम होती जा रही है। हम चाहे कितने भी पढ़ लिख जाएं, कितने भी सफल हो जाएं, या खुद को दूसरों के सामने कितना भी अच्छा साबित कर दें, लेकिन अगर रिश्ते निभाने की ताकत और बर्दाश्त नहीं है तो सब अधूरा है। अगर यही चलता रहा तो आने वाली पीढ़ी रिश्तों के बिना जीना सीख जाएगी। माँ बाप से दूर रहना सामान्य समझेगी, अपनों से दूर रहना पसंद करेगी। रिश्तों की अहमियत धीरे धीरे खत्म हो जाएगी, और अगर समय रहते नहीं संभले तो बहुत जल्द हम एक दूसरे को खो देंगे।
5: जा रही हो बेटा?
6: अरे दादाजी अब उठ गए? हाँ दादाजी अब मैं ठीक हो गई, अब मैं कहाँ जा रही हूँ?
5: बहुत अच्छा, मैंने कहा था ना तुम्हें ब्लड मिल जाएगा, भगवान का शुक्र है।
6: हाँ मैंने गॉड को थैंक यू बोला,
7: और डॉक्टर को भी।
6: अरे हाँ डॉक्टर अंकल को भी, अन्ना सांटी को भी,
5: और ब्लड डोनर को।
6: डोनर को वो तो पता नहीं कौन है।
7: डोनर को थैंक यू पापा बोल देंगे।
6: वो कैसे?
8: किसी भी ब्लड डोनर का शुक्रिया अदा करने का सबसे अच्छा तरीका है खुद ब्लड डोनेट करना।
7: बस हो गया।
8: इंडिया में हर साल 1,20,00,000 यूनिट से भी ज्यादा ब्लड की जरूरत होती है। ब्लड डोनेट करें और किसी की जिंदगी बचाएं।
9: कैसे ना आजकल हद्दी हो गई है लोगों की, वैसे कसम से।
10: क्या हुआ, क्यों परेशान हो रही हो?
9: अरे यार बेबी मेरा ना रिचार्ज खत्म हो गया था, नेट पैक भी खत्म हो गया था, खुद भी रिचार्ज नहीं कर सकती थी, ना ही मैं आपको कॉल कर पा रही थी। तो मैंने सोचा जाके ना दुकान से ही करा लेती हूँ। मैं दुकान पे गई, उसने मुझे बोला मैम 600 रुपए लगेंगे। मैंने उसको 600 रुपए दे दिए, फिर कहता मैम आपका नंबर। हद होगी यार इन लोगों की, स्मार्ट लड़की देखी नहीं कि नंबर मांगना शुरू कर देते हैं। फिर क्या, तुम्हें तो पता ही है मैं कौन सी कम ओवर स्मार्ट हूँ, मैंने भी गलत नंबर ले लिया। बेबी मुझे एक बात नहीं समझ आ रही, अभी तक रिचार्ज नहीं हुआ मेरा।
10: ये होगा भी नहीं। मेरा मतलब मैं देखता हूँ, तुम जाओ रेस्ट करो।
9: हाँ देखो क्या हो गया।

प्यारे दोस्तों, 91.2 मेगाहर्ट्ज रेडियो गुंजन धर्मशाला से शुरू हो गया है कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने। मैं आज के इस कार्यक्रम में आपके साथ हूँ, आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया। तो लीजिए कार्यक्रम का पहला गीत प्रस्तुत करते हैं आपकी नजर।

गीत सुहाने नई पुरानी, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं हूँ आपके साथ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया।

श्रोताओं, रेडियो गुंजन धर्मशाला से गीत सुहाने नए पुराने कार्यक्रम का ये सफर हमारा और आपका यूं ही बना रहे तो लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम में एक और मधुर सा गीत।

91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ आप बने हुए हैं और सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने अपनी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया के साथ।

श्रोताओं, ये है रेडियो गुंजन धर्मशाला और कार्यक्रम है गीत सुहाने नए पुराने। फ्रीक्वेंसी 91.2 एफएम पर आप हैं और इस कार्यक्रम में आपकी हम सफर हूँ मैं, आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया। लीजिए कार्यक्रम में अगला नगमा आपके रेडियो सेट्स पर।

कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने की महफिल सजी है रेडियो गुंजन धर्मशाला से फ्रीक्वेंसी 91.2 एफएम। मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया और ये रहा कार्यक्रम का अगला गीत।

गीत सुहाने नई पुरानी, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं हूँ आपके साथ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया।

श्रोताओं, रेडियो गुंजन धर्मशाला से गीत सुहाने नए पुराने कार्यक्रम का ये सफर हमारा और आपका यूं ही बना रहे तो लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम में एक और मधुर सा गीत।

0: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनवाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, ताजा गर्म भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है नौवां राष्ट्रीय पोषण माह।
1: हे भगवान,
2: फिर से पापा का पारा चढ़ गया
1: यार। अभी तो गर्मियां शुरू हुई हैं और 7000 का बिल आने लगा। ये एसी क्यों ऑन है? और तुम ना मोटर थोड़ी कम चलाया करो, ये पंखा भी ऑन है
3: तो लगवा क्यों नहीं देते सोलर पैनल? बिजली का बिल भी जीरो हो जाएगा
2: और आपका गुस्सा भी।
1: भाई अब तो लगाना ही होगा ताकि तुम दोनों के ताने भी हो जाएं जीरो।
4: जीरो बिजली बिल के लिए आप भी सोलर लगाएं। हर घर सूर्य घर।

आते बड़े धूम से गणपति जी जाते बड़े धूम से गणपति जी, आखिर सबसे पहले आकर हमारे दिलों में बस जाते गणपति जी।

वक्रतुंड महाकाय को अपने भक्तों से प्यार है, दिल से जिसने पूजा समझो उसका बेड़ा पार है। नए कार्य की शुरुआत अच्छी हो, हर मनोकामना सच्ची हो, गणेश जी का मन में वास रहे, गणेश चतुर्थी आप अपनों के पास रहे। आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं।

0: जब से माँ को नानी के यहाँ भेजा है कितने चिड़चिड़े हो गए हो।
1: बेटा टीवी है उसको,
0: टीवी का इलाज तो यहाँ भी हो सकता है, फिर क्यों भेज दिया?
1: अगर वो यहाँ रहती ना तो लोग कन्नी काट रहे होते हमसे।
0: मुझे लोग नहीं, मम्मी।
1: अरे क्या अर्जुन, उठेगा तो सरप्राइज देंगे।
2: अर्जुन
1: बहुत मिस कर रहा था तुमको, और मैं भी टीवी रिमोट का सर पर समझ नहीं पा रहा था।
3: अपनों का जोड़ है टीवी का तोड़, तो फिर भेदभाव क्यों? टीवी के इलाज में अपनों का साथ दें।
2: ये जो पिछली पीढ़ी गुजर गई है ना, हमारे दादा दादी नाना नानी, ये रिश्ते निभा कर गई हैं। इन्होंने उस दौर में भी रिश्तों को जोड़े रखा। जब रिश्ते टूटने की नौबत आ जाती थी, ये बर्दाश्त करना जानते थे, सुन लेना जानते थे। इनके लिए प्राथमिकता रिश्ते थे, बहस नहीं। ये चार लोगों को साथ बैठाकर बात करते थे, समाधान खोजते थे, और आखिर में नतीजा गले मिलने का निकलता था। लेकिन आज की पीढ़ी यानी हम छोटी छोटी बातों पर रिश्ते तोड़ रहे हैं। हमारे अंदर सहनशीलता कम होती जा रही है। हम चाहे कितने भी पढ़ लिख जाएं, कितने भी सफल हो जाएं, या खुद को दूसरों के सामने कितना भी अच्छा साबित कर दें, लेकिन अगर रिश्ते निभाने की ताकत और बर्दाश्त नहीं है तो सब अधूरा है। अगर यही चलता रहा तो आने वाली पीढ़ी रिश्तों के बिना जीना सीख जाएगी। माँ बाप से दूर रहना सामान्य समझेगी, अपनों से दूर रहना पसंद करेगी। रिश्तों की अहमियत धीरे धीरे खत्म हो जाएगी, और अगर समय रहते नहीं संभलें तो बहुत जल्द हम एक दूसरे को खो देंगे।
4: जा रही हो बेटा?
5: अरे दादाजी अब उठ गए? हाँ दादाजी अब मैं ठीक हो गई, अब मैं कहाँ जा रही हूँ?
4: बहुत अच्छा, मैंने कहा था ना तुम्हें ब्लड मिल जाएगा, भगवान का शुक्र है।
5: हाँ मैंने गॉड को थैंक यू बोला।
6: और डॉक्टर को भी?
5: अरे हाँ डॉक्टर अंकल को भी।

0: आंटी को भी।
1: और ब्लड डोनर को?
0: डोनर को वो तो पता नहीं कौन है।
2: डोनर को थैंक यू पापा बोल देंगे।
0: वो कैसे?
3: किसी भी ब्लड डोनर का शुक्रिया अदा करने का सबसे अच्छा तरीका है खुद ब्लड डोनेट करना।
2: बस हो गया।
3: इंडिया में हर साल 1,20,00,000 यूनिट से भी ज्यादा ब्लड की जरूरत होती है। ब्लड डोनेट करें और किसी की जिंदगी बचाएं।
4: कैसे ना आजकल हद्दी हो गई है लोगों की, वैसे कसम से।
5: क्या हुआ, क्यों परेशान हो रही हो?
4: अरे यार बेबी, मेरा ना रिचार्ज खत्म हो गया था, नेट पैक भी खत्म हो गया था, खुद भी रिचार्ज नहीं कर सकती थी, ना ही मैं आपको कॉल कर पा रही थी। तो मैंने सोचा जाके ना दुकान से ही करा लेती हूँ। मैं दुकान पे गई, उसने मुझे बोला मैम 600 रुपए लगेंगे। मैंने उसको 600 रुपए दे दिए। फिर कहता मैम आपका नंबर। हद होगी यार इन लोगों की, स्मार्ट लड़की देखी नहीं कि नंबर मांगना शुरू कर देते हैं। फिर क्या, तुम्हें तो पता ही है मैं कौन सी कम ओवर स्मार्ट हूँ। मैंने भी गलत नंबर ले लिया। बेबी मुझे एक बात नहीं समझ आ रही, अभी तक रिचार्ज नहीं हुआ मेरा।
5: ये होगा भी नहीं। मेरा मतलब मैं देखता हूँ, तुम जाओ रेस्ट करो।
4: हाँ देखिए क्या हो गया।

नमस्कार श्रोताओं, एफएम बैंड 91.2 MHz पर वेरी गुंजन धर्मशाला तो है सब भी है ट्यून कर रहा हूँ ना है ना, और हाँ हाजिर है 91.2 MHz पर हिंदी अपनी गप्पा लेकर इतना अपना सचिन कपूर। बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है सभी उड़ने वाले रहा सभी श्रोतागण रहा। क्या हाल चाल श्रोताओं तो है तुम दे सभी रहे, उम्मीद कर लो हाल चाल ठीक बुने सब अपने अपने घर है अपने अपने हाड़ू है लाड़ू है अपने अपने ड्यूटी मंज अपने अपनी गड्डी मंज अपनी अपनी दुकाना के है सो सब खुश बुने न और तंदुरुस्त बुने हिन श्रोता हूँ। हम अक्सर बोलो कि हेरा जिंदगी में ना खुश रहना और तंदुरुस्त रहना है क्या, सो सब तो पहले इंसान जो होना चाहता है अगर तो है तंदुरुस्त हिन खुश हिन तो जिंदगी में तो है कुछ भी किया सो हासिल कर सकते ना और कुछ भी किया सो कर सकते हिन श्रोता कुछ भी है, यकीन मनना तो है तुम्हारा शरीर तुम्हारा साथ दे चुगड़ता तुम्हारा दिमाग तुम्हारा साथ दे चुगड़ता तो है कुछ भी किया सो कर सकते हिन। बहरहाल श्रोता हूँ कार्यक्रम का आगाज असू जरूर करना लेकिन आगाज तो पहले इनकी फरमाइश मिलाप चंद जी जो कि दाड़ी रे निवासी हैं और सगरर हाट स्कूल सामने की है त्यारी शॉप आ मीट शॉप आ त्यारी और त्यारी फरमाइश आज तिया दसो किती है तिया भी अपनी लाइफ में किया आज गाना बुआ था अक्सर हम अपने शो जहने भी मुलाकात बुंदे था ऐह अपना परिचय किया सो दिंदे हैं तो सो बोलते हैं हाँ प्रोग्राम तो है हुण दिन काफ़ी साल तो हूँ करते हैं लेकिन कॉल ना करो करते हैं और तिन्हें अपना थोड़ा करी एक्सपीरियंस किया सो शेयर करो और सो एक्सपीरियंस किया मिलाप चंद जी जो कि दाड़ी तो हिन जरूर तुम सो की पिया है जरूर शेयर कर ले तिहारा जो एक्सपीरियंस है शो तुम लाइफ रहा तिन्हें दसो कि लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस के थी है सो बड़ी हल्की उम्री में ही किया सो चली छूरे थी है बगैर माँ बुढ़े तिया मैं बह भी करूँ है ना सब कुछ जरूर दस लिया और श्रोता हूँ ये चैलेंजेस क्या न ये एक्सपीरियंस क्या न यह है तुसको कि ता शेयर करवाते हैं ता शेयर कर दें कि तो है भी किया श्रोता हूँ सो जहने भी अगर लाइफ में लगता कि बहुत स्ट्रगलिंग टाइम किया सो इच्छू करता या बड़ा ज़्यादा सो वाला पीरियड की या सोच छुकड़ता दौर वाला पीरियड की या सोच छुकड़ता था तहने थोड़ा करी बंदा ना कि डगमगाई गन देन पैर के अनसो डगमगाई गन देन चीज़ा के अनसो डगमगाई गन दी हिन लेकिन लेकिन शतो डगमगाना ना बंदा हूँ दे दे एक्सपीरियंस जरूर तुसो गे और कि सो जरूर शेयर कर लिया बहरहाल तिया बोलो कि नुआला के सो हूं ना ता मिलाप चंद्र जी जो कि दाड़ी रे निवासी हैं सगड़ा स्कूल सामने त्यारे हल्के नहीं बड़ी प्यारी थे कि सो दुकान है जड़ी थो सो अपना रोजमर्रा री जिंदगी की सो चलन देन ता आइए जी त्यारी फरमाइश में आगाज कर दिन कार्यक्रम रा श्रोतों इस गीत सो गे बने रहे तो ये सब बार जी सचिन कपूर सो गे गूंज अपने पन रे और गूंज प्यारे प्यारे श्रोता।

0: शोतो एफएम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडी गुंजन धर्मशाला तो है सभी ट्यून कर रो और कार्यक्रम हिंदी अपनी गप्पा गैन सो चल रही चले जी तम मिलाप जी री फरमाइश में है सभी ये गीत किए सो हूँ हाँ शोतो और अक बहुत ही मतलब शर्मसार करने वाली जानकारी आए जो आऊँ तो सो के शेयर करना कि ऐसो जरूर लगो लेकिन यह जानकारी जो कि शोतो सो मु ये जानकारी की ऐसो फेसबुक वे माध्यम थो भी किया सो जरूर पाने हाँ श्रोतो आइया ऐ फिलहाल तो सब श्रोता सू के कनेक्ट हो सकते हैं 708-8-8-709 पर नंबर एक मौके फिर यूँ शेयर करनो इस नंबर मंच तो है कॉल कर सकते हैं अपना पसंदीदा गीत के सो होने सकते हैं 708-8-8-709 पर तो है सब श्रोता कॉल कर सकते हैं और अपना पसंदीदा गीत होने सकते हैं अपने क्षेत्र की जानकारी किया सुसांझा कर सकते हैं यह गल खास खास ख्याल रहे श्रोतों की जानकारी की सो रेडियो मंच साझा करने लायक जरूर भो जानकारी की सो रेडियो मंच दसने लायक किया श्रोतों सो जरूर भुआ तो यह कार्यक्रम जो हगो बढ़ते हैं और इस गीतार आनंद लेंदे हैं श्रोतों और गीतार आनंद सोगी सोगी इन दें श्रोतागण के अंत सोगी कनेक्टेड हैं पुछ दिन कौन बल्लू दिन और कड़ी थो बल्लू कर दे हैं नमस्ते जी
1: नमस्ते हेलो
0: हाँ जी नमस्ते जी नमस्ते हेलो जी कौन बल्लू दिन और कड़ी थो बल्लू दिन
1: पटवार खाने से बोल रही
0: हूँ पटवार खाने से अच्छा जी कस पटवार खाने थे बल्लू दिन हेलो हेलो
1: हेलो हेलो
0: हेलो
1: हेलो
0: हाँ जी हाँ जी
1: गाना सुनने
0: अच्छा जी हाँ जी कौन दिन गीत होना जी
1: भोले का गाना सुनने
0: अच्छा अच्छा ठीक है जी जरूर होना ले नमस्ते ना जी
1: ठीक है थी.
0: श्रोतों कार्यक्रम हिंदी अपनी गप्पा गैन सो इस वक्त बिल्कुल लाइव चल रही तुंदे वीडियो सेट में और तो सब श्रोता सोगे जुड़ी सकते हैं 708-8-8-709 पर नंबर अक मौके फिर आऊँ शेयर करनो हाँ 708-8-8-709 पर तो है सब श्रोता कॉल कर सकते हैं और कॉल कर कर अपना पसंदीदा गीत के सो होने सकते हैं अपने क्षेत्र की जानकारी आगो की साझा कर सकते हैं बरहाल नन्नी दी बच्ची री फरमाइश आया पटवार खाना ही है बल्लो लेकिन इन्हें दसो कि कस पटवार खाने तो चलो जो भी पटवार खाना बोआ श्रोता एक सवाल अज तुसु सभी श्रोता सो कि पंचायत रे इलेक्शन बचूरे काफ़ी टाइम की सो बुची गो हा और तुंदी पंचायत में क्या कुछ किया सो तुंदे प्रतिनिधि है क्या क्या काम करें क्या क्या लाभ कैन सो तुसु तक पुजेन क्या कुछ सफाई अभियान किया सो तुंदे पंचायत में हुआ और तुंदे प्रतिनिधि कैन सो कस प्रकार हो गए कैन सो काम करू कर देन तो है आज ज़रूर इस कार्यक्रम में अपने प्रतिनिधि री तारीफ कर सकते हैं और अगर तुसु लगो कि तुंदे प्रतिनिधि करो कुछ नहीं अले तक तो फिर जो तुस सही लगता सो तो है जरूर बोला लेकिन हाँ आऊँ बिल्कुल दाग देना चाहता सुधीड़ पंचायत रे अजीत नहरिया जी हो जो कि अजीत नहरिया जी है कि श्रोतों सो बिल्कुल अपनी पंचायत में बहुत ही शायद बजट बिना ही तीनिया के ऐसो काम शुरू करी तुरंत हो कजो कि जहने इलेक्शन खत्म हुए तत्थ हार्डली कोई 15 दिन बाद या महीने बाद ज़्यादा से ज़्यादा तीनिया सो काम शुरू करी तुरंत हो कुछ पंचायत में ऐसे काम बिन जो पंचायत रे प्रतिनिधि अपने स्तर पर किया सो कराई सकते हैं अवेयरनेस की ऐसो बहुत ज़रूरी है शो तो अवेयरनेस प्रतिनिधि में भी भूना चिन्ह दिया और अवेयरनेस किया सो पंचायत रे मनु मंच भी भूना चिन्ह दिया बरहाल इन द अगले श्रोता सोगे कनेक्टेड हैं नमस्ते जी
2: नमस्कार सर
0: नमस्कार जी नमस्कार
2: क्या हाल चाल तुम्हें
0: बहुत बढ़िया जी तो दस सतन दे क्या हाल चाल
2: बढ़िया जी बढ़िया
0: अच्छा जी कौन बल्लू दिन और कड़ी थो बल्लू दिन
2: हम बोबी लुंदा पढ़ा अपना चील गा रही
0: अच्छा बोबी जी चील गा रही हूँ बल्लू दिन
2: हाँ जी हाँ जी
0: और ठीक ठाक ने बोबी जी
2: बढ़िया बढ़िया चल सुना बस
0: बढ़िया जी।
2: बेचारा मुन्नी का गाना लाई दी फिर अगला दस ना फरमाइश अपनी।
0: मुन्नी का गीत, मुन्नी है शिवजी का गीत थोड़ा ना गस कोई जी।
2: इन दब जाइए तो सही सात बार दो आजरा।
0: ईशान बार दो आजरा कुंदी ना जी।
2: लाई ना गोजी लाई है इसे।
0: गोजरी।
2: हाँ जी हाँ जी।
0: क्या करते हैं जनाब तो है?
2: आऊँ ता गड्डी चलाऊंगा जी।
0: अच्छा अच्छा चलिए ठीक है जी। शांतरा गोजरी की तो जरूर होना ले है ना जी।
2: बिल्कुल बिल्कुल है हम गंदे।
0: धन्यवाद।
2: ठीक है
0: गोजरी गीत के सो जरूर होने ले शतों तो सब बन रहे समय। एफएम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो गुंजन धर्मशाला सो गया और आऊँ सचिन कपूर है इस समय बिल्कुल लाइव तुंदे वीडियो सेट में। आइए जी ता जो पटवार खाने थो फरमाइशा आगास वो चूरा इंदा कार्यक्रम रहा। अब फरमाइशा रो दौर गए सो पूरा कर दिन और इस तो बाद इस नन्नी दी बच्ची थो बच्ची की फरमाइशा पूरी करने थो बाद एक और जानकारी है शो तो नन्नी भी बच्ची नन्नी बच्ची भी लेकिन शर्मशार करने वाली है जानकारी जरूर शेयर कर ले। बहरहाल आनंद लेंदे ने इसकी तरह

শত এফ এম ব্যান্ডে কিয়ানু দৃশ্যমলা বাজে দুই মেগা হিটস পর ভেরি গুঞ্জন ধর্মশালা তো হ্যাঁ সবই টিউন গুর আর কার্যক্রম ইস ওক্তে হিন্দি আপনি গাপা গান সো বিলকুল চল রি হিন লাইভ টুন দে ভিডিও সেট মা 91.2 মেগা হিটস পর তা তো হ্যাঁ সব শ্রোতা গেন সো কল করে সকতে হিন 7018879 পর আইয়ে শত আগলি জানকারি হোগি গেন সো তুসু হ্যাঁ রূবরু করবন্দে হিন ए लंबे ग्रां रे की एक कहानी है शो तो लंबे ग्रां रे तहत इन्हें वाले एक पंचायत में मानवता जो किया फिर एक मुके शर्मसार किया सो करने रे मामला सामने आया शो तो एडी अक्की 55 साल रे व्यक्ति है किया सो पड़ोस में रहने वाली 9 साल री बच्ची किया ता हो गया अश्लील हरकता करने री कोशिश करे और मारपीट भी करे मारपीट रा सनसनी खेच आरोप लगो हत स्पर्शो तो पीड़ित री शिकायत रे आधार पर पुलिस है किया सो कार्रवाई कर दे आरोपी रे विरुद्ध पोक्सो अधिनियम रे तहत मामला दर्ज करी दिता है शो तो प्राप्त जानकारी रे अनुसार घटना तस वक्त घटे जहने पीड़ित रोजमर्रा री तरह किया सो पड़ोस घर में गाय जो कि सो रोटी देना गई थी शो तो घर में सन्नाटा हेरे करी आरोपी वे मासूम जो कि सो अपने सोग किया सो हद दे लो और ठेरे उपरांत आरोपी है कि सो बच्ची वे सोग किया सो अश्लील हरकता करने करी शो तो है ना बच्ची है जहने आरोपी जो इस घनघोने हरकत व कड़ा विरोध किया सो जताओ तहने मासूम जो किया तिन्नी आरोपी है कि शोतों सो थप्पड़ जड़ी दिता किए न किए तह मासूम बच्ची है तड़ी थों निकले करे कि सेवे चंगुल थों बची करे कि सो अपनी जान बचाए और नहीं गए घर हरी किनारी शोतों दोपहर बाद जहने माँ सारे काम अपने काम कार थों वापस घरे लौटे शोतों तहने सहमी बच्ची है कि सो आप बीती हुनाई पीड़ित री मोए कि सो प्रतिनिधियों वे सहयोग थों लंबा ग्रां थाने में जानकारी दी और पुलिस है कि सो पीड़ित वे अस्पताल में मेडिकल करवाओ और घटना वे जुड़े जितने भी सबूत थे सो सब जोड़े शोतों और मामले की पुष्टि डीएसपी बैजनाथ संदीप शर्मा की ऐसो करे है लेकिन कितना ही शोतों एक घनघोना काम मतलब घिनौना काम कितना ज़्यादा कि अक 55 साल रा मतलब बुजुर्ग है बुजुर्ग बोली सकते हैं 55 साल रा बुजुर्ग व्यक्ति एक 9 साल री बच्ची होगी कि सो इस प्रकार सो गई कि सो तो सो घनघोना तू ना जलील हरकत करूँगा तूने घिनौनी हरकत करू करता हा मानसिकता बड़ी शर्मसार है मानवता बड़ी शर्मसार है शोतों और मानसिकता बड़ी जीरो है बड़ी पुअर है मतलब बहुत दिलाथों दुखा यह गल्ला वास्ते कि इंदे हिमाचल में भी सो इस प्रकार रे मनु रेव करते हैं इन शोतों वाकई में इट्स वेरी मतलब बड़ा ज़्यादा हार्ट बुचू करता है सो अपनी बच्ची रखी है सो सब ख्याल रखना अपनी बहनी रखी है सो सब ख्याल रखना का जो कि आजकल तो है पड़ोसी पर या किसी अन्य भी व्यक्ति पर कि सो भरोसा ना कर सकते कोई भी व्यक्ति कुछ भी किया सो कर सकता है शोतों सो विशेष ध्यान जरूर रखना आइए शतों कार्यक्रम जो हलेगिरे चलते हैं इस गीतारी के नारी बनी रही है तो ये सब आरजे सचिन कपूर सो गए शतों और गुजरी गीत किया सो हुना हाँ ता चलिए जी बड़ी गुजरी गीत किया सो हुना इंदे ने है गुजरी 2 गीत भी बड़ा अच्छा गुजरी 3 गीत भी बड़ा अच्छा सब भी गीत किया ने सो ऑलमोस्ट बड़ा बढ़िया निशांत भाई रे नंदन तत् सभी अशोतों हे प्यारे दे गीत बनी रहे तो सब वेड़ी गुंजन रही सी गूंजोगी और कॉल जरूर कर सकते हैं अपना पसंदीदा गीत जरूर सुनी सकते हैं।

0: शोधो एफ एम बैंड 91.2 MHz पर रेडी गुंजन धर्मशाला तो है सभी ट्यून गुरु और कार्यक्रम इंदी अपनी गप के सोतुंदे वीडियो सेट में चल रही है तो इस बार श्रोता कॉल जरूर कर सकते हैं या इन श्रोतागण असोगे कनेक्टेड हैं उस दिन कौन बलून दिन और कड़ी थो बलून दिन हेलो
1: हाँ जी नमस्कार जी।
0: जी नमस्कार जी नमस्कार।
1: और ठीक ठाक? हाँ जी
0: बहुत बढ़िया जी। तो इधर से तो ठीक ठाक ना।
1: हाँ जी ठीक जी।
0: अच्छा जी कौन बोल लूँ देन और कड़ी थो बोल लूँ देन
1: हाँ कन्या रहे हैं बोले जी। करला
0: कन्या रहे तुम क्या ना जी तुंदा
1: हाँ
0: सरला। अच्छा सरला जी पहले तो इधर सा कि कन्या रहे रे आवो हवा के देख दे या
1: बस आवो आवा है कि थोड़ी देर बर्फ लगने आए 17 मिनट में दूँ।
0: अच्छा। तबे ते गाने रे
1: हाँ
0: टाइम बंदा सगरांदी बात तकड़ी बंदा लेकिन है ना बंदे न की भाई वेडे टेडे थोड़े थोड़े दुए त्रीए बढ़दा तो अबे लगातार ही भरू करदा।
1: लगातार है जी। कुछ पता है नाग छतरी थी करते रहा था जहाँ नाग छतरी होती है वो बताते हैं बरखा बांध बती गाड़ी।
0: ये गल तो बिल्कुल ठीक बल्ले तो है।
1: हाँ जी
0: अच्छा जी कौन दिन गीत होना पसंद कर ले।
1: गाना जी जो बनवा रहा हूँ ना
0: जो बन लुड़दा वो लुड़दा आया है वो मेरे जो बना।
1: जी
0: अच्छा
1: हाँ जी
0: चलिए ठीक है जी जरूर होने ले इस गीत जो
1: ओके
0: वाकई मैं ना शर्तों की जो जोबन बंदा सो कहने बीते गंदा वाकई मैं पता ना चलता और कहने तो है कस स्तर पर पुजे गंदा इन जिम्मेदारी रे ये तो सो पता ना चलता है शो तो इंसान कोई इंसान बंदा ना जो स्टार्टिंग थो ही बचपन थो कि ऐसो अपने आप जो जिम्मेदार समझे लेंदा और जिम्मेदारी की ऐसो निभाना शुरू करींदा है ना। और कोई इंसान बंदा कि जो मतलब जितना मर्जी मोटा हो जाए अच्छा जिम्मेदारी समझदा ही नहीं है ता इगल बड़े बड़ी मतलब सुलझो ही गल आशो तो है ना कि इंसान वाकई में ना पता लगता कि कहने जवानी चली गई या कहने बचपन चली गया और कहने दस्त फर किया सो जिम्मेदारी चली आई है सो बेचारा अपू खुश बोआ ना बो अंदरों अपने परिवार जो माता पिता जो खुश जो जो जिम्मेदार इंसान बंदा सिरे आऊँ गल करूँ करदा कि अपने माता पिता जो सो खुश हेरना चाहता हा अपने अभी भी बच्चे जो सो खुश हेरना चाहता हा फैमिली वे अदर मेंबर जो तस्योगी रेव कर दिन तिन्हों सो खुश किया सो हेरना चाहता हा अक जिम्मेदार व्यक्ति सो तो और अक गैर जिम्मेदार व्यक्ति किया सिरे भाई जी चल रहा जो चल रहा ठीक है मतलब दसियो कोई ज़्यादा फर्क गया सो कसी चीज़ बहने पिंदा नहीं है ना ता बहरहाल हा है चल दिन थोड़ी घड़ी और हगूँ और जोबन गीत के है सुख जोबन गीत तरह फरमाइश आए शतों तो आइया जोबन गीत की है सो जरूर हूँ दहिन हिंयो तो सब बने रहे आर जे सचिन कपूर सो की नंबर आऊँ साझा लगो तो करना 7 0 8 8 8 7 0 9 8 पर नंबर आक मुके फिर आऊँ शेयर करना हाँ 7 0 8 8 8 7 0 9 8 पर तो है सब श्रोता के सो कॉल कर सकते हैं और अपना पसंदीदा गीत किया सो होने सकते हैं अपने क्षेत्र की जानकारी किया सो साझा कर सकते हैं श्रोतों।

0: শত এফএম ব্যান্ড একে আনন্দ সামলাব তুই মেগা হাইটস পর ভেড়ি গুঞ্জন ধর্মশালা তো সবই টিউন গুরু আর এই কার্যক্রম মে হিন্দি আপনি গপ্পা গানে সো বাখুবি চল রই তুন দে সবই রে রেডিও সেট মা তো কার্যক্রম মঞ্চ হ্যাঁ সব শ্রোতা গান সো জরুর হগু বড়ি সকদে হিন আর ভেড়ি গুঞ্জন মা তো হে সব ইস সময় বন রে হিন শ্রোতো আর হিন্দি আপনি গপ্পা জো কে সো বাখুবি হুণু করতে হিন आइए श्रोतु कार्यक्रम जो आगू बढ़ते हैं और इंदे अगले श्रोता हसुगे कनेक्टेड हिन उस दिन कौन बोलूँ देन और कड़ी तो बोलूँ देन नमस्ते जी हेलो
1: नमस्ते
0: जी
1: हाँ जी
0: हाँ जी नमस्कार जी वेड़ी गुंजन माँ स्वागत है जी कौन बोलूँ देन और कड़ी तो बोलूँ देन
1: मैं वारी जी बोल रही हूँ सुला से
0: सुला
1: हाँ जी
0: ओ माय गॉड इतनी दूर थो अच्छा क्या नाम है तुंदा
1: वारी जी
0: वारी
1: वारी जी
0: वारी जी
1: वारी जी
0: अच्छा कुंदन की थोड़ना पसंद कर ले जी
1: देवी काल का
0: देवी जालपा
1: हाँ जी
0: अच्छा जी क्या कर दें तो है जी
1: मैं पढ़ दिया
0: अच्छा
1: कस हाँ जी
0: कस क्लास में कस स्कूल है
1: एमए कर रही हूँ
0: अच्छा
1: खन्यारा मोली से हाँ जी
0: अच्छा अच्छा
1: हाँ जी
0: तो सुला तो है अपने घर से तो रोज अप डाउन करू कर दिन
1: नहीं नहीं रूम रखा है इधर
0: अच्छा अच्छा अच्छा तो तुसु ये इंदा जो डायलेक्ट है की कह रही समझ आ
1: हाँ जी
0: इंदी जो ये बोली आ गदियाली बोली आ
1: हाँ जी
0: की कह रही समझ आई तुसु
1: मेरे घर के साइड है ना थोड़े बहुत लोग तो पता है
0: अच्छा
1: हाँ जी
0: चलिए ठीक है जी धन्यवाद
1: हाँ जी ठीक है
0: चलिए श्रोतों कार्यक्रम हिंदी अपनी गप अगेन सो चल रही 91.2 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो गुंजन धर्मशाला सो गया ऐसा बन रहे ना बहरहाल इन द अगले श्रोता हसु हो कि बिल्कुल कनेक्टेड हिन अब अगले श्रोता भी कैसे कॉल करो कर दें श्रोतों नमस्ते जी
2: नमस्कार जी
0: नमस्कार जी नमस्कार
2: क्या हाल चाल है आपकी
0: बहुत बढ़िया जी कौन बोल रहे और कड़ी थम बोल रहे
2: मैं जी कार्तिक बोल रहा हूँ धर्मशाला से
0: विकास सिंह धर्मशाला थो
2: हाँ जी
0: जी विकास जी हेलो
2: हाँ जी हाँ जी कही
0: विकास जी कौन देने गीत होना तुसु
2: ये किथे चले मानछड़ो
0: अच्छा
2: ठीक
0: है जी जरूर होना ले चलिए श्रोतों कार्यक्रम जो आगू बढ़ते नहीं दे और बहुत सारे श्रोतक इन सो कॉल करो कर दें लेकिन फिलहाल फरमाइश दौर के सो पूरा कर देना है बने रहिए रेडियो गुंजन रही सी गूंज सोगी

শোধ এফএম ব্যান্ড 91.2 মেগাহার্টজ পর রেডি গুঞ্জন ধর্মশালা তো হ্যা সবই টিউন গুরু আর কার্যক্রম আর যে সচিন কাপুর সো কে বিলকুল লাইভ হুন কর দেন আপনে আপনে রেডিও সেট মা শ্রোতাও তো আখরি ফরমাইশ সো ভি পুরি করনে আর ফিলহাল তুস সব ভি তো ইজাজত লেনে রা সময় কি শ্রোতাও সো ভি বুঝি গো হা না আর বস তু সব ভি জো এ বলনা চানো শ্রোতাও কি মা বাপ রে সেবা কি সো জরুর করা কদি কে সিরা বুরা কি সো মত করা শ্রোতাও হর কে সিরা খরা করা ইমানদারি হোগি জরুর माश होता हूँ और मेहनत के सो लगातार कर दे रहे होता हूँ मेहनत ज़रूर करा और होता हूँ जड़ी तो है कंफर्टेबल ना फील कर दे हिन जाए सो घर बुआ जाए सो नौकरी बुआ जाए सो दोस्त बुन जाए सो रिश्तेदार बुन जड़ी तुंदा कंफर्ट जोन नहीं है जड़ी तो है कंफर्टेबल नहीं जड़ी जड़ी तुस वो प्रेशराइज तो है प्रेशराइज बुच्चू कर दे जड़ी तुस वो टिक टिक लगो कर दे जड़ी तुस वो टॉक्सिक चीज़ आगे सो लगो कर दे तस तान जो कि सो जरूर छड्डा कजो कि सो तो तुंदे मानसिक संतुलन थो ज़्यादा कुछ नहीं है तुंदा अपना मानसिक संतुलन के सो अच्छा बुना चिंदा बेहतरीन बुना चिंदा खुशनुमा किया सो बुना चिंदा हा सो तो है ना तो ये अगर तुंदा मानसिक संतुलन ठीक हा हाँ सब कुछ खरा है शोतों और मानसिक संतुलन ठीक नहीं है फिर सो जाए कोई भी घर को न बुआ जो जो मैं ना लाए कोई भी जगह को न बुआ तो है तसी जो छड़ी दिन सो ही दूसू वस्ते बेहतर है शोतों अच्छे माहौल में रहा अच्छे इन्वायरमेंट में रहा और अच्छे इन्वायरमेंट जो क्रिएट किया सो जरूर करा शोतों इन जो शब्द था हूँ सचिन कपूर ले लेना तो सो इजाजत हजरे मुस्कुरंदे रहे और आर जे सचिन कपूर छो वेड़ी गुंजन माई हुन दे रहे मुल दिन फिरी छिए था वट नमस्ते धर्मशाला।

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला 91.2 FM। प्रस्तुत है आज का समाचार बुलेटिन। आइए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबरों से। मुख्य समाचार। हिमाचल में मशरूम उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी बढ़ी। MIDH योजना के तहत अब 8 लाख के बजाय मिलेंगे 15 लाख रुपए। ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर अब पंचायतों की विकास योजनाएं ऑनलाइन अपलोड होंगी। पंचायत समितियों और जिला परिषदों की योजनाएं भी पोर्टल पर दर्ज करना होगा। हिमाचली संस्कृति विकास विनाश, औरत वर्दी की कहानी बताएगी फिल्म खुंटा। 18 सितंबर से देश भर के सिनेमाघरों में होगी रिलीज। जरूरतमंद बच्चों की पढ़ाई के लिए कल्याणकारी योजनाएं बनी सहारा। श्रमिक परिवारों के बच्चों को शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता। बीड बिलिंग में 16 सितंबर से पैराग्लाइडिंग का लुत्फ उठाया जा सकेगा। मौसम अनुकूल रहने पर पर्यटन गतिविधियों में आएगी तेजी। SOS सितंबर 2026 परीक्षाओं के एडमिट कार्ड जारी। परीक्षार्थी बोर्ड की वेबसाइट से भी प्रवेश पत्र प्राप्त कर सकते हैं। मक्की गेहूं का MSP तय करने के लिए सरकार करेगी किसान आयोग का गठन। किसानों की आय बढ़ाने पर दिया जा रहा जोर। अब समाचार विस्तार से। हिमाचल प्रदेश में मशरूम उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार की एकीकृत बागवानी मिशन यानी MIDH योजना के तहत सब्सिडी की सीमा बढ़ा दी गई है। अब मशरूम उत्पादन इकाई स्थापित करने के लिए किसानों को 8 लाख रुपए के बजाय 15 लाख रुपए तक की सब्सिडी मिल सकेगी। जानकारी के अनुसार हिमाचल प्रदेश में मशरूम उत्पादन की काफी संभावनाएं हैं। राज्य में कांगड़ा जिला मशरूम उत्पादन के क्षेत्र में आगे है और यहाँ बड़ी संख्या में मशरूम उत्पादन इकाइयां संचालित हो रही हैं। सरकार का उद्देश्य बागवानी गतिविधियों को बढ़ावा देने के साथ साथ किसानों और युवाओं को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध करवाना है। मशरूम उत्पादन इकाई स्थापित करने के लिए मिलने वाली सब्सिडी में वृद्धि से छोटे और युवा किसानों को आधुनिक तरीके से उत्पादन शुरू करने में मदद मिलने की। कांगड़ा जिले में मशरूम उत्पादन से जुड़ी इकाइयों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। ऐसे में सरकार की यह पहल ग्रामीण युवाओं के लिए रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर पैदा कर सकती है। केंद्र सरकार ने 16वें वित्त आयोग के तहत पंचायतों को मिलने वाली राशि से प्रस्तावित विकास योजनाओं को ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य कर दिया है। नई व्यवस्था के तहत केवल ग्राम पंचायत स्तर की योजनाएं ही नहीं बल्कि पंचायत समिति और जिला परिषद स्तर पर प्रस्तावित विकास कार्यों को भी पोर्टल पर दर्ज किया जाएगा। इससे लोगों को यह जानकारी आसानी से मिल सकेगी कि उनकी पंचायत में कौन कौन से विकास कार्य प्रस्तावित हैं, उन पर कितनी राशि खर्च की जानी है और वित्तीय संसाधनों का इस्तेमाल। प्रदेश में नई व्यवस्था को लागू करने के लिए पंचायत प्रतिनिधियों और कर्मचारियों को ऑनलाइन प्रक्रिया से संबंधित प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। इस व्यवस्था से पंचायतों के विकास कार्यों में पारदर्शिता बढ़ने और वित्तीय अनियमितताओं पर अंकुश लगाने में मदद मिलने की उम्मीद है। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर की 32 वर्षीय अनुषी शर्मा द्वारा लिखित और निर्देशित फिल्म खुंटा अब देश भर के दर्शकों तक पहुंचने जा रही है। फिल्म 18 सितंबर से देश भर के सिनेमाघरों में रिलीज होगी। फिल्म की कहानी हिमाचल की संस्कृति, यहाँ हो रहे विकास और विनाश के साथ साथ औरत और नदी की कहानी को भी दर्शाती है। फिल्म की खास बात यह है कि इसमें आम लोगों से जुड़ी कहानी के माध्यम से कई सामाजिक मुद्दों को सामने रखने का प्रयास किया गया है। फिल्म को लंदन इंडिपेंडेंट फिल्म अवार्ड, बेस्ट कोरियन फिल्म अवार्ड, इंडियन मूवी अवार्ड सहित कई सम्मान मिल चुके हैं। मंडी में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान फिल्म से जुड़े कलाकारों और निर्माताओं ने इसके बारे में जानकारी साझा की। हिमाचल प्रदेश में श्रमिक परिवारों के बच्चों की शिक्षा को सहारा देने के लिए कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाई जा रही है। हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड में पंजीकृत श्रमिकों के बच्चों को विभिन्न शैक्षणिक स्तरों पर सहायता दी जा रही है। जानकारी के मुताबिक कंपनी में कार्यरत एवं कामगार कल्याण बोर्ड में पंजीकृत श्रमिकों के बच्चों की पढ़ाई के लिए 16,800 रुपये तक की आर्थिक सहायता प्रदान की गई है। इसके अलावा श्रमिक कल्याण बोर्ड में पंजीकरण के माध्यम से बच्चों की पढ़ाई के लिए 48,000 रुपये तक की सहायता मिलने की जानकारी भी सामने आई है। इस सहायता का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर श्रमिक परिवारों के बच्चों को शिक्षा जारी रखने में मदद करना है। सरकार और कल्याण बोर्ड की ओर से श्रमिक परिवारों को इन योजनाओं का लाभ उठाने के लिए पंजीकरण करवाने पर जोर दिया जा रहा है। विश्व प्रसिद्ध बीड बिलिंग घाटी में 16 सितंबर से पैराग्लाइडिंग गतिविधियां शुरू होने जा रही हैं। हर साल मानसून के कारण कुछ समय के लिए पैराग्लाइडिंग गतिविधियों पर रोक रहती है। इस बार पर्यटन विभाग ने 15 जुलाई से 15 सितंबर तक मानसून को देखते हुए उड़ानों पर रोक लगाई थी। अब मौसम अनुकूल रहने पर 16 सितंबर से पैराग्लाइडिंग फिर शुरू हो जाएगी। बीड बिलिंग में पैराग्लाइडिंग से जुड़े व्यवसाय से बड़ी संख्या में स्थानीय लोग जुड़े हैं। यहां सैकड़ों टैक्सी चालक, होटल, होम स्टे और गेस्ट हाउस भी पर्यटन गतिविधियों से जुड़े हुए हैं। लगभग 350 पायलट पर्यटन सीजन में यहां पैराग्लाइडिंग गतिविधियों से जुड़े रहते हैं। पैराग्लाइडिंग शुरू होने के साथ ही घाटी में पर्यटकों की आवाजाही बढ़ने और स्थानीय कारोबार को राहत मिलने की उम्मीद है। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की ओर से 16 सितंबर से शुरू होने वाली राज्य मुक्त विद्यालय यानी SOS की मैट्रिक और जमा दो कक्षाओं की सितंबर 2026 परीक्षाओं के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। परीक्षार्थियों के प्रवेश पत्र संबंधित अध्ययन केंद्रों और विद्यालयों के प्रवेश तंत्र पर उपलब्ध करवाए गए हैं। इसके अलावा विद्यार्थी हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की वेबसाइट के विद्यार्थी कक्ष में जाकर भी अपना प्रवेश पत्र प्राप्त कर सकते हैं। बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर राजेश शर्मा ने परीक्षार्थियों से अपील की है कि परीक्षा में शामिल होने से पहले प्रवेश पत्र में दर्ज अपना नाम, माता पिता का नाम, जन्मतिथि और विषयों सहित अन्य विवरण ध्यानपूर्वक जांच लें। किसी भी तरह की त्रुटि होने पर समय रहते संबंधित अध्ययन केंद्र या बोर्ड से संपर्क करना जरूरी है। हिमाचल प्रदेश में किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से सरकार किसान आयोग का गठन करने जा रही है। आयोग के माध्यम से किसानों से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर सुझाव लिए जाएंगे और कृषि उत्पादों के बेहतर दाम सुनिश्चित करने की दिशा में काम किया जाएगा। खबर के अनुसार सरकार का उद्देश्य किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य दिलाना और कृषि क्षेत्र को मजबूत करना है। मक्की और गेहूं के समर्थन मूल्य यानी MSP से जुड़े मामलों पर भी आयोग महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। सरकार की ओर से प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के साथ साथ किसानों को उनकी उपज का बेहतर बाजार उपलब्ध करवाने पर जोर दिया जा रहा है।
1: ट्यून किया है और एक कार्यक्रम लेकर मैं सचिन कपूर हाजिर हुआ हूँ, गीत सुहाने नए पुराने। तो आइए जी आगाज करते हैं कार्यक्रम का इस प्यारे से गीत के साथ।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर यह है आपका अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला, और आप सभी हमारे साथ इस सुर की ट्रेन में जो है वो बैठे हुए हैं, और ये सुरों की ट्रेन यूं ही चलती रहेगी। आप सभी हम सफर की तरह इसमें यूं ही आनंद लेते रहिए गीतों का।

इस समय आप सभी ने ट्यून किया है वेडी गुंजन धर्मशाला और मैं नाचीज सचिन कपूर हूँ। कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने को होस्ट कर रहा हूँ और ये प्यारे प्यारे से नगमे आपके बीच आपकी उस ट्रेन में रख रहा हूँ। आइए इसी के साथ लेके चलते हैं एक और प्यारे से गीत की ओर।

आप सभी बने हुए हैं इस समय 91.2 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो गुंजन की इसी गूंज के साथ। यूं ही बने रहिएगा और हम इसी तरह से आपके दिल को खुश करने की गीतों की ये डोर यूं ही चलती चलेगी श्रोताओं, जब तक आप हमारे साथ हैं और हम आपके साथ हैं। गीत सुहाने नए पुराने कार्यक्रम का आनंद आप सभी ले रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज पर।

रेडियो वंचन धर्मशाला आप सभी ने ट्यून किया है और कार्यक्रम 91.2 एफएम पर सुन रहे हैं। बिल्कुल, नाम है कार्यक्रम का गीत सुहाने नए पुराने। तो आइए इसी तरह से आनंद लेते चलते हैं नए पुराने गीतों का और सुनाते हैं आपको ये प्यारा सा एक और गीत। ये नगमे यूं ही चलते रहेंगे, ये ट्रेन यूं ही चलती रहेगी।

FM बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो गुंजन धर्मशाला आप सभी ने ट्यून किया है और मैं हूं आपके साथ आपका अपना आरजे रेडियो जो कि सचिन कपूर।

अब सभी बने हुए हैं इस समय आपके अपने रेडियो गुंजन के साथ, कार्यक्रम का आनंद ले रहे हैं अपने अपने रेडियो सेट पर। ये कार्यक्रम यूं ही चलता रहेगा, ये कार्यक्रम यूं ही महकता रहेगा आपके घर पर, आपकी गाड़ियों में, आपके खेतों में और जहां जहां भी आप सभी ने इस समय 91.2 FM ट्यून किया है, वहां वहां ये कार्यक्रम की गूंज यूं ही गूंजती रहेगी।

0: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनवाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, ताज़ा गर्म भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है नौवां राष्ट्रीय पोषण माह।
1: हे भगवान,
2: फिर से पापा का पारा चढ़ गया।
1: यार अभी तो गर्मियां शुरू हुई हैं और 7000 का बिल आने लगा। ये एसी क्यों ऑन है? और तुम ना मोटर थोड़ी कम चलाया करो, ये पंखा भी ऑन है।
3: तो लगवा क्यों नहीं देते सोलर पैनल? बिजली का बिल भी जीरो हो जाएगा
2: और आपका गुस्सा भी।
1: भाई अब तो लगाना ही होगा ताकि तुम दोनों के ताने भी हो जाएं जीरो।
4: जीरो बिजली बिल के लिए आप भी सोलर लगाएं। हर घर सूर्य घर।

आते बड़े धूम से गणपति जी जाते बड़े धूम से गणपति जी, आखिर सबसे पहले आकर हमारे दिलों में बस जाते गणपति।

महाकाय को अपने भक्तों से प्यार है, दिल से जिसने पूजा समझो उसका बेड़ा पार है। नए कार्य की शुरुआत अच्छी हो, हर मनोकामना सच्ची हो, गणेश जी का मन में वास रहे, गणेश चतुर्थी आप अपनों के पास रहे। आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं।

0: जब से माँ को नानी के यहाँ भेजा है कितने चिड़चिड़े हो गए हो।
1: बेटा टीवी है उसको,
0: टीवी का इलाज तो यहाँ भी हो सकता है, फिर क्यों भेज दिया?
1: अगर वो यहाँ रहती ना तो लोग कन्नी काट रहे होते हमसे।
0: मुझे लोग नहीं, मम्मी।
1: अरे क्या अर्जुन, उठेगा तो सरप्राइज देंगे।
2: अर्जुन
1: बहुत मिस कर रहा था तुमको, और मैं भी टीवी रिमोट का सरपैर समझ नहीं पा रहा था।
3: अपनों का जोड़ है टीवी का तोड़, तो फिर भेदभाव क्यों? टीवी के इलाज में अपनों का साथ दें।
4: ये जो पिछली पीढ़ी गुजर गई है ना, हमारे दादा दादी नाना नानी, ये रिश्ते निभा कर गई हैं। इन्होंने उस दौर में भी रिश्तों को जोड़े रखा। जब रिश्ते टूटने की नौबत आ जाती थी, ये बर्दाश्त करना जानते थे, सुन लेना जानते थे। इनके लिए प्राथमिकता रिश्ते थे, बहस नहीं। ये चार लोगों को साथ बैठाकर बात करते थे, समाधान खोजते थे, और आखिर में नतीजा गले मिलने का निकलता था। लेकिन आज की पीढ़ी यानी हम छोटी छोटी बातों पर रिश्ते तोड़ रहे हैं। हमारे अंदर सहनशीलता कम होती जा रही है। हम चाहे कितने भी पढ़ लिख जाएं, कितने भी सफल हो जाएं, या खुद को दूसरों के सामने कितना भी अच्छा साबित कर दें, लेकिन अगर रिश्ते निभाने की ताकत और बर्दाश्त नहीं है तो सब अधूरा है। अगर यही चलता रहा तो आने वाली पीढ़ी रिश्तों के बिना जीना सीख जाएगी। माँ बाप से दूर रहना सामान्य समझेगी, अपनों से दूर रहना पसंद करेगी। रिश्तों की अहमियत धीरे धीरे खत्म हो जाएगी, और अगर समय रहते नहीं संभले तो बहुत जल्द हम एक दूसरे को खो देंगे।
5: जा रही हो बेटा?
6: अरे दादाजी अब उठ गए? हाँ दादाजी अब मैं ठीक हो गई, अब मैं कहाँ जा रही हूँ?
5: बहुत अच्छा, मैंने कहा था ना तुम्हें ब्लड मिल जाएगा, भगवान का शुक्र है।
6: हाँ मैंने गॉड को थैंक यू बोला।
7: और डॉक्टर को भी?
6: अरे हाँ डॉक्टर अंकल को भी और नर्स आंटी को भी।
5: और ब्लड डोनर को?
6: डोनर को वो तो पता नहीं कौन है।
7: डोनर को थैंक यू पापा बोल देंगे।
6: वो कैसे?
8: किसी भी ब्लड डोनर का शुक्रिया अदा करने का सबसे अच्छा तरीका है खुद ब्लड डोनेट करना।
7: बस हो गया।
8: इंडिया में हर साल 1,20,00,000 यूनिट से भी ज्यादा ब्लड की जरूरत होती है। ब्लड डोनेट करें और किसी की जिंदगी बचाएं।
9: कैसे ना आजकल हड्डी हो गई है लोगों की, वैसे कसम से।
10: क्या हुआ, क्यों परेशान हो रही हो?
9: अरे यार बेबी मेरा ना रिचार्ज खत्म हो गया था, नेट पैक भी खत्म हो गया था, खुद भी रिचार्ज नहीं कर सकती थी, ना ही मैं आपको कॉल कर पा रही थी। तो मैंने सोचा जाके ना दुकान से ही करा लेती हूँ। मैं दुकान पे गई, उसने मुझे बोला मैम 600 रुपए लगेंगे। मैंने उसको 600 रुपए दे दिए, फिर कहता मैम आपका नंबर। हद होगी यार इन लोगों की, स्मार्ट लड़की देखी नहीं कि नंबर मांगना शुरू कर देते हैं। फिर क्या, तुम्हें तो पता ही है मैं कौन सी कम ओवर स्मार्ट हूँ, मैंने भी गलत नंबर ले लिया। बेबी मुझे एक बात नहीं समझ आ रही, अभी तक रिचार्ज नहीं हुआ मेरा।
10: ये होगा भी नहीं। मेरा मतलब मैं देखता हूँ, तुम जाओ रेस्ट करो।
9: हाँ देख लो क्या हो गया।

नमस्कार श्रोतों, FM बैंड 91.2 MHz पर रेडियो गुंजन धर्मशाला आप सभी ने ट्यून किया है और मैं हूं आपके साथ आपका अपना RJ वेडी जो कि सचिन कपूर। स्वागत है आप सभी सुनने वालों का, सभी श्रोतागण का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे और मज़े में होंगे, खुश होंगे, तंदुरुस्त होंगे। और देखिए, मैं अक्सर कहता हूँ कि खुश रहना, तंदुरुस्त रहना जो है वो बहुत ज़रूरी है लाइफ में, बहुत बेहतरीन है लाइफ में। इंसान जब खुश होता है ना श्रोतों, इंटरनली जब खुश होता है, अंदर से जब खुश होता है, तो वो सब कुछ जो है वो कर लेता है, कर सकता है, है ना। और जब इंसान अंदर से ही खुश नहीं होता है तो बहुत सी चीज़ें उसके दिमाग में जो है वो चली रहती हैं। तो इंसान को अंदर से इंटरनली खुश रहना जो है वो बहुत ज़रूरी है। मैं सचिन कपूर हूँ, बहुत सी बातें लेकर आपके मध्य आया हूँ श्रोताओं, बहुत सी जानकारियाँ लेकर आपके मध्य आया हूँ। और इन जानकारियों का सिलसिला, जानकारियों का पिटारा जो है वो यूँ ही खुलता जाएगा आप सभी के रेडियो सेट पर। आइए जी, सबसे पहले तो धर्मशाला का मौसम जो है वो तय कर लेते हैं कि क्या बनना है इस समय। तो बताना चाहता हूँ श्रोताओं, 19 डिग्री सेल्सियस के आसपास बताया जा रहा है कि धर्मशाला का मौसम जो है वो बना हुआ है श्रोताओं। और नमी की बात करूँ श्रोताओं, तो इस समय 19 डिग्री सेल्सियस के आसपास जो है वो मौसम बना है श्रोताओं। और नमी की बात की जाए तो नमी जो है वो भी लगभग 66% के आसपास जो है वो बनी है इस समय धर्मशाला में। तो यह धर्मशाला का मौसम जो हमने आप तक साझा किया है। चलिए तो आगाज़ कर लेते हैं, क्योंकि शाम जो है वो बिल्कुल हो रही है श्रोताओं। और आज बिल्कुल गणपति उत्सव भी है, तो आप सभी को गणपति उत्सव की जो है वो ढेरों शुभकामनाएं हो, गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और गणेश चतुर्थी हिंदू धर्म का एक अत्यंत महत्वपूर्ण और उमंग से भरा त्यौहार है श्रोताओं। और बिल्कुल इस बारे में भी हम आपसे चर्चा जो है वो ज़रूर करेंगे गणेश चतुर्थी के बारे में श्रोताओं। लेकिन उससे पहले आगाज़ जो है वो बहुत ज़रूरी है, तो आगाज़ करते हैं इस गीत के साथ।

तो आगाज़ इस प्यारे से गीत के साथ हुआ है शो, तो बिल्कुल गणपति बापा मोरया। भगवान गणेश को हिंदू धर्म के मैं आप बताना चाहता हूँ श्रोताओं आप सभी को कि ये त्यौहार जो है, ये त्यौहार हम सभी के लिए बेहद खूबसूरत है, बेहद स्पेशल है श्रोताओं, है ना जी। और हिंदू धर्म में इस त्यौहार को जो है वो बहुत ही हर्ष और उल्लास के साथ जो है श्रोताओं वो मनाया जाता है ये त्यौहार। आप सभी बने हुए वेड़ी गुंजन धर्मशाला के साथ, बताना चाहते हैं भगवान गणेश को सभी बाधाओं को दूर करने वाला माना जाता है श्रोताओं। उनका पूजन जीवन में आने वाले संकटों से लड़ने की शक्ति देता है श्रोताओं। किसी भी शुभ कार्य या नई शुरुआत से पहले गणेश जी का स्मरण किया जाता है श्रोताओं, और जो हमें सिखाता है कि हर काम विवेक और सकारात्मकता के साथ जो है वो शुरू होना चाहिए और शुरू करें श्रोताओं। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने इस पर्व को सार्वजनिक उत्सव का रूप देकर जो है वो देश की स्वतंत्रता के दौरान लोगों को एकजुट करने का माध्यम बनाया था श्रोताओं। भगवान गणेश का विशाल स्वरूप हमें बड़प्पन, सहनशीलता और अहंकार के त्याग, मूसे की सवारी की प्रेरणा देता है श्रोताओं। मूसक की सवारी। तो कार्यक्रम में जानकारियों का सिलसिला जो है वो यूं ही चलता रहेगा, पिटारा यूं ही खुलेगा श्रोताओं। धीरे धीरे आप सभी बने रहिएगा वेड़ी गुंजन की इसी गूंज के साथ।

शोधो एफ एम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो गुंजन धर्मशाला आप सभी ने ट्यून किया है और कार्यक्रम इस समय आरजे सचिन कपूर के साथ सुन रहे हैं। गुड इवनिंग धर्मशाला, आप बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है एक बार पुनः आप सभी श्रोताओं का, सभी सुनने वालों का। आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और कार्यक्रम में जानकारियों का सिलसिला जो है वो श्रोताओं यूँ ही चलता रहेगा, पिटारा यूँ ही खुलता रहेगा। लेकिन चलते हैं अगली जानकारी की ओर। श्रोताओं, राष्ट्रीय इंडियन लिमिटेड कॉलेज RIMC में जुलाई 2027-17 में दाखिले के लिए जो है वो प्रवेश परीक्षा की प्रक्रिया शुरू हो गई है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA की ओर से प्रवेश परीक्षा 6 दिसंबर को पेन पेपर मोड में आयोजित होगी। श्रोतों, परीक्षा की अवधि 4 घंटे 30 मिनट निर्धारित की गई है। ये जानकारी देते हुए अतिरिक्त उपायुक्त विनय कुमार ने बताया कि प्रवेश परीक्षा के लिए 2 जुलाई 2013 से 1 जनवरी 2015 के बीच जन्मे अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। इच्छुक अभ्यर्थी NTA की वेबसाइट पर उपलब्ध लिंक के माध्यम से 30 सितंबर शाम 5 बजे तक ऑनलाइन आवेदन जमा कर सकते हैं। आवेदन शुल्क का भुगतान 30 सितंबर रात 11:50 तक किया जा सकेगा। श्रोताओं, इसके बाद 1 से 7 अक्टूबर शाम 5 बजे तक विलंब शुल्क के साथ आवेदन किया जा सकेगा। विलंब शुल्क के साथ आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को 7 अक्टूबर रात 11:50 तक शुल्क जमा करवाना होगा। श्रोताओं, सामान्य वर्ग, रक्षा कर्मियों एवं पूर्व सैनिकों के बच्चों तथा केंद्रीय सूची के OBC NCL अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा शुल्क 1,000 रुपया निर्धारित किया गया है। SC ST अभ्यर्थियों के लिए शुल्क 750 रुपया है। विलंब से आवेदन करने वाले निर्धारित परीक्षा शुल्क के अतिरिक्त 500 रुपया विलंब शुल्क देना होगा। श्रोताओं, सुनिश्चित करना होगा कि उनकी जाति केंद्रीय OBC सूची में शामिल है। केवल राज्य की OBC सूची में शामिल अभ्यर्थी OBC NCL का लाभ नहीं ले सकेंगे। लिखित परीक्षा के बाद अभ्यर्थियों के उत्तर पत्र, प्रश्न पत्र सेट और उत्तर कुंजी NTA की वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जाएगी। श्रोतों, लिखित परीक्षा का परिणाम 20 फरवरी 2027 तक घोषित किया जाना प्रस्तावित है। लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों के लिए अप्रैल 2027 में दूसरे चरण की मौखिक परीक्षा प्रस्तावित है। इसकी तिथि बाद में NTA और RIMC की वेबसाइट पर जो है वो जारी की जाएगी। श्रोतों, परीक्षा केंद्र और परीक्षा का समय प्रवेश पत्र पर जो है वो बताया जाएगा। परीक्षा से लगभग 12 से 15 दिन पहले जो है वो परीक्षा शहर की सूचना तथा परीक्षा से 5 से 7 दिन पहले जो है वो प्रवेश पत्र जारी किया जाएगा। श्रोतों, जानकारियों का सिलसिला, जानकारियों का पिटारा और यही इस प्रकार से जो जानकारियां हैं श्रोतों, जानकारियां आप तक हम ज़रूर पहुंचाएंगे, ये कोशिश हमारी ज़रूर रहेगी। श्रोतों, आप सभी समय बने हुए हैं, जुड़े हुए हैं RJ सचिन कपूर के साथ गूंज अपने मन की और गूंज प्यारे प्यारे जितने भी प्यारे प्यारे श्रोता हमारे साथ बने हुए हैं, जुड़े हुए हैं।

श्रोतो एफ एम बैंड 91.2 मेगा हर्ट्स पर रेडियो गुंजन धर्मशाला आप सभी ने ट्यून किया है और कार्यक्रम आप अपने रेडियो सेट पर बिल्कुल लाइव सुन रहे हैं 91.2 मेगा हर्ट्स पर। आइए जी कार्यक्रम को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। आप सभी बने हुए इस समय हमारे साथ श्रोतो बिल्कुल लाइव हमारे साथ आप बने हुए हैं और इसी तरह बने रहे। लेकिन आइए कार्यक्रम को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं श्रोतों और अगली जानकारी के साथ आपको रूबरू करवाते हैं श्रोतों। 9 साल की मासूम से छेड़छाड़। श्रोतों सोचिए पॉक्सो एक्ट के खिलाफ मामला दर्ज तो हो गया है लेकिन 9 साल की मासूम के साथ छेड़छाड़ 55 वर्षीय व्यक्ति ने की है। जब जब जानकारियां हम पढ़ते हैं श्रोतों जब जब हमारे दिल वाकई में बहुत खून भी खोल उठता है और दिल जो है वो वाकई में डर सा जाता है श्रोतों। पुलिस थाना लंबा गांव के तहत आने वाली एक पंचायत में श्रोतों मानवता को शर्मसार करने वाला मामला जो है वो सामने आया है। यहाँ एक 55 वर्षीय व्यक्ति द्वारा पड़ोस में रहने वाली 9 वर्षीय मासूम बच्ची के साथ जो है वो अश्लील हरकतें करने और मारपीट का सनसनीखेज आरोप लगा है श्रोतों। पीड़ित की शिकायत के आधार पर पुलिस ने जो है वो तेज़ी से कार्रवाई करते हुए आरोपी के विरुद्ध पोक्सो अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार मैं बात करूं तो घटना उस वक्त घटित हुई श्रोतों जब पीड़ित रोजमर्रा की तरह पड़ोसी के घर गाय को रोटी देने गई थी श्रोतों। घर में सन्नाटा देखकर आरोपी ने मासूम को अपने पास बुला लिया श्रोतों। इसके उपरांत आरोपी

में जानकारी दी। पुलिस ने पीड़ित का अस्पताल में जो है वो मेडिकल करवाया है और घटना से जुड़े जितने भी घटना से जुड़े सबूत हैं श्रोतों, उन्हें जुटाना शुरू कर दिया है श्रोतों। और मामले की पुष्टि डीएसपी बैजनाथ संदीप शर्मा ने की है। जानकारियों का सिलसिला, जानकारियों का पिटारा श्रोतों यूं ही चलता रहेगा और यूं ही खुलता रहेगा। आप सभी बने हुए इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। आइए श्रोतों कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और लेके चलते हैं आप सभी श्रोताओं को इस गीत की ओर, बिल्कुल बिल्कुल।

श्रोतो एफ एम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो गुंजन धर्मशाला आप सभी ने ट्यून किया है और कार्यक्रम आरजे सचिन कपूर के साथ बिल्कुल लाइव सुन रहे हैं जनाब अपने अपने वीडियो सेट पर। तो आइए कार्यक्रम को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं और लेके चलते हैं आप सभी श्रोताओं को अगली कुछ और खास जानकारियों की ओर। श्रोतो देखिए ये जानकारी भी आप तक पहुंचाना ज़रूरी है कि हिमाचल प्रदेश में अब चोरियां जो है वो बिल्कुल बढ़ चुकी हैं। श्रोतो आए दिन जो है चाहे वो आप धर्मशाला की बात करें, पालमपुर की बात करें, फिर ज्वाली की बात करें या फिर अन्य किसी भी क्षेत्र की बात करें, हिमाचल प्रदेश में जो है श्रोतो वो चोरियों के मामले ज़्यादा बढ़ चुके हैं। इसलिए आप सभी जो है जब भी कहीं भी जाते हैं, अपने घर से बाहर शादी विवाह में जाते हैं या फिर किसी फंक्शन में जाते हैं, तो पूरा का पूरा परिवार जो है वो ना जाए, है ना। घर का एक या दो सदस्य जो है वो घर में ज़रूर रहे श्रोतो, क्योंकि आए दिन जो है वो चोरियां हो रही हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ 21 लाख के गहने नकदी 21 लाख के गहने जो है श्रोतो वो चोर लेकर फरार हो गया है। हालांकि चोर जो है वो कैमरे में कैद ज़रूर हो गया है, लेकिन रात को सोता रहा परिवार श्रोतो और चोर घर से ले उड़ा लाखों के गहने। तो अब नींद इतनी प्यारी ना कर लें कि आपके घर में जो है वो चोर आकर चला भी जाए और लाखों के गहने लेकर भी चला जाए, फिर भी आप तक आपको कोई संकेत ही ना हो, आप तक आपको कोई इंटीमेशन ही ना हो, इस तरह की नींद जो है वो ना रखे श्रोतो। थोड़ा सा जागरूक जो है वो सोते सोते भी ज़रूर रहिए, क्योंकि ज़माना जो है वो जागरूकता का ही है। जितने आप जागरूक होंगे उतना ही जो है वो बढ़िया है श्रोतो। फिलहाल कार्यक्रम को हम बढ़ाएंगे थोड़ा सा और आगे और लेके चलेंगे आप सभी श्रोताओं को इस प्यारे से गीत की ओर। बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा रेडियो गुंजन की इसी गूंज के साथ।

श्रोतों बहुत प्यारा सा गीत आप सभी ने सुना 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ आप सभी समय बाखूबी बने हुए हैं। और आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, अगली जानकारी के साथ जो है वो आप सभी श्रोताओं को ज़रूर रूबरू करवाएंगे श्रोतों। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बात जो है वो आप तक ज़रूर शेयर करना चाहते हैं श्रोतों। देखिए लड़ाई झगड़ा या मारपीट से जो है वो कभी भी कुछ भी सल्यूशन जो है वो नहीं होता है, और ख़ासकर लड़ाई से तो कभी भी कोई भी सल्यूशन जो है वो नहीं होता है। ऐसा ही कुछ मामला जो है वो गग्गल थाने में आया है श्रोतों। गग्गल थाना क्षेत्र में मारपीट, गाली गलौज और धमकी देने के दो मामले दर्ज हुए हैं श्रोतों। डुगियारी खास में कपिल कुमार से मारपीट व जान से मारने की धमकी देने की जो है वो धमकी देने के आरोप जो हैं वो लगे हैं श्रोतों। पुलिस ने जो है वो अवतार सिंह और उसकी पत्नी आशा देवी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। लेकिन हम इस पर यही कहेंगे कि देखिए लड़ाई झगड़ा करने से जो है वो चीज़ें सरल नहीं होती हैं, वो चीज़ें आसान नहीं होती हैं। लड़ाई झगड़ा करने से जो है वो और ज़्यादा जो है वो चीज़ें ख़राब होती है, और ज़्यादा जो है मैं कहना चाहता हूँ दुश्मनी जो है वो पड़ती है श्रोतों, और जिससे चीज़ें अक्सर जो है वो ख़राब हो जाती हैं और बहुत ख़राब हो जाती हैं, मैं ये कहना चाहूँगा। जानकारियों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा श्रोताओं। जैसे कि हमने बताया आपको कि 21 लाख के गहने जो हैं वो चोरी हो गए हैं, तो अपने घर से जो हैं वो ना जाएं, सभी सदस्य जो हैं वो ना जाएं, और ऐसी गहरी नींद भी ना लें कि आपके घर से जो है वो लाखों के गहने चोरी हो जाएं और आपको कानो कान खबर भी जो है वो ना लगे। तो कांगड़ा में ट्रैफिक रूल्स तोड़ने पर जो है वो 72,000 से ज़्यादा चालान हुए हैं जनाब। जी बिल्कुल, तो देखिए अगर आपने अब आप ये सोचिए कि तीसरी आंख जो है वो आपको ज़रूर देख रही है, और अगर आपने अब अभी भी आप ये सोच रहे हैं कि आपको कोई नहीं देख रहा, तो ये मुमकिन नहीं है जनाब। तीसरी आंख आपको देख रही है और लगभग 72,000 से ज़्यादा चालान जो है वो हो चुके हैं श्रोतों। कांगड़ा ज़िला की मैं बात करने जा रहा हूँ श्रोतों। ज़िला कांगड़ा में यातायात नियमों की अवहेलना करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ पुलिस ने जो है वो कार्रवाई तेज कर दी है। पुलिस ने इस वर्ष अब तक ज़िला में 72,434 चालान जारी किए हैं। इनमें 31,730 चालान जो है वो एकीकृत यातायात प्रबंधन ITMC के माध्यम से जो हैं वो हुए, उस तरीके से जो हैं वो किए गए हैं श्रोतों। पुलिस प्रशासन का कहना है कि कार्रवाई का उद्देश्य केवल चालान करना नहीं, बल्कि वाहन चालकों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करना भी है। पुलिस अधीक्षक कुलभूषण वर्मा ने बताया श्रोतों कि मोटर वाहन अधिनियम के तहत यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने बताया कि शराब पीकर वाहन चलाने जैसे गंभीर मामलों में जो है वो संबंधित पंजीकरण एवं प्राधिकारी को चालक का जो लाइसेंस है वो कैंसिल कर दिया जाएगा श्रोतों। ऐसे मामले में तीन महीने तक जो है वो लाइसेंस बिल्कुल कैंसिल रहेगा श्रोतों। तो शराब पीकर वाहन चलाने पर जो है वो लाइसेंस रद्द होगा, ये हम बहुत पहले से जानते हैं श्रोतों, और ज़रूर होगा। तो इस प्रकार की कोई भी गलती ना करें। कांगड़ा में ट्रैफिक रूल्स तोड़ने पर 72,000 से ज़्यादा चालान जो हैं वो हो चुके हैं। परहल कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं सचिन कपूर के साथ 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। कार्यक्रम को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे हम और लेके चलेंगे आप सभी श्रोताओं को इस प्यारे से गीत की ओर।

0: शोतो एफ एम बैंड 91.2 MHz पर वेड़ी गुंजन धर्मशाला आप सभी ने ट्यून किया है और मैं हूँ आपके साथ आपका अपना आरजे वेड़ी जो कि सचिन कपूर कार्यक्रम में गुड इवनिंग धर्मशाला को होस्ट कर रहा हूँ। आइए कार्यक्रम को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं शोतो और अगली जानकारी के साथ आप सभी को रूबरू करवाते हैं। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला जिला के रामपुर में आयोजित हिमाचल प्रदेश वन विभाग के 27वें वार्षिक खेलकूद एवं कर्तव्य प्रतियोगिता के विजेताओं प्रतिभागियों और आयोजकों को बधाई दी है। शोतों 11 से 13 सितंबर तक आयोजित इस 3 दिवसीय प्रतियोगिता में राज्य के 1000 से अधिक खिलाड़ियों ने भाग लिया। विभिन्न खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को बधाई देते हुए मुख्यमंत्री ने उनके समर्पण, कड़ी मेहनत, अनुशासन और खेल भावना की सराहना की। उन्होंने कहा कि खेल न केवल शारीरिक स्वस्थता और मानसिक संतुलन को बढ़ावा देता है बल्कि टीम एकता, नेतृत्व, दृढ़ संकल्प स्वास्थ्य भावनाओं जैसे गुणों का भी जो है वो विकास करते हैं। मुख्यमंत्री ने सभी प्रतिभागियों की भागीदारी और सराहना प्रदर्शन की भी जो है वो सराहना की। शोतों सराहनीय प्रदर्शन की भी जो है वो सराहना की। उन्होंने कहा कि हर प्रतिभागी प्रतिबद्धता और खेल भावना का प्रदर्शन करने के लिए सराहना का पात्र है। इस तरह के खेल आयोजन कर्मचारियों के बीच भाईचारे और टीम भावना को मजबूत करते हुए प्रतिभा प्रदर्शित करने का अवसर प्रदान करते हैं। कार्यक्रम में जानकारियों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा, जानकारियां जो है वो यूं ही चलती रहेंगी। श्रोतों आइए लेके चलते हैं आप सभी श्रोतों को इस प्यारे से गीत की ओर।
1: mm

0: श्रोतो एफ एम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सभी ने ट्यून किया है वेड़ी गुंजन धर्मशाला। और अब वक्त हो चुका है वेड़ी गुंजन धर्मशाला में समाचारों का।
1: कहा है कि वर्ष 2025 में उत्तरी सीमाओं के सामने चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी की तैनाती में उल्लेखनीय कमी देखी गई है। रक्षा मंत्रालय ने वार्षिक रिपोर्ट 2025-26 में कहा है कि भारत और चीन के बीच राजनीतिक, राजनयिक और सैन्य स्तर पर द्विपक्षीय बातचीत से उत्तरी सीमाओं पर स्थिरता आई है। रिपोर्ट में बताया गया है कि सेना के अथक प्रयासों के कारण जम्मू कश्मीर में सुरक्षा स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में वियतनाम के विदेश मंत्री ले हुआई ट्रुंग के साथ भारत वियतनाम संयुक्त आयोग की 19वीं बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में दोनों देशों के बीच राजनीतिक, रक्षा और सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने तथा भारत में निर्मित रक्षा उपकरणों की आपूर्ति बढ़ाने पर चर्चा हुई। वियतनाम भारत की लुक ईस्ट, आसियान, हिंद प्रशांत महासागर और ग्लोबल साउथ नीतियों में महत्वपूर्ण साझेदार है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद के साथ टेलीफोन पर बातचीत की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ. जयशंकर ने कहा कि इस दौरान द्विपक्षीय सहयोग के साथ साथ यूक्रेन की स्थिति पर भी चर्चा हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को नई दिल्ली के यशोभूमि में 5वें सेमिकॉन इंडिया 2026 का उद्घाटन करेंगे। इसमें 40 से अधिक देशों के 600 से अधिक प्रदर्शक, 300 अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां और प्रतिभागी शामिल होंगे। सेमिकॉन इंडिया भारत का प्रमुख सेमीकंडक्टर सम्मेलन और प्रदर्शनी है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि भारत की संस्कृति और साहित्य कमल की तरह है, जिसकी हर क्षेत्रीय भाषा उसकी एक पंखुड़ी को दिखाती है। श्री शाह ने ये बात आज नवी मुंबई में 2 दिन के हिंदी दिवस और 6वें अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन के उद्घाटन अवसर पर कही।
2: भारतीय साहित्य एक विकसित सतदल कमल की तरह है, जिसकी प्रत्येक पंखुड़ी हमारी प्रादेशिक भाषाएं किसी भी एक पंखुड़ी को नष्ट होने से कमल का सौंदर्य नष्ट हो जाएगा। मैं चाहता हूं कि प्रादेशिक भाषाएं रानी बनकर प्रांत में विराजमान रहे और इन सभी भाषाओं के बीच में हिंदी मध्यमणि बनकर इस सतदल कमल का सौंदर्य बढ़ाती रहे।
1: श्री शाह ने कहा कि सभी क्षेत्रीय भाषाओं को पूरा सम्मान और गरिमा देते हुए हिंदी को केंद्रीय भूमिका निभानी चाहिए।
3: भाषा किसी भी समाज की स्मृति होती है, उसका आत्मबोध होती है। हिंदी ने इस विविधता के बीच संवाद, संपर्क और समन्वय की भाषा के रूप में देश के विभिन्न वर्गों और समुदायों को जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हिंदी का विकास भी तभी सार्थक है जब सभी भारतीय भाषाओं के सम्मान, संरक्षण और संवर्धन के साथ आगे बढ़े।
1: मिजोरम के मुख्यमंत्री लाल दुहोमा ने मिजो संस्कृति को संरक्षित रखते हुए हिंदी सीखने का आह्वान किया है। उन्होंने आज आइजोल में हिंदी दिवस समारोह में ये बात कही। मानवाधिकार परिषद ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में लंबे समय से चल रहे विरोध प्रदर्शनों और अशांति पर चिंता व्यक्त की है। परिषद ने कहा कि प्रदर्शनों को अब 100 दिन पूरे हो चुके हैं, जिससे अनिश्चितता का माहौल बना हुआ है और व्यापक क्षेत्र प्रभावित हो रहा है। परिषद ने चेतावनी दी कि सार्थक बातचीत में किसी भी प्रकार की और देरी से जनता में असंतोष, अविश्वास और अस्थिरता बढ़ सकती है। देश भर में आज गणेश चतुर्थी का त्यौहार श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। ये दिन भगवान गणेश के जन्म का प्रतीक है, जो बुद्धि, समृद्धि और सौभाग्य के देवता हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: श्रोतो एफ एम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सभी ने ट्यून किया है वेड़ी गुंजन धर्मशाला और कार्यक्रम आरजे सचिन कपूर के साथ बिल्कुल लाइव सुन रहे हैं। श्रोतो, जानकारियों का पिटारा जो है वो यूं ही खुलता रहेगा, जानकारियों का सिलसिला श्रोतो यूं ही चलता रहेगा। आइए लेके चलते हैं आप सभी श्रोताओं को इस प्यारे से गीत की ओर, क्योंकि हमारे श्रोताओं का मन जो है वो ज़रूर अभी बोल रहा होगा कि एक प्यारा सा गीत जो है वो ज़रूर हो जाए, और उसके बाद फिर कुछ एक और खास जानकारियों की ओर जो है श्रोताओं वो आपको हम लेके चलेंगे। बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा रेडियो गुंजन किसी गूंज के साथ।
4: आओ एक भीगी हुई सी कहानी सुनाता हूँ। जब
5: अरे सुन सुन,
6: यस मां,
5: एक बहुत अच्छा रिश्ता आया, ये फोटो देख ले, मुझे तो लड़की बहुत पसंद है।
6: माँ मैं बाद में देख लूंगा, बहुत लेट हो रहा हूँ।
5: अरे सुन सुन, एक बार देख तो ले।

तो श्रोताओं, सुनी तो होगी आपने बरसात की धुन। आप सभी ने ट्यून किया इस समय एफएम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो गुंजन धर्मशाला, और मैं हूं आपके साथ आपका अपना आरजी वीडियो जो कि सचिन कपूर। आइए जानकारियों का सिलसिला जो है वो बिल्कुल आगे बढ़ाते हैं। श्रोताओं, जैसे कि हमने आप तक जानकारी पहुंचाई थी कि मुख्यमंत्री ने सभी प्रतिभागियों की भागीदारी और सराहनीय प्रदर्शन की भी सराहना की। श्रोताओं, उन्होंने कहा कि हर प्रतिभागी प्रतिबद्धता और खेल भावना का प्रदर्शन करने के लिए सराहना का पात्र है। श्रोताओं, इस तरह के खेल आयोजन जो है वो कर्मचारियों के बीच जो है वो भाईचारा और टीम भावना को जो है वो मजबूत करते हैं श्रोताओं, और प्रतिभा प्रदर्शित करने का अवसर प्रदान करते हैं। ये बिल्कुल सही है श्रोताओं। श्री सुक्कू ने कहा कि वन विभाग राज्य की समृद्धि, वन संपदा की रक्षा और संरक्षण तथा राज्य के पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। वन एवं जैव विविधता संरक्षण और प्राकृतिक संसाधनों की स्थायी प्रबंधन में वन विभाग के कर्मियों का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है। विभागीय कर्मियों के लिए आयोजित किए जाने वाले खेल आयोजनों से भी शारीरिक रूप से जो है वो स्वस्थ रहते हैं और उनमें एकता और भाईचारा की भावना जो है वो सुदृढ़ होती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार खेलों को बढ़ावा देने और कर्मचारियों के साथ साथ युवाओं में एक स्वास्थ्य और संतुलित जीवन शैली को प्रोत्साहित करने के लिए प्रतिबद्धता है। खेलों में नियमित भागीदारी से शारीरिक फिटनेस बढ़ाने, तनाव कम करने और दक्षता में सुधार करने में मदद मिलती है। जानकारियों का सिलसिला, जानकारियों का पिटारा श्रोताओं यूं ही चलता रहेगा। आप सभी बने हुए हैं समय आरजे सचिन कपूर के साथ, लेके चलते हैं आप सभी श्रोताओं को इस प्यारे से गीत की और

श्रोता एफ एम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो गुंजन धर्मशाला आप सभी ने ट्यून किया है। और श्रोताओं, आप सभी बखूबी जानते हैं कि कांगड़ा टांडा की जो वीडियोस हैं वो सोशल इन्फ्लुएंसर द्वारा काफ़ी ज़्यादा वायरल जो है वो की जा रही हैं। और वाकई में ही अब नाम तो सरकारी है लेकिन खर्चा प्राइवेट जैसा जो है वो टांडा में करना पड़ रहा है सभी को, आम जनता को। और आम जनता जब जब बोलती है श्रोतों तो दिल खोल कर बोलती है श्रोतों। और कमेंट्स में भी हमने देखा श्रोतों कि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि कांगड़ा के नेताओं को जो है वो देखना चाहिए, शर्म आनी चाहिए, इस प्रकार की बातें जो है वो हो रही हैं और होनी भी चाहिए, क्योंकि कांगड़ा में श्रोतों टांडा अस्पताल में जो है वो सरकार है तो सरकारी लेकिन खर्चा प्राइवेट वाला जो है वो हो रहा है। शो तो कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं आरजे सचिन कपूर के साथ। आइए श्रोताओं, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और लेके चलते हैं आपको जानकारी की और बरसात में जल शक्ति विभाग के 2 करोड़ जो हैं वो खर्च हुए हैं। जी बिल्कुल श्रोताओं, लगभग 2 करोड़ रुपए की ये ज्वालामुखी के अंडर जो आता है IPS डिपार्टमेंट, उसकी बात मैं कर रहा हूँ श्रोताओं। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और आपको लेके चलते हैं श्रोताओं इस प्यारे से गीत की ओर। गीत संगीत जो है वो यूं ही चलता रहेगा, गीत संगीत का पिटारा यूं ही खुलता रहेगा श्रोताओं। प्रकृति का ध्यान जो है वो भरपूर रखें और खुद भी हंसते रहिए और लोगों को भी जो है श्रोताओं वो खुश ज़रूर रखें श्रोताओं, क्योंकि देखिए खुश रहने में जो है वो बहुत अच्छी बात है। जब इंसान खुश रहता है तो इंटरनली खुश रहना जो है वो बहुत ज़रूरी है श्रोताओं लाइफ में।

श्रोतो एफ एम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो गुंजन धर्मशाला आप सभी ने ट्यून किया है और कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला आप सुन रहे हैं। श्रोतो ये कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। पर्यटक स्थल पालमपुर में बिगड़ती ट्रैफिक व्यवस्था वर्तमान में काफ़ी बड़ी चुनौती का सामना जो है वो कर रही है। श्रोतो लगातार वाहनों की तेजी से बढ़ती संख्या और सड़कों के चौड़ा ना होने की वजह से यहाँ अक्सर मुख्य मार्ग पर जो है वो कहीं ना कहीं दिक्कत आती है श्रोतों, और जाम जैसी स्थिति जो है वो बन जाती है। अक्सर सड़कों पर वाहन रेंग रेंग कर जो है वो चलते हैं। ट्रैफिक कर्मियों की कमी के कारण भी ट्रैफिक व्यवस्था को संभालना एक चुनौती बनी हुई है। श्रोतों पालमपुर की ट्रैफिक व्यवस्था की वर्तमान स्थिति सड़कों का संकड़ा होना मुख्य सड़कों पर पिछले 3 दशकों से चौड़ाई में कोई बदलाव जो है वो नहीं हुआ है। हालांकि हर माह सड़कों नए वाहन जो है वो आ जाते हैं, लेकिन सड़कें उतनी की उतनी ही जो है वो श्रोतों रहती है। पर्यटकों की भारी आमदा

श्रोता एफ एम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सभी ने ट्यून किया है वेड़ी गुंजन धर्मशाला। आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और अब वक्त हो चुका है श्रोतों वेड़ी गुंजन धर्मशाला में एक छोटे से अंतराल का।

0: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनवाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, ताजा गर्म भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है नौवां राष्ट्रीय पोषण माह।
1: हे भगवान,
2: फिर से पापा का पारा चढ़ गया।
1: यार अभी तो गर्मियां शुरू हुई हैं और 7000 का बिल आने लगा। ये एसी क्यों ऑन है? और तुम ना मोटर थोड़ी कम चलाया करो, ये पंखा भी ऑन है।
3: तो लगवा क्यों नहीं देते सोलर पैनल? बिजली का बिल भी जीरो हो जाएगा
2: और आपका गुस्सा भी।
1: भाई अब तो लगाना ही होगा ताकि तुम दोनों के ताने भी हो जाएं जीरो।
4: जीरो बिजली बिल के लिए आप भी सोलर लगाएं। हर घर सूर्य घर।

आते बड़े धूम से गणपति जी जाते बड़े धूम से गणपति जी, आखिर सबसे पहले आकर हमारे दिलों में बस जाते गणपति।

महाकाय को अपने भक्तों से प्यार है, दिल से जिसने पूजा समझो उसका बेड़ा पार है। नए कार्य की शुरुआत अच्छी हो, हर मनोकामना सच्ची हो, गणेश जी का मन में वास रहे, गणेश चतुर्थी आप अपनों के पास रहे। आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं।

0: जब से माँ को नानी के यहाँ भेजा है कितने चिड़चिड़े हो गए हो।
1: बेटा टीवी है उसको,
0: टीवी का इलाज तो यहाँ भी हो सकता है, फिर क्यों भेज दिया?
1: अगर वो यहाँ रहती ना तो लोग कन्नी काट रहे होते हमसे।
0: मुझे लोग नहीं, मम्मी।
1: अरे क्या अर्जुन, उठेगा तो सरप्राइज देंगे।
2: अर्जुन
1: बहुत मिस कर रहा था तुमको, और मैं भी टीवी रिमोट का सर पर समझ नहीं पा रहा था।
3: अपनों का जोड़ है टीवी का तोड़, तो फिर भेदभाव क्यों? टीवी के इलाज में अपनों का साथ दें।
4: ये जो पिछली पीढ़ी गुजर गई है ना, हमारे दादा दादी नाना नानी, ये रिश्ते निभा कर गई हैं। इन्होंने उस दौर में भी रिश्तों को जोड़े रखा। जब रिश्ते टूटने की नौबत आ जाती थी, ये बर्दाश्त करना जानते थे, सुन लेना जानते थे। इनके लिए प्राथमिकता रिश्ते थे, बहस नहीं। ये चार लोगों को साथ बैठाकर बात करते थे, समाधान खोजते थे, और आखिर में नतीजा गले मिलने का निकलता था। लेकिन आज की पीढ़ी यानी हम छोटी छोटी बातों पर रिश्ते तोड़ रहे हैं। हमारे अंदर सहनशीलता कम होती जा रही है। हम चाहे कितने भी पढ़ लिख जाएं, कितने भी सफल हो जाएं, या खुद को दूसरों के सामने कितना भी अच्छा साबित कर दें, लेकिन अगर रिश्ते निभाने की ताकत और बर्दाश्त नहीं है तो सब अधूरा है। अगर यही चलता रहा तो आने वाली पीढ़ी रिश्तों के बिना जीना सीख जाएगी। माँ बाप से दूर रहना सामान्य समझेगी, अपनों से दूर रहना पसंद करेगी। रिश्तों की अहमियत धीरे धीरे खत्म हो जाएगी, और अगर समय रहते नहीं संभलें तो बहुत जल्द हम एक दूसरे को खो देंगे।
5: जा रही हो बेटा?
6: अरे दादाजी अब उठ गए? हाँ दादाजी, अब मैं ठीक हो गई, अब मैं कहाँ जा रही हूँ?
5: बहुत अच्छा, मैंने कहा था ना तुम्हें ब्लड मिल जाएगा, भगवान का शुक्र है।
6: हाँ मैंने गॉड को थैंक यू बोला,
7: और डॉक्टर को भी।
6: अरे हाँ, डॉक्टर अंकल को भी और नर्स आंटी को भी,
5: और ब्लड डोनर को।
6: डोनर को वो तो पता नहीं कौन है।
7: डोनर को थैंक यू पापा बोल देंगे।
6: वो कैसे?
8: किसी भी ब्लड डोनर का शुक्रिया अदा करने का सबसे अच्छा तरीका है खुद ब्लड डोनेट करना।
7: बस हो गया।
8: इंडिया में हर साल 1,20,00,000 यूनिट से भी ज्यादा ब्लड की जरूरत होती है। ब्लड डोनेट करें और किसी की जिंदगी बचाएं।
9: वैसे ना आजकल हद्दी हो गई है लोगों की, वैसे कसम से।
10: क्या हुआ, क्यों परेशान हो रही हो?
9: अरे यार बेबी, मेरा ना रिचार्ज खत्म हो गया था, नेट पैक भी खत्म हो गया था, खुद भी रिचार्ज नहीं कर सकती थी, ना ही मैं आपको कॉल कर पा रही थी। तो मैंने सोचा जाके ना दुकान से ही करा लेती हूँ। मैं दुकान पे गई, उसने मुझे बोला मैम 600 रुपए लगेंगे। मैंने उसको 600 रुपए दे दिए, फिर कहता मैम आपका नंबर। हद होगी यार इन लोगों की, स्मार्ट लड़की देखी नहीं कि नंबर मांगना शुरू कर देते हैं। फिर क्या, तुम्हें तो पता ही है मैं कौन सी कम ओवर स्मार्ट हूँ, मैंने भी बड़ा नंबर ले लिया। बेबी मुझे एक बात नहीं समझ आ रही, अभी तक रिचार्ज नहीं हुआ मेरा।
10: ये होगा भी नहीं। मेरा मतलब मैं देखता हूँ, तुम जाओ रेस्ट करो।
9: हाँ देखो क्या हो गया।

0: श्रोतो एफ एम बैंड 91.2 MHz पर रेडी गुंजन धर्मशाला आप सभी ने ट्यून किया है और कार्यक्रम सचिन कपूर के साथ लाइव सुन रहे हैं। श्रोतो कार्यक्रम में अब वक्त हो गया है प्रादेशिक समाचारों का, तो आइए सुनते हैं प्रादेशिक समाचार रेडी गुंजन धर्मशाला में।
1: मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि प्रदेश सरकार खेलों को बढ़ावा देने और कर्मचारियों के साथ साथ युवाओं में स्वस्थ और संतुलित जीवन शैली को प्रोत्साहित करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि खेलों में नियमित भागीदारी से शारीरिक फिटनेस बढ़ाने, तनाव कम करने और दक्षता में सुधार करने में मदद मिलती है। मुख्यमंत्री ने वन विभाग की वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता के विजेताओं, प्रतिभागियों और आयोजकों को खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि खेलों से टीम एकता, नेतृत्व, दृढ़ संकल्प और प्रतिस्पर्धा की स्वस्थ भावनाओं जैसे गुणों का विकास होता है। उन्होंने कहा कि इस तरह के खेल आयोजन कर्मचारियों के बीच भाईचारे और टीम भावनाओं को मजबूत करते हुए प्रतिभा प्रदर्शित करने का अवसर भी देते हैं। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने दावा किया है कि प्रदेश सरकार हिमकेयर को बदनाम करने के लिए इसकी जांच का नाटक कर रही है, जबकि दूसरी ओर प्रदेश में चल रहे नकली दवाइयों के रैकेट की जांच के लिए उसके पास लोग उपलब्ध नहीं हैं। जयराम ठाकुर ने आज शिमला में कहा कि प्रदेश सरकार अदालत के आदेशों के बावजूद नकली दवाइयों के रैकेट की जांच नहीं करवा रही है। उन्होंने दावा किया कि प्रदेश सरकार हिमकेयर योजना की जांच सिर्फ मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा बोले गए झूठ को सही ठहराने के लिए कर रही है। नेता प्रतिपक्ष ने प्रदेश सरकार पर संरक्षित भ्रष्टाचार का आरोप लगाया और कहा कि राज्य की जनता अब सरकार को पहचान चुकी है। उन्होंने ये भी कहा कि पहले भी संरक्षित भ्रष्टाचार के मामले मुख्यमंत्री कार्यालय में सामने आ चुके हैं। गणेश चतुर्थी का त्यौहार आज प्रदेश भर में श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। गणेश चतुर्थी के मौके पर राजधानी शिमला में एक भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शहर के मिडल बाजार स्थित एमसी कॉम्प्लेक्स में भगवान श्री गणेश की 108 मूर्तियों की स्थापना की गई है। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने भी इस उत्सव में भाग लिया। उन्होंने इस मौके पर कहा कि सनातन संस्कृति और परंपराओं को आगे बढ़ाने के लिए सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता है। श्री सिद्धि विनायक सेवा मंडल ट्रस्ट के प्रधान आशुतोष ने कहा कि गणेश महोत्सव 25 सितंबर अनंत चतुर्दशी तक चलेगा।
2: आज गणेश चतुर्थी, भगवान श्री गणेश जी का जन्मदिन, आज के दिन से शुरू होकर ये कार्यक्रम हमारा अनंत चतुर्दशी जो इस बार 25 सितंबर तक है तब तक चलेगा। आज भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। ये पूरे समाज के सहयोग से ये कार्यक्रम किया जाता है। आपके साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जितने भी लोग जुड़े हैं उन सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करें और सबके विघ्न को हरें, ऐसी हमारी भगवान जी से प्रार्थना है।
1: संधोल सुजानपुर सड़क की बदहाली के खिलाफ सुजानपुर और बमसन भाजपा मंडल ने आज एसडीएम के माध्यम से राज्यपाल को एक ज्ञापन भेजा। इस मौके पर भाजपा मंडल ने सुजानपुर में एक रोष रैली भी निकाली। भाजपा के वरिष्ठ प्रवक्ता व पूर्व विधायक राजेंद्र राणा ने इस मौके पर प्रदेश सरकार को गूंगी, बहरी और बेईमान करार दिया। उन्होंने कहा कि अपनी शानो शौकत पर बेहिसाब पैसा खर्च करने वाली प्रदेश सरकार को सड़कों के जानलेवा गड्ढे नहीं दिखाई दे रहे हैं। राजेंद्र राणा ने कहा कि यदि सरकार ने इस सड़क की हालत सुधारने के लिए तुरंत कदम नहीं उठाए तो भाजपा सुजानपुर में सड़कों पर उतरकर जन आंदोलन करेगी, जिसकी सारी जिम्मेदारी प्रदेश सरकार की होगी। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि केंद्र से विकास कार्यों के लिए आ रहे पैसे का प्रदेश सरकार दुरुपयोग कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार से राज्य का हर वर्ग परेशान है। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज को फॉलो कर सकते हैं। बाकी समाचार अंतराल के बाद।
3: बच्चों हमेशा रखो याद, चॉकलेट मिठाई या आइसक्रीम खाने के बाद आगे पीछे ऊपर नीचे दिन में दो बार, सुबह और शाम डेली दो मिनट दो बार। दांतों की सफाई बहुत जरूरी है, खूबसूरत चमचमाते दांत और प्यारी सी मुस्कान सबका दिल जीत लेती है। डेली दो बार ब्रश करने से आपके दांत स्वस्थ रहते हैं और मुंह में बीमारी फैलने वाले जर्म्स और बैक्टीरिया भी मर जाते हैं। नेशनल हेल्थ मिशन हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
1: प्रादेशिक समाचार बुलेटिन में एक बार फिर आपका स्वागत है। बाकी समाचारों में विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया 69वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन में भाग लेने के लिए आज दक्षिण अफ्रीका की विधायी राजधानी केप टाउन पहुंच गए। पठानिया आज से 17 सितंबर तक आयोजित हो रहे इस सम्मेलन में हिस्सा ले रहे हैं। वे इस सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधि के रूप में सुलभ संसद भारत की संसद में दिव्यांगजनों की भागीदारी विषय पर अपना संबोधन देंगे। आज प्रदेश भर में हिंदी दिवस धूमधाम से मनाया गया। राज्य स्तरीय हिंदी दिवस समारोह किन्नौर जिला मुख्यालय रिकांगपियो में आयोजित किया गया। समारोह की अध्यक्षता करते हुए किन्नौर के उपायुक्त अमित कुमार शर्मा ने कहा कि हमें अपनी मातृभाषा पर गर्व होना चाहिए। उन्होंने इस मौके पर हिंदी में उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों कर्मचारियों, भाषण, नारा लेखन और निबंध लेखन प्रतियोगिताओं के विजेताओं को भी सम्मानित किया। इस अवसर पर एक पुस्तक प्रदर्शनी भी लगाई गई, जिसमें हिमाचल के इतिहास, कला, संस्कृति और विरासत से संबंधित पुस्तकें उपलब्ध करवाई गईं। भाषा व संस्कृति विभाग ने हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में आज शिमला के गेटी थिएटर में जिला स्तरीय कवि सम्मेलन का आयोजन किया। शिमला शहर में कुत्तों और बंदरों के लगातार बढ़ते आतंक के खिलाफ आज शिमला नागरिक सभा ने उपायुक्त कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने नगर निगम प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की और इस समस्या का स्थायी समाधान न होने पर बड़ा जन आंदोलन छेड़ने की चेतावनी दी। नगर सभा के सचिव विवेक कश्यप ने कहा कि शहर के समिट्री रोड में बंदर के हमले में मारी गई महिला के परिजनों को कम से कम 5 लाख रुपए मुआवजा दिया जाए। उन्होंने कुत्तों और बंदरों के काटने पर भी पीड़ित व्यक्ति को 1 लाख रुपए के मुआवजे की मांग की। नागरिक सभा ने शहर के आवारा कुत्तों को डॉग शेल्टर में रखने और फुटब्रिज व रास्तों को बंदरों और आवारा कुत्तों से मुक्त करने की मांग की।
4: शिमला शहर के अंदर में लगातार कुत्तों और बंदरों का जो आतंक समस्या, ये लगातार जो इंसान पर हमले कर रहे हैं और उनको जो नुकसान पहुंचा रहे हैं, उसको लेकर हम यहाँ एकत्रित हुए हैं कि आज एक प्रदर्शन के माध्यम से हम एक ज्ञापन भी कमिश्नर साहब को दे रहे हैं, जिसमें हम जो हत्या हम बोलेंगे इस तरीके से हुई है, तो हम मांग करेंगे 5 लाख रुपए मुआवजा जो है नगर निगम उसको दे। हम यहाँ मांग करें फीडिंग पॉइंट आप बनाइए, लेकिन ऐसी जगह फीडिंग पॉइंट बनाए जहाँ पर आम

0: जनता जो कम गुजरे नगर निगम, ये जो समस्या है बंदरों और कुत्तों की, इनको लेकर अगर आप पूरे तरीके से इसका जो है निपटारा नहीं हो जाए इस समस्या का, तब तक हम लगातार जो है हमें निगम का घेराव भी करना पड़ता, निगम का घेराव करना पड़ी शिमला नगर सभा तैयार है।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने कहा, युवाओं के नेतृत्व से होगा स्वस्थ और संवेदनशील समाज का निर्माण। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने युवाओं में स्वस्थ व संतुलित जीवन शैली को प्रोत्साहित करने के लिए जताई सरकार की प्रतिबद्धता। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने प्रदेश सरकार पर हिमकेयर योजना को बदनाम करने का लगाया आरोप। 69वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन में भाग लेने के लिए दक्षिण अफ्रीका की राजधानी केप टाउन पहुंचे विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया। और हिंदी दिवस पर प्रदेश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित, रिकांगपियो में हुआ राज्य स्तरीय समारोह। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:20 पर। नमस्कार।
2: श्रोता एफ एम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज पर आप सभी ने ट्यून किया है वेड़ी गुंजन धर्मशाला, और मैं नाचीज सचिन कपूर आपके साथ हूँ। श्रोतों, वक्त का वाकई में ना पता नहीं चलता, और वक्त का पहिया जो है वो घूमता ज़रूर है। श्रोतों, अगर आज आपके साथ बुरा वक्त है तो इंतज़ार कीजिए, वो अच्छा वक्त जो है वो भी आपके समीप ज़रूर आएगा। फिलहाल अब मुझे यानी कि सचिन कपूर को दीजिए आप इजाज़त, और जाते जाते यही कहूँगा श्रोताओं, प्रकृति की सेवा ज़रूर करें, माँ बाप की सेवा ज़रूर करें श्रोताओं, और अच्छे कर्मों की ओर जो है वो ज़रूर अग्रसर हों, अच्छे कर्म जो है वो ज़रूर करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सचिन कपूर आपसे लेता हूँ अलविदा। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और जे आर जे आर जे सचिन कपूर को यूँ ही सुनते रहिए और सुनाते रहिए 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। नमस्ते धर्मशाला।

0: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनवाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, ताजा गर्म भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है नौवां राष्ट्रीय पोषण माह।
1: हे भगवान,
2: फिर से पापा का पारा चढ़ गया।
1: यार अभी तो गर्मियां शुरू हुई हैं और 7000 का बिल आने लगा। ये एसी क्यों ऑन है? और तुम ना मोटर थोड़ी कम चलाया करो, ये पंखा भी ऑन है।
3: तो लगवा क्यों नहीं देते सोलर पैनल? बिजली का बिल भी जीरो हो जाएगा
2: और आपका गुस्सा भी।
1: भाई अब तो लगाना ही होगा ताकि तुम दोनों के ताने भी हो जाएं जीरो।
4: जीरो बिजली बिल के लिए आप भी सोलर लगाएं। हर घर सूर्य घर।

आते बड़े धूम से गणपति जी जाते बड़े धूम से गणपति जी, आखिर सबसे पहले आकर हमारे दिलों में बस जाते गणपति जी।

वक्रतुंड महाकाय को अपने भक्तों से प्यार है, दिल से जिसने पूजा समझो उसका बेड़ा पार है। नए कार्य की शुरुआत अच्छी हो, हर मनोकामना सच्ची हो, गणेश जी का मन में वास रहे, गणेश चतुर्थी आप अपनों के पास रहें। आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं।

0: जब से माँ को नानी के यहाँ भेजा है कितने चिड़चिड़े हो गए हो।
1: बेटा टीबी है उसको।
0: टीबी का इलाज तो यहाँ भी हो सकता है, फिर क्यों भेज दिया?
1: अगर वो यहाँ रहती ना तो लोग कन्नी काट रहे होते हमसे।
0: मुझे लोग नहीं, मम्मी।
1: अरे क्या अर्जुन, उठेगा तो सरप्राइज देंगे।
2: अर्जुन
1: बहुत मिस कर रहा था तुमको, और मैं भी टीवी रिमोट का सरपर समझ नहीं पा रहा था।
3: अपनों का जोड़ है टीबी का तोड़, तो फिर भेदभाव क्यों? टीबी के इलाज में अपनों का साथ दें।
4: ये जो पिछली पीढ़ी गुजर गई है ना, हमारे दादा दादी नाना नानी, ये रिश्ते निभा कर गई हैं। इन्होंने उस दौर में भी रिश्तों को जोड़े रखा। जब रिश्ते टूटने की नौबत आ जाती थी, ये बर्दाश्त करना जानते थे, सुन लेना जानते थे। इनके लिए प्राथमिकता रिश्ते थे, बहस नहीं। ये चार लोगों को साथ बैठाकर बात करते थे, समाधान खोजते थे, और आखिर में नतीजा गले मिलने का निकलता था। लेकिन आज की पीढ़ी यानी हम छोटी छोटी बातों पर रिश्ते तोड़ रहे हैं। हमारे अंदर सहनशीलता कम होती जा रही है। हम चाहे कितने भी पढ़ लिख जाएं, कितने भी सफल हो जाएं, या खुद को दूसरों के सामने कितना भी अच्छा साबित कर दें, लेकिन अगर रिश्ते निभाने की ताकत और बर्दाश्त नहीं है तो सब अधूरा है। अगर यही चलता रहा तो आने वाली पीढ़ी रिश्तों के बिना जीना सीख जाएगी। माँ बाप से दूर रहना सामान्य समझेगी, अपनों से दूर रहना पसंद करेगी। रिश्तों की अहमियत धीरे धीरे खत्म हो जाएगी, और अगर समय रहते नहीं संभलें तो बहुत जल्द हम एक दूसरे को खो देंगे।
5: जा रही हो बेटा?
6: अरे दादाजी अब उठ गए? हाँ दादाजी अब मैं ठीक हो गई, अब मैं कहाँ जा रही हूँ?
5: बहुत अच्छा, मैंने कहा था ना तुम्हें ब्लड मिल जाएगा, भगवान का शुक्र है।
6: हाँ मैंने गॉड को थैंक यू बोला।
7: और डॉक्टर को भी?
6: अरे हाँ डॉक्टर अंकल को भी और नर्स आंटी को भी।
5: और ब्लड डोनर को?
6: डोनर को वो तो पता नहीं कौन है।
7: डोनर को थैंक यू पापा बोल देंगे।
6: वो कैसे?
8: किसी भी ब्लड डोनर का शुक्रिया अदा करने का सबसे अच्छा तरीका है खुद ब्लड डोनेट करना।
7: बस हो गया।
8: इंडिया में हर साल 1,20,00,000 यूनिट से भी ज्यादा ब्लड की जरूरत होती है। ब्लड डोनेट करें और किसी की जिंदगी बचाएं।
9: ऐसे ना आजकल हद ही हो गई है लोगों की, वैसे कसम से।
10: क्या हुआ, क्यों परेशान हो रही हो?
9: अरे यार बेबी मेरा ना रिचार्ज खत्म हो गया था, नेट पैक भी खत्म हो गया था, खुद भी रिचार्ज नहीं कर सकती थी, ना ही मैं आपको कॉल कर पा रही थी। तो मैंने सोचा जाके ना दुकान से ही करा लेती हूँ। मैं दुकान पे गई, उसने मुझे बोला मैम 600 रुपए लगेंगे। मैंने उसको 600 रुपए दे दिए, फिर कहता मैम आपका नंबर। हद होगी यार इन लोगों की, स्मार्ट लड़की देखी नहीं कि नंबर मांगना शुरू कर देते हैं। फिर क्या, तुम्हें तो पता ही है मैं कौन सी कम ओवर स्मार्ट हूँ, मैंने भी बड़ा नंबर ले लिया। बेबी मुझे एक बात नहीं समझ आ रही, अभी तक रिचार्ज नहीं हुआ मेरा।
10: ये होगा भी नहीं। मेरा मतलब मैं देखता हूँ, तुम जाओ रेस्ट करो।
9: हाँ देखो क्या हो गया।

नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला 91.2 FM। प्रस्तुत है आज का समाचार बुलेटिन। आइए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबरों से। मुख्य समाचार, हिमाचल में मशरूम उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी बढ़ी। MIDH योजना के तहत अब 8 लाख के बजाय मिलेंगे 15 लाख रुपए। ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर अब पंचायतों की विकास योजनाएं ऑनलाइन अपलोड होंगी। पंचायत समितियों और जिला परिषदों की योजनाएं भी पोर्टल पर दर्ज करना होगा। हिमाचली संस्कृति विकास विनाश, औरत वर्दी की कहानी बताएगी फिल्म खुंटा। 18 सितंबर से देश भर के सिनेमाघरों में होगी रिलीज। जरूरतमंद बच्चों की पढ़ाई के लिए कल्याणकारी योजनाएं बनी सहारा। श्रमिक परिवारों के बच्चों को शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता। बीड बिलिंग में 16 सितंबर से पैराग्लाइडिंग का लुत्फ उठाया जा सकेगा। मौसम अनुकूल रहने पर पर्यटन गतिविधियों में आएगी तेजी। SOS सितंबर 2026 परीक्षाओं के एडमिट कार्ड जारी। परीक्षार्थी बोर्ड की वेबसाइट से भी प्रवेश पत्र प्राप्त कर सकते हैं। मक्की गेहूं का MSP तय करने के लिए सरकार करेगी किसान आयोग का गठन। किसानों की आय बढ़ाने पर दिया जा रहा जोर। अब समाचार विस्तार से। हिमाचल प्रदेश में मशरूम उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार की एकीकृत बागवानी मिशन यानी MIDH योजना के तहत सब्सिडी की सीमा बढ़ा दी गई है। अब मशरूम उत्पादन इकाई स्थापित करने के लिए किसानों को 8 लाख रुपए के बजाय 15 लाख रुपए तक की सब्सिडी मिल सकेगी। जानकारी के अनुसार हिमाचल प्रदेश में मशरूम उत्पादन की काफी संभावनाएं हैं। राज्य में कांगड़ा जिला मशरूम उत्पादन के क्षेत्र में आगे है और यहां बड़ी संख्या में मशरूम उत्पादन इकाइयां संचालित हो रही हैं। सरकार का उद्देश्य बागवानी गतिविधियों को बढ़ावा देने के साथ साथ किसानों और युवाओं को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध करवाना है। मशरूम उत्पादन इकाई स्थापित करने के लिए मिलने वाली सब्सिडी में वृद्धि से छोटे और युवा किसानों को आधुनिक तरीके से उत्पादन शुरू करने में मदद मिलने की। कांगड़ा जिले में मशरूम उत्पादन से जुड़ी इकाइयों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। ऐसे में सरकार की यह पहल ग्रामीण युवाओं के लिए रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर पैदा कर सकती है। केंद्र सरकार ने 16वें वित्त आयोग के तहत पंचायतों को मिलने वाली राशि से प्रस्तावित विकास योजनाओं को ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य कर दिया है। नई व्यवस्था के तहत केवल ग्राम पंचायत स्तर की योजनाएं ही नहीं बल्कि पंचायत समिति और जिला परिषद स्तर पर प्रस्तावित विकास कार्यों को भी पोर्टल पर दर्ज किया जाएगा। इससे लोगों को यह जानकारी आसानी से मिल सकेगी कि उनकी पंचायत में कौन कौन से विकास कार्य प्रस्तावित हैं, उन पर कितनी राशि खर्च की जानी है और वित्तीय संसाधनों का इस्तेमाल। प्रदेश में नई व्यवस्था को लागू करने के लिए पंचायत प्रतिनिधियों और कर्मचारियों को ऑनलाइन प्रक्रिया से संबंधित प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। इस व्यवस्था से पंचायत

के विकास कार्यों में पारदर्शिता बढ़ने और वित्तीय अनियमितताओं पर अंकुश लगाने में मदद मिलने की उम्मीद है। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर की 32 वर्षीय अनुषी शर्मा द्वारा लिखित और निर्देशित फिल्म खुंटा अब देश भर के दर्शकों तक पहुंचने जा रही है। फिल्म 18 सितंबर से देश भर के सिनेमाघरों में रिलीज होगी। फिल्म की कहानी हिमाचल की संस्कृति, यहाँ हो रहे विकास और विनाश के साथ साथ औरत और नदी की कहानी को भी दर्शाती है। फिल्म की खास बात यह है कि इसमें आम लोगों से जुड़ी कहानी के माध्यम से कई सामाजिक मुद्दों को सामने रखने का प्रयास किया गया है। फिल्म को लंदन इंडिपेंडेंट फिल्म अवार्ड, बेस्ट कोरियन फिल्म अवार्ड, इंडियन मूवी अवार्ड सहित कई सम्मान मिल चुके हैं। मंडी में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान फिल्म से जुड़े कलाकारों और निर्माताओं ने इसके बारे में जानकारी साझा की। हिमाचल प्रदेश में श्रमिक परिवारों के बच्चों की शिक्षा को सहारा देने के लिए कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाई जा रही है। हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड में पंजीकृत श्रमिकों के बच्चों को विभिन्न शैक्षणिक स्तरों पर सहायता दी जा रही है। जानकारी के मुताबिक कंपनी में कार्यरत एवं कामगार कल्याण बोर्ड में पंजीकृत श्रमिकों के बच्चों की पढ़ाई के लिए 16,800 रुपये तक की आर्थिक सहायता प्रदान की गई है। इसके अलावा श्रमिक कल्याण बोर्ड में पंजीकरण के माध्यम से बच्चों की पढ़ाई के लिए 48,000 रुपये तक की सहायता मिलने की जानकारी भी सामने आई है। इस सहायता का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर श्रमिक परिवारों के बच्चों को शिक्षा जारी रखने में मदद करना है। सरकार और कल्याण बोर्ड की ओर से श्रमिक परिवारों को इन योजनाओं का लाभ उठाने के लिए पंजीकरण करवाने पर जोर दिया जा रहा है। विश्व प्रसिद्ध बीड बिलिंग घाटी में 16 सितंबर से पैराग्लाइडिंग गतिविधियां शुरू होने जा रही हैं। हर साल मानसून के कारण कुछ समय के लिए पैराग्लाइडिंग गतिविधियों पर रोक रहती है। इस बार पर्यटन विभाग ने 15 जुलाई से 15 सितंबर तक मानसून को देखते हुए उड़ानों पर रोक लगाई थी। अब मौसम अनुकूल रहने पर 16 सितंबर से पैराग्लाइडिंग फिर शुरू हो जाएगी। बीड बिलिंग में पैराग्लाइडिंग से जुड़े व्यवसाय से बड़ी संख्या में स्थानीय लोग जुड़े हैं। यहां सैकड़ों टैक्सी चालक, होटल, होम स्टे और गेस्ट हाउस भी पर्यटन गतिविधियों से जुड़े हुए हैं। लगभग 350 पायलट पर्यटन सीजन में यहां पैराग्लाइडिंग गतिविधियों से जुड़े रहते हैं। पैराग्लाइडिंग शुरू होने के साथ ही घाटी में पर्यटकों की आवाजाही बढ़ने और स्थानीय कारोबार को राहत मिलने की उम्मीद है। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की ओर से 16 सितंबर से शुरू होने वाली राज्य मुक्त विद्यालय यानी SOS की मैट्रिक और जमा दो कक्षाओं की सितंबर 2026 परीक्षाओं के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। परीक्षार्थियों के प्रवेश पत्र संबंधित अध्ययन केंद्रों और विद्यालयों के प्रवेश तंत्र पर उपलब्ध करवाए गए हैं। इसके अलावा विद्यार्थी हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की वेबसाइट के विद्यार्थी कक्ष में जाकर भी अपना प्रवेश पत्र प्राप्त कर सकते हैं। बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर राजेश शर्मा ने परीक्षार्थियों से अपील की है कि परीक्षा में शामिल होने से पहले प्रवेश पत्र में दर्ज अपना नाम, माता पिता का नाम, जन्मतिथि और विषयों सहित अन्य विवरण ध्यानपूर्वक जांच लें। किसी भी तरह की त्रुटि होने पर समय रहते संबंधित अध्ययन केंद्र या बोर्ड से संपर्क करना जरूरी है। हिमाचल प्रदेश में किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से सरकार किसान आयोग का गठन करने जा रही है। आयोग के माध्यम से किसानों से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर सुझाव लिए जाएंगे और कृषि उत्पादों के बेहतर दाम सुनिश्चित करने की दिशा में काम किया जाएगा। खबर के अनुसार सरकार का उद्देश्य किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य दिलाना और कृषि क्षेत्र को मजबूत करना है। मक्की और गेहूं के समर्थन मूल्य यानी MSP से जुड़े मामलों पर भी आयोग महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। सरकार की ओर से प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के साथ साथ किसानों को उनकी उपज का बेहतर बाजार उपलब्ध करवाने पर जोर दिया जा रहा है। किसानों की आय बढ़ाने और कृषि को अधिक लाभकारी बनाने के लिए सरकार की ओर से कई स्तरों पर प्रयास। इसी के साथ आज का समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। आप सुन रहे थे रेडियो गुंजन धर्मशाला 91.2 FM। धन्यवाद।

0: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनवाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, ताज़ा गर्म भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है नौवां राष्ट्रीय पोषण माह।
1: हे भगवान,
2: फिर से पापा का पारा चढ़ गया
1: यार। अभी तो गर्मियां शुरू हुई हैं और 7000 का बिल आने लगा। ये एसी क्यों ऑन है? और तुम ना मोटर थोड़ी कम चलाया करो, ये पंखा भी ऑन है।
3: तो लगवा क्यों नहीं देते सोलर पैनल? बिजली का बिल भी जीरो हो जाएगा
2: और आपका गुस्सा भी।
1: भाई अब तो लगाना ही होगा ताकि तुम दोनों के ताने भी हो जाएं जीरो।
4: जीरो बिजली बिल के लिए आप भी सोलर लगाएं। हर घर सूर्य घर।

आते बड़े धूम से गणपति जी, आते बड़े धूम से गणपति जी, जाते बड़े धूम से गणपति जी, आखिर सबसे पहले आकर हमारे दिलों में बस जाते गणपति जी।

वक्रतुंड महाकाय को अपने भक्तों से प्यार है, दिल से जिसने पूजा समझो उसका बेड़ा पार है। नए कार्य की शुरुआत अच्छी हो, हर मनोकामना सच्ची हो, गणेश जी का मन में वास रहे, गणेश चतुर्थी आप अपनों के पास रहे। आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं।

0: जब से माँ को नानी के यहाँ भेजा है कितने चिड़चिड़े हो गए हो।
1: बेटा टीबी है उसको।
0: टीबी का इलाज तो यहाँ भी हो सकता है, फिर क्यों भेज दिया?
1: अगर वो यहाँ रहती ना तो लोग कन्नी काट रहे होते हमसे।
0: मुझे लोग नहीं, मम्मी।
1: अरे क्या अर्जुन, उठेगा तो सरप्राइज देंगे।
2: अर्जुन
1: बहुत मिस कर रहा था तुमको, और मैं भी टीवी रिमोट का सरपर समझ नहीं पा रहा था।
3: अपनों का जोड़ है टीबी का तोड़, तो फिर भेदभाव क्यों? टीबी के इलाज में अपनों का साथ दें।
4: ये जो पिछली पीढ़ी गुजर गई है ना, हमारे दादा दादी नाना नानी, ये रिश्ते निभा कर गई हैं। इन्होंने उस दौर में भी रिश्तों को जोड़े रखा। जब रिश्ते टूटने की नौबत आ जाती थी, ये बर्दाश्त करना जानते थे, सुन लेना जानते थे। इनके लिए प्राथमिकता रिश्ते थे, बहस नहीं। ये चार लोगों को साथ बैठाकर बात करते थे, समाधान खोजते थे, और आखिर में नतीजा गले मिलने का निकलता था। लेकिन आज की पीढ़ी यानी हम छोटी छोटी बातों पर रिश्ते तोड़ रहे हैं। हमारे अंदर सहनशीलता कम होती जा रही है। हम चाहे कितने भी पढ़ लिख जाएं, कितने भी सफल हो जाएं, या खुद को दूसरों के सामने कितना भी अच्छा साबित कर दें, लेकिन अगर रिश्ते निभाने की ताकत और बर्दाश्त नहीं है तो सब अधूरा है। अगर यही चलता रहा तो आने वाली पीढ़ी रिश्तों के बिना जीना सीख जाएगी। माँ बाप से दूर रहना सामान्य समझेगी, अपनों से दूर रहना पसंद करेगी। रिश्तों की अहमियत धीरे धीरे खत्म हो जाएगी, और अगर समय रहते नहीं संभलें तो बहुत जल्द हम एक दूसरे को खो देंगे।
5: जा रही हो बेटा?
6: अरे दादाजी अब उठ गए? हाँ दादाजी, अब मैं ठीक हो गई, अब मैं कहाँ जा रही हूँ?
5: बहुत अच्छा, मैंने कहा था ना तुम्हें ब्लड मिल जाएगा, भगवान का शुक्र है।
6: हाँ मैंने गॉड को थैंक यू बोला।
7: और डॉक्टर को भी?
6: अरे हाँ, डॉक्टर अंकल को भी और नर्स आंटी को भी।
5: और ब्लड डोनर को?
6: डोनर को वो तो पता नहीं कौन है।
7: डोनर को थैंक यू पापा बोल देंगे।
6: वो कैसे?
8: किसी भी ब्लड डोनर का शुक्रिया अदा करने का सबसे अच्छा तरीका है खुद ब्लड डोनेट करना।
7: बस हो गया।
8: इंडिया में हर साल 1,20,00,000 यूनिट से भी ज्यादा ब्लड की जरूरत होती है। ब्लड डोनेट करें और किसी की जिंदगी बचाएं।
9: ऐसे ना आजकल हद्दी हो गई है लोगों की, वैसे कसम से।
10: क्या हुआ, क्यों परेशान हो रही हो?
9: अरे यार बेबी, मेरा ना रिचार्ज खत्म हो गया था, नेट पैक भी खत्म हो गया था, खुद भी रिचार्ज नहीं कर सकती थी, ना ही मैं आपको कॉल कर पा रही थी। तो मैंने सोचा जाके ना दुकान से ही करा लेती हूँ। मैं दुकान पे गई, उसने मुझे बोला मैम 600 रुपए लगेंगे। मैंने उसको 600 रुपए दे दिए, फिर कहता मैम आपका नंबर। हद होगी यार इन लोगों की, स्मार्ट लड़की देखी नहीं कि नंबर मांगना शुरू कर देते हैं। फिर क्या, तुम्हें तो पता ही है मैं कौन सी कम ओवर स्मार्ट हूँ, मैंने भी बड़ा नंबर ले लिया। बेबी मुझे एक बात नहीं समझ आ रही, अभी तक रिचार्ज नहीं हुआ मेरा।
10: ये होगा भी नहीं। मेरा मतलब मैं देखता हूँ, तुम जाओ रेस्ट करो।
9: हाँ देखो क्या हो गया।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर यह है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और श्रोताओ, मैं हूँ आपकी रेडियो दो शशि और हाजिर हो गई हूँ कार्यक्रम लेकर गीत सुहाने नए पुराने। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस प्यारे से गीत के साथ। आप सभी यूं ही सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

तो श्रोतो, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत, गीत सुहाने नए पुराने कार्यक्रम का। तो अपने कार्यक्रम में फिर से हम आगे बढ़ते हैं और आपको ले चलते हैं फिर से एक प्यारे से गीत के सफर में।

91.2 FM पर यह है आप सभी का अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी इस वक्त कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। तो बिल्कुल अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं एक और गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। तो इसी के साथ अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे।

तो श्रोताओं, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत। फिर से कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आपको फिर से ले चलते हैं एक और गीत की तरफ। तो आप सभी यूं ही सुनते रहिए अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला।

ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत। फिर से आपको ले चलते हैं एक और गीत की तरफ।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और श्रोताओं, आप सभी इस वक्त कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ, गीत सुहाने नए पुराने। तो फिर से अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

0: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनवाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, ताजा गर्म भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है नौवां राष्ट्रीय पोषण माह।
1: हे भगवान,
2: फिर से पापा का पारा चढ़ गया
1: यार। अभी तो गर्मियां शुरू हुई हैं और 7000 का बिल आने लगा। ये एसी क्यों ऑन है? और तुम ना मोटर थोड़ी कम चलाया करो, ये पंखा भी ऑन है।
3: तो लगवा क्यों नहीं देते सोलर पैनल? बिजली का बिल भी जीरो हो जाएगा
2: और आपका गुस्सा भी।
1: भाई अब तो लगाना ही होगा ताकि तुम दोनों के ताने भी हो जाएं जीरो।
4: जीरो बिजली बिल के लिए आप भी सोलर लगाएं। हर घर सूर्य घर।

आते बड़े धूम से गणपति जी जाते बड़े धूम से गणपति जी, आखिर सबसे पहले आकर हमारे दिलों में बस जाते गणपति जी।

वक्र तुंड महाकाय को अपने भक्तों से प्यार है, दिल से जिसने पूजा समझो उसका बेड़ा पार है। नए कार्य की शुरुआत अच्छी हो, हर मनोकामना सच्ची हो, गणेश जी का मन में वास रहे, गणेश चतुर्थी आप अपनों के पास रहे। आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं।

0: जब से माँ को नानी के यहाँ भेजा है कितने चिड़चिड़े हो गए हो।
1: बेटा टीबी है उसको।
0: टीबी का इलाज तो यहाँ भी हो सकता है, फिर क्यों भेज दिया?
1: अगर वो यहाँ रहती ना तो लोग कन्नी काट रहे होते हमसे।
0: मुझे लोग नहीं, मम्मी।
1: अरे क्या अर्जुन, उठेगा तो सरप्राइज देंगे।
2: अर्जुन
1: बहुत मिस कर रहा था तुमको, और मैं भी टीवी रिमोट का सरप्राइज समझ नहीं पा रहा था।
3: अपनों का जोड़ है टीबी का तोड़, तो फिर भेदभाव क्यों? टीबी के इलाज में अपनों का साथ दें।
4: ये जो पिछली पीढ़ी गुजर गई है ना, हमारे दादा दादी नाना नानी, ये रिश्ते निभा कर गई हैं। इन्होंने उस दौर में भी रिश्तों को जोड़े रखा। जब रिश्ते टूटने की नौबत आ जाती थी, ये बर्दाश्त करना जानते थे, सुन लेना जानते थे। इनके लिए प्राथमिकता रिश्ते थे, बहस नहीं। ये चार लोगों को साथ बैठाकर बात करते थे, समाधान खोजते थे, और आखिर में नतीजा गले मिलने का निकलता था। लेकिन आज की पीढ़ी यानी हम छोटी छोटी बातों पर रिश्ते तोड़ रहे हैं। हमारे अंदर सहनशीलता कम होती जा रही है। हम चाहे कितने भी पढ़ लिख जाएं, कितने भी सफल हो जाएं, या खुद को दूसरों के सामने कितना भी अच्छा साबित कर दें, लेकिन अगर रिश्ते निभाने की ताकत और बर्दाश्त नहीं है तो सब अधूरा है। अगर यही चलता रहा तो आने वाली पीढ़ी रिश्तों के बिना जीना सीख जाएगी। माँ बाप से दूर रहना सामान्य समझेगी, अपनों से दूर रहना पसंद करेगी। रिश्तों की अहमियत धीरे धीरे खत्म हो जाएगी, और अगर समय रहते नहीं संभलें तो बहुत जल्द हम एक दूसरे को खो देंगे।
5: जा रही हो बेटा?
6: अरे दादाजी अब उठ गए? हाँ दादाजी, अब मैं ठीक हो गई, अब मैं कहाँ जा रही हूँ?
5: बहुत अच्छा, मैंने कहा था ना तुम्हें ब्लड मिल जाएगा, भगवान का शुक्र है।
6: हाँ मैंने गॉड को थैंक यू बोला।
7: और डॉक्टर को भी?
6: अरे हाँ, डॉक्टर अंकल को भी और नर्स आंटी को भी।
5: और ब्लड डोनर को?
6: डोनर को वो तो पता नहीं कौन है।
7: डोनर को थैंक यू पापा बोल देंगे।
6: वो कैसे?
8: किसी भी ब्लड डोनर का शुक्रिया अदा करने का सबसे अच्छा तरीका है खुद ब्लड डोनेट करना।
7: बस हो गया।
8: इंडिया में हर साल 1,20,00,000 यूनिट से भी ज्यादा ब्लड की जरूरत होती है। ब्लड डोनेट करें और किसी की जिंदगी बचाएं।
9: वैसे ना आजकल हद ही हो गई है लोगों की, वैसे कसम से।
10: क्या हुआ, क्यों परेशान हो रही हो?
9: अरे यार बेबी, मेरा ना रिचार्ज खत्म हो गया था, नेट पैक भी खत्म हो गया था, खुद भी रिचार्ज नहीं कर सकती थी, ना ही मैं आपको कॉल कर पा रही थी। तो मैंने सोचा जाके ना दुकान से ही करा लेती हूँ। मैं दुकान पे गई, उसने मुझे बोला मैम 600 रुपए लगेंगे।
10: oh, no.
9: मैंने उसको 600 रुपए दे दिए, फिर कहता मैम आपका नंबर। हद होगी यार इन लोगों की, स्मार्ट लड़की देखी नहीं कि नंबर मांगना शुरू कर देते हैं। फिर क्या, तुम्हें तो पता ही है मैं कौन सी कम ओवर स्मार्ट हूँ, मैंने भी बड़ा नंबर ले लिया। बेबी मुझे एक बात नहीं समझ आ रही, अभी तक रिचार्ज नहीं हुआ मेरा।
10: ये होगा भी नहीं। मेरा मतलब मैं देखता हूँ, तुम जाओ रेस्ट करो।
9: हो गया क्या हो गया?

रहे हो।